फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani.
4: अभी आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हमें आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन।
5: इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस प्रश्न के जवाब में एक साधु ने कहा था, मनुष्य की सदा जीवित रहने की चाह। मूर्ख मनुष्य देख रहा है कि यहां से सारे प्राणी एक एक कर मौत के ग्रास बनते जा रहे हैं, फिर भी वह सदा जीवित रहने की कामना करता है। कहते हैं, काल जीव को ऐसे बारी बारी से मुख में चबाता है मानो कोई व्यक्ति मुट्ठी भर चने खा रहा हो, कुछ मुंह में चला गया है और कुछ मुट्ठी में बाकी है। मानते हैं हमारी मौत अवश्यंभावी है, जो जन्मा है वह मरेगा ही, फिर भी सारी जिंदगी ऐसे उपक्रम करते हैं मानो अमरता का वरदान लेकर पैदा हुए हैं। यदि हम थोड़ा सा पीछे पलट कर देखें तो मैदान एकदम सफाचट दिखाई देता है। ढूंढने से भी आज से 100 वर्ष पहले का एक भी इंसान जीवित दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि गांव घर शहर का नक्शा भी बदल गया है। इतिहास गवाह है, इस दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी, शूरवीर और राजे महाराजे हुए, पर आज उनका नामो निशान भी शेष नहीं है। न राम राज्य रहा, न रावण की लंका ही रही। महासत्यवादी हरिश्चंद्र, महादानी कर्ण, महाबली भीम, महाधनुर्धर अर्जुन, महाप्रतापी रावण, बलवान कुंभकर्ण सब काल के गाल में समा गए। भगवान राम और कृष्ण भी आज कहाँ हैं? फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती, पागलों की भांति आशक्त होकर प्राणी पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं। मानव मरने पर सबको अपनी पीठ पर लाद कर ले जाएंगे। हमारे सारे

0: सगे भाई बहन की हत्या तक करने में नहीं चूकते। हम जानते हैं महाभारत का युद्ध मनुष्य की इसी लोभी प्रवृत्ति का ही नतीजा है, जिसका अंत घोर विनाश के रूप में हुआ। पांच गांव तो क्या पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन देने को तैयार नहीं था। आज भी हमारे भीतर यही प्रवृत्ति विद्यमान है, एक इन जमीन के लिए लड़ते मरते हैं, यह जानते हुए भी कि सब कुछ यहीं रह जाएगा और एक दिन यहां से हाथ पसारे हुए जाना पड़ेगा। आ जाने वाला सिकंदर अपने वक्त का संसार का सबसे बड़ा लुटेरा और हत्यारा था। उसने अनेक देशों को तबाह कर बेहिसाब संपत्ति लूटी और अपने साथ ले गया, लेकिन जब मृत्यु की घड़ी आई तब उसे अपने कृत्य पर पश्चाताप होने लगा। उसने लोगों को आदेश दिया कि जब उसका जनाजा उठे तो उसके दोनों हाथ बाहर दिखाई देते रहें, ताकि लोगों को मालूम हो कि अकुत संपत्ति का स्वामी सिकंदर आज इस संसार से खाली हाथ जा रहा है। और यही इस संसार की सच्चाई है, मनुष्य नाना कष्टों को सहते हुए भी दीर्घ जीवन की कामना करता है, धीरे धीरे सारी उम्र बीत जाती है, तब सिर धुनता रह जाता है कि उसने सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। जिंदगी भर धन दौलत तथा परिवार में उलझ कर रह जाते हैं और जीवन का लक्ष्य पीछे छूट जाता है। हम अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाते, जीवन अनिश्चित तथा क्षणभंगुर है। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि हम समय रहते अपना काम कर लें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए हरिओम शरण को।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंग दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818 में। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था।

0: अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस द्वीप में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार, बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्रनाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: शरण के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आप हमें सुन रहे हैं FM बैंड पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से 6:30 में। लीजिए सुनिए कृषि संबंधी जानकारी कार्यक्रम कृषि चर्चा में, जिसमें आज वार्ता का विषय है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से चारा उत्पादन तकनीक। वार्ताकार है डॉक्टर ललित कुमार बिस्वाल, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ललुंगा।
1: संगवारी हो, मैं डॉक्टर ललित कुमार बिस्वाल, पशु चिकित्सा सहायक शल्य पशु चिकित्सालय ललुंगा। मैं आप मल्ला एक नया तकनीक जो कि कृषि में तो उपयोग होत रही, लेकिन पशुपालन में घलो एक उपयोग चारा उत्पादन बर हम कर सकत हन। एक नाम है हाइड्रोपोनिक तकनीक। हाइड्रोपोनिक तकनीक काय में बिना माटी के प्रयोग के हमन केवल पानी के उपयोग करके ट्रे में अनाज ला हमन, अनाज जैसे कि हमार बाजरा है, ज्वार है, गेहूं है, मक्का है, ए मल्ला हमन 8 से 9 दिन में हर 20 से 30 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते और इसमें प्रोटीन और जो पाचन योग्य ऊर्जा है ओकर मात्रा बहुत अधिक रहते। तो एकर विषय में आप मल्ला बताहा जेकर बहुत संभावना है संगवारी हो। ये चारा ला हमन बकरी मुर्गी हमर गाय मल्ला घलो और भैंस मल्ला सब सुअर मल्ला घलो हमन खिला सकत हन। एकर बर हमन ला का चाहिए, एमें एक प्लास्टिक के ट्रे लेबो जेकर साइज 10 फीट बाई 3 फीट और 3 इंच ओहर गहरा रही। एमें बाजरा गेहूं ज्वार मक्का एला हमन भिगा करके 12 घंटा तक भिगा करके एला हमन 24 घंटा भिगा के निकाले के बाद 24 घंटा हमन कोई पन्नी में बंद करके वाला रखबो तो उमे छोटे छोटे अंकुरण हो जाही। अंकुरण आए के पश्चात हमन जो ट्रे ऊपर में आप मल्ला बताए उमे हमन ला फैलाना है एक बराबर मात्रा में और उमे हर 5 घंटा में 5 से 10 मिनट पर पानी के फुहारा डालना है। पानी के फुहारा यदि डालबो तो हर भीग ही और ओहर 8 से 9 दिन में 20 से 30 सेंटीमीटर चारा हो जाए और 1 किलो हर हमर 8 से 9 किलो चारा दही संगवारी हो। तो प्रति किलो चारा जो उत्पादन हो ही ओकर कीमत हमला बहुत सस्ता पड़ी, 2 रुपया 1.5 रुपया के आसपास पड़ी और एमे हमन दाना के खपत ला 40% तक कम कर सकत हन। तो यह बहुत फायदा मंद है। कम जगह में हमन सीढ़ी नुमा सिस्टम के द्वारा भी एला हमन

0: गाय सकत हन। ए में यदि हमर करा मान लो 10 जानवर हैं, तो 10 जानवर एक ठे हर संगवारी हो 30 से 32 किलो चारा देते, तो एक ठे हर 2 गायला एक दिन के वर्ष पर्याप्त चारा दी। काबर की 15 से 16 किलो एक दुधारू गायला चारा चाहिए। यदि हमर करा 10 गाय हैं, तो हमारा रोज 5 ट्रे की जरूरत पड़ी। यदि हमर करा 40 ट्रे यदि राखबो और 5 ट्रेला खाली छोड़ते हुए हर दिन एक ट्रेला भरत जाबो, तो हमारा 8वां दिन चारा उपलब्ध हो जाही। और वही जोन ले हमन चारा उगाबो हर फिर खाली हो जाही। ओला यदि हमन सुबह चारा लेबो तो शाम के फिर ओला भरना है। तो इस प्रकार से राउंडअप विधि द्वारा क्रमिक चक्र के माध्यम से हमन पूरा महीना भर चारा ले सकत हन। ए में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन रथे, विटामिन रथे, और एकर जो पाचकता रथे 95% पाचकता रथे, तो गर्मी के दिन भर एहर बहुत लाभदायक हो सकते है संगवारी हो। एकर का लाभ है, चारा के अभाव के स्थिति में हमन अच्छा चारा के विकल्प के रूप में हमन देखत हन। कम जगह में, कम समय में, कम लागत में पौष्टिक चारा हमें मिल सकत है। चारा के लागत जो हमर मान लो कोई 10 किलो दूध देते होकर पीछे हमें लगभग 100 से 150 रुपया तक के दाना जो लग जाते, 40% अर्थात 60 से 70 रुपया तक हम कमी ला सकत हन ओकरे सेती। और जानवर के प्रतिरोधकता में क्योंकि विटामिन ए में बहुत मात्रा में रहते ओकरे बर चारा के कमी ले हमन एमे निजात पा सकत हन। दूध हमारे सनवारी हो 0.5 लीटर तक खिलाए बढ़ सकत है और खनिज लवण की उपलब्धता लाए हर पूरा करते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार सनवारी हो।
1: माटी के सांस लौटाही हरी खाद, अंधाधुंध रासायनिक खाद ले थक चुके हैं जमीन, इला करना है फिर ले जिंदा। हरी खाद माटी के संरचना ला सुधारते, नमी ला बनाए रखते, पैदावार ला 20% तक बढ़ाते। सस्ता, सरल और टिकाऊ खेती के आधार हरी खाद, आज ही शुरुआत करो। हरी खाद पर बीज मा ढेचा, सनई, मूंग जैसे बीज के उपयोग कर और धान के फसल लेहे के पहली एकर बुआई जरूर करो। ज्यादा जानकारी पर अपन के लखठा के स्थानीय कृषि कार्यालय ले संपर्क कराओ।
2: रामू भैया, ए दारी ते धान के फसल बर यूरिया और डीएपी के जुगाड़ कर डारे हस कागा? दाम हर तो आसमान छुआ थे भैया।
3: अरे अरे अरे नहीं भैया, ये दारी मैं हर यूरिया के खर्चा ला आधा करे बर अपन के भुइया मा हरा खाद ला बोए। हाँ,
2: हरियर खाद वो का होते भैया?
3: बस ढेचा और सनई ला उगाना है, 40 और 50 दिन के भीतर मा माटी मा मिला देना है और फसल ला प्राकृतिक रूप ले पोषण आहार मिलते।
2: वाह, ये तो संजूनी बूटी जैसे काम करी भैया, महू भी अपनाऊ ये लगा।
3: हरी खाद ला अपनावा, धरती दाई के स्वास्थ्य ला बचावा।
2: ज्यादा जानकारी बर अपन नजदीकी कृषि कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर में संपर्क कराऊं।
4: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, जिसमें चर्चा का विषय था हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से चारा उत्पादन तकनीक। वार्ताकार थे डॉक्टर ललित कुमार बिस्वाल, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ललुंगा। और इसी के साथ कृषि चर्चा अब संपन्न होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रामचरित मानस गान 6:40 पर, देश गान आप सुनेंगे 6:50 पर, संस्कृत समाचार 6:55 पर, 7 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, चित्रपट संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 7:05 पर। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा का वक्त होगा 7:35 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजी मंदर आप सुनेंगे 7:45 पर। समाचार प्रभात सुबह 8:00 और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका मोर भुइयां कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे 9:00, 11:00 और 12:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये कार्यक्रम रिले होंगे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर और पुनः 11:55 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से ये समाचार आप सुन सकेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी आप सुनेंगे सुबह 10:00। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी का वक्त होगा 10:30 पर।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: शाम 5 बजे का वक्त होगा, प्रोजेक्ट कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का झलकी आप सुनेंगे 5:10 पर। युवाणी कार्यक्रम का वक्त होगा शाम 5:30 पर। किसान वाणी आप सुनेंगे शाम 7:20 पर। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम का वक्त होगा 8:20 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। गैर फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे 8:20 पर। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 16वीं कड़ी। गायक कलाकार हैं ए हरिहरन।

संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों की भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरे की भांति हरे की कथा भी अनंत है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस कहानी। कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। 6:50 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। देशगान अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप हमें सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से 7:05 हुए हैं। नीचे सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। सुनिए फिल्म राजकुमार का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है, संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: नमस्कार, मेरा नाम गोपाल कृष्ण देवांगन है और मैं गणित का व्याख्याता हूँ। सबसे पहले 90 वर्ष पूर्ण होने के इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। एक गणित शिक्षक के रूप में मैं ये भली भांति समझता हूँ कि ज्ञान का प्रसार किसी समाज की प्रगति की आधारशिला होता है और इस दिशा में आकाशवाणी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बीते 9 दशकों में आकाशवाणी ने न केवल समाचार और मनोरंजन प्रदान किया बल्कि शिक्षा, संस्कृति, जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सटीक जानकारी और ज्ञान पहुंचाकर इसने लोगों के जीवन को सही दिशा प्रदान की है। गणित की तरह ही जहाँ हर सूत्र और सिद्धांत जीवन को सरल और व्यवस्थित बनाता है, इसी प्रकार आकाशवाणी ने भी समाज को जोड़ने और सही दिशा देने का कार्य किया है। आकाशवाणी ने आज की नई पीढ़ियों को भी प्रेरित किया है। मैं कामना करता हूं कि आकाशवाणी इन वर्षों में भी इसी समर्पण के साथ ज्ञान और सूचना का प्रकाश फैलाती रहे। धन्यवाद।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध

0: तरुणों की पसंद पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। अगला गीत सुनिए फिल्म ही रांझा से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। कैफी आजमी के बोल हैं, संगीत है मदन मोहन का।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये पर

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: संदेश से पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत में एक फूल दो माली फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी के स्वर में इस गीत को लिखा था प्रेम धवन ने, रवि का संगीत था। अगला गीत सुनिए फिल्म जीने की राह से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, आनंद बख्शी ने गीत की शब्द रचना की है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: की सुरीली धड़कन,
1: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
0: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
0: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
0: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
0: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
0: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
0: सुरीली संदली,
6: विविध भारती।
7: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

सुप्रभात मित्रों, प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा में आप सभी का स्वागत है। एक नए विषय पर चर्चा करने को मैं आपकी रेडियो मित्र श्रद्धा उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे देश के अनोखे त्यौहार एवं मेलों के बारे में। श्रोताओं, थाईपुसम तमिल और मलयाली समुदायों द्वारा जनवरी या फरवरी में पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आमतौर पर पुष्य स्टार के साथ मेल खाता है, जिसे तमिल में पूसम कहा जाता है। थाई पूसम शब्द महीने के नाम थाई और एक स्टार पूसम के नाम का संयोजन है। दोस्तों, यह पर्व उस अवसर की स्मृति में मनाया जाता है जब पार्वती ने मुरुगन यानी कि कार्तिक स्वामी को एक भाला दिया था। वैसे ही दोस्तों, थिमथी या आग पर चलने का समारोह तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह दीपावली के एक सप्ताह पहले तमिल कैलेंडर के एपासी महीने के दौरान अर्थात अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। श्रोताओं, अब बात करते हैं पुलिकाली की, जो कि केरल की एक मनोरंजक लोक कला है। यह ओणम के अवसर पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा किया जाता है। यह ओणम त्यौहार के चौथे दिन मनाया जाता है। दोस्तों, पुलिकाली का अर्थ बाघों का खेल है और यह प्रदर्शन बाघों के शिकार पर आधारित है। यह लोक उत्सव मुख्य रूप से केरल के त्रिशूर जिले में प्रचलित है। उसी तरह दोस्तों, भगोरिया हाट मध्य प्रदेश में भीलो और भिलाला जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह मार्च महीने में होली के त्यौहार से पहले मनाया जाता है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ और झाबुआ जिलों में मनाया जाता है, जो क्षेत्र के सभी बाजार स्थानों को कवर करता है। लोग पारंपरिक रूप से सजाई गई बैलगाड़ी पर परिवार के साथ मंगोरिया हाट जाते हैं और वे पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र और लोकगीतों पर नृत्य करते हैं। श्रोताओं, आइए अब चर्चा करते हैं मड़ई की। मड़ई छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। यह गोंड जनजाति से संबंधित लोगों द्वारा बहुत उत्साह से मनाया जाता है। त्यौहार की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग खुले मैदान में एक जुलूस से शुभारंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मड़ई महोत्सव की शुरुआत होती है। वैसे ही दोस्तों, किला रायपुर ग्रामीण खेल उत्सव लोकप्रिय रूप से ग्रामीण ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। यह लुधियाना पंजाब के पास किला रायपुर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें कोर्ट रेस, एथलेटिक इवेंट और रस्सी खींचना शामिल है। दोस्तों, यह हर वर्ष फरवरी में मनाया जाता है। स्पर्धाओं में भाग लेने वाले बैल, ऊंट, कुत्ते, खच्चर और अन्य जानवरों की विशेष नस्ल को देखने के लिए सैकड़ों खेल प्रेमी और विदेशी किला रायपुर आते हैं। श्रोताओं, अगले क्रम में हम और अन्य त्योहारों और मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय।

0: कला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली,
6: विविध भारती,
7: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
8: आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा, ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप हमें सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:45 हुए हैं, लीजिए सुने लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए सीताराम साहू को।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: आकाशवाणी F90। मैं हिना यादव बेरदगर रायगढ़ की निवासी हूँ और रेडियो बचपन से सुनती आ रही हूँ, और सभी संचार के अलग अलग माध्यमों जैसे मोबाइल, रेडियो, ये कार्यक्रम समय निकालकर सुनती हूँ। रायपुर केंद्र से प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ गीत आज भी सुनने में उतना ही आनंद देते हैं जितना पहले उस समय देते थे। खेती बाड़ी, पशुपालन, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हमें पहले से आगाह कर देती थी और हम परेशानी से बच जाते थे। इसलिए मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देती हूँ। हर परिस्थिति में खुशी व नई ऊर्जा का संचार करने वाली आकाशवाणी बड़े बूढ़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन करती है और उन्हें सही रास्ता दिखाती है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसे कहीं भी किसी जगह पर ले जाया जा सकता है और सुना जा सकता है। अपने अपने काम करते हुए भी यह मनोरंजन का बड़ा अच्छा साधन है। आकाशवाणी वास्तव में लाभवाणी, शुभवाणी है, जिसके माध्यम से कई लोग जानकारी का फायदा उठाकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। मैं पुनः रेडियो व रेडियो परिवार को 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ।

राधा और रमेश यादव के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से एफएम बैंड 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:55 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे। कुछ ही देर में आप सुनेंगे 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका मोर भुइया का वक्त होगा 8:30 पर। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से। विविध भारती कार्यक्रम सुबह 9 बजे, 11 बजे और 12 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 9:55 पर और पुनः 11:55 पर। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी आप सुनेंगे सुबह 10 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी आप सुन सकेंगे 10:30 पर।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट झलकी का, वक्त होगा 5:10 पर। युवाणी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात होगी जैव विविधता बचाए रखने में ही हमारा भविष्य, साथ ही आप सुनेंगे करियर एडवाइस। हिंदी में समाचार शाम 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:10 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 6:20 पर पुनः 7 बजे। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:45 पर। ये समाचार रिले किया जाएगा आकाशवाणी केंद्र रायपुर से। किसान वाणी का वक्त होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी हरी खाद मृदा स्वास्थ्य के लिए वरदान। आज की नसीहत में आप जानेंगे कचरे को कीमती बनाए कचरा अब घटक से, साथ ही होगा आज का टिप, कृषि पशु मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:20 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 8:30 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। विविध भारती कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे रात्रि 9 बजे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें आप सुनेंगे 10:23 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है, ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
8: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व

0: जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
1: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से डूबे लोग बेसिक चीजों में सुकून की

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ए अंक मा आप मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू कोती ले। श्रोता साथी हो, आज के ए अंक मा आप मन ला सुनवाथन श्री विजय मिश्रा अमित के वार्ता छत्तीसगढ़ी भाखा साहित्य मा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के योगदान। संगवारी के शर्त, ये कहानी आप मन सुनिया श्री मानसिंह मौलिक ले और कविता सुनाही श्री तोषण कुमार चुरेंद्र। कार्यक्रम में सबले पहली आप मन ल सुनवाथन एक वार्ता जेकर विषय है छत्तीसगढ़ी भाखा साहित्य में डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के योगदान। वार्ताकार हावे श्री विजय मिश्र अमित।
1: दुनिया में दो किस्म के मनखे होते हैं। एक तो वो जिन मन हर दूसर के बनाए रद्दा में रेंगते हैं, दूसर वो मनखे होते हैं जिन मन हर खुदे नवा रद्दा गढ़ते हैं। जिन मन हर खुदे नवा रद्दा गढ़ते हैं तेन मन हर अपन काम के दम म खास बन जाते, महीन ले महान बन जाते। ऐसने गुण के धनी मनखे म छत्तीसगढ़ महतारी के दुलरवा बेटा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी के नाम हर रचे बसे हवय। उखर जन्म जाज्वल्य देव नगरी जांजगीर के रानी पारा दुबे पाड़ा मा 1 मई 1928 के होय रहीस। ददा पंडित श्याम लाल शर्मा औ महतारी सेवती के संस्कार में पले बढ़े पालेश्वर जी हर नानपन ले मेहनत मंजूरी के मरम ला समझ गे रहीन हैं। इही पाए के उन कहें कि दुनिया भर में 1 मई ला मजदूर दिवस के रूप में जाने जाते। मोरो जन्म हर 1 मई के हो है, तब महू हर कलम के मजदूर आऊं। उखर असल कर्म भूमि बिलासपुर हर रहिस। बाली उमर ले कागज म कलम के नांगर चलावत चलावत आरुग आखर के बीजा बोवत बोवत छत्तीसगढ़ी भाखा ल पोठ रोठ बनाए बर जियत मरत ले उन बूता करिन। छत्तीसगढ़ी भाखा मा मानक लेखन और छत्तीसगढ़िया मान ल बढ़ाए बर उन संदा पदोली देवय। अपन हक बर लड़े ल परही सुत निंदा मन जागा। ये बात ल लिख के पालेश्वर जी हर छत्तीसगढ़िया मन के स्वाभिमान ल जगाए के जबड़ बूता करिन। हिंदी भाषा के गुणी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखे हावें कि निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा सम्मान के मिटै नहीं को सूल। ये लाइन हर पालेश्वर जी के रुआ रुआ में समाये रही से। ते पाए के छत्तीसगढ़ी भाखा लोक साहित्य और संस्कृति ल जन मन म बगरावत छत्तीसगढ़ राज बने के पाछू पालेश्वर जी हर सबले पहली छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्द कोश छत्तीसगढ़ सरकार ल दे रहीस, ताकि सरकारी काम काज हर तको छत्तीसगढ़ी भाखा म हो सकाय। पालेश्वर जी हर अंग्रेजी हिंदी संस्कृत सहित दीगर भाखा के जबड़ जानकार होए के बावजूद छत्तीसगढ़ी भाखा के महल खड़े करे के जोन पोखा न्यू गढ़ी से तेनहर संदेशा देवा थे। कुछ काम करे बर मौसम नहीं मन होना चाही, साधन जम्मो जुट जाही, बस मनखे के भीतर संकल्प के धन होना चाही। बछर 60 के पाछू हिंदी छत्तीसगढ़िया कलमकार मन बर सूरज कस उवत पालेश्वर जी के कलम हर उजास देहे के बूता करिस। उखर कलम के किरण हर चारों मुड़ा बगर गे और महाविद्यालय के पाठ्यक्रम मा तको संघर गे। प्रबंध पाटल सुसक झन कुर्री सुरताले, तिरिया जन्म झन देई गुड़ी के गोठ सुरुज साखी है। छत्तीसगढ़ के इतिहास परंपरा तीज तिहार कहावत खेती किसानी असन उखर कतकोन किताब छपे के पाछू छत्तीसगढ़ी भाखा के मान हर गजबे बाढ़ी से। आकाशवाणी मा छत्तीसगढ़ी गद्य लेखन पठन ल बढ़र देवैया पहली साहित्यकार डॉक्टर शर्मा रहीन है। अपन पहली कहानी नाव के नेह माँ के पठन करिन। नामी अखबार मा 2 बच्छर ले ज्यादा छत्तीसगढ़ी परिदर्शन गुड़ी के गोट लिखत छपत छत्तीसगढ़ी भाखाला पत्रकारिता के दुनिया मा अंगत कस पांव धराय के बूता पालेश्वर जी करिन। अपन महतारी भाखाला लेके पालेश्वर जी के बड़ सुघर विचार रही से। ओ कहें छत्तीसगढ़ी हर दाई के दूध के नाम आए, बड़े दाई के चौन्हा चुम्मा आए, बाबा के माया, सुवारी के सिंदूर, बहिनी के राखी और गुइया के भोजली आए। छत्तीसगढ़ शासन के पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, भारत सरकार के वयोश्रेष्ठ सम्मान, बिहार सरकार के विद्याधर कवि सम्मान, बक्सी शोध पीठ के साधना सम्मान, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के बागेश्वरी पुरस्कार असन कतकोन मान और सम्मान उनल मिले रही से। उखल लिखे कहानी, कविता, निबंध और कतकोन दूसर रचना मनहर रहीम, कबीर, तुलसी, मुंशी प्रेमचंद जी के लिखे रचना कस आजो कहरत हावय। फोकट के चंदन, घीस भई लल्लू, एकर बहुत खिलाफ रहीन है पालेश्वर जी। जब कोनो कवि लेखक के नवा किताब के विमोचन में जाए पगरई होके या माई पहुना होके तो खुदे किताब ल बिसावें। उखर कहना रही से कि किताब ल फोकट में नहीं बांटना चाहिए, बल्कि किताब और रचनाकार के मान ल राखत किताब ल बिसाना चाहिए। छत्तीसगढ़ी मा गीत, गजल, कविता माने पद्य मा तो अड़बड़ लिखे के कारज हुआ थे, फिर गद्य मा कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध के लिखई हर कम हुआ थे। छत्तीसगढ़ के साहित्य जगत ला ये दशा ले उबारे बर छत्तीसगढ़ी गद्य कोठी ल भरे बर पालेश्वर कलम हर कमाल धमाल करी सावे। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा जी के लिखे हरेक रचना हर गोरस म पागे मखना का स्वाद थे। तभे तो एक घाव किताब हर हाथ म आते त आखरी पन्ना के सिरावत ले पढ़ुइया हर ओला छोड़ाए नहीं। किताब ल छोड़ भी देते त किताब म लिखाए बात हर हृदय म गूंजत रही थे। नानपन ले जानत रहे कि छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, फिर धान के कटोरा काबर कहे जाते, धान के बुआई मिंजाई कुटाई कारज हर कैसे होते, कौन कौन किस्म के औजार खेती किसानी के कारज में होते और ओखर से जुड़े हाना, जनौला, कीरा मकौरा के ज्ञान पालेश्वर जी के किताब छत्तीसगढ़ के कृषक जीवन की शब्दावली में मिलते। उखर ये ग्रंथ में 11 अध्याय हावय, 9000 छत्तीसगढ़ी आखरे में भराए हावय। छत्तीसगढ़िया किसान के जिनगानी ऊपर 1972 में सबले पहली PhD पालेश्वर जी करीन है। ये अर्थ में कहे जा सकत है कि पालेश्वर जी के कलम हर छत्तीसगढ़ के इतिहास और किसानी जनजीवन ल जनवाए खातिर बड़का बूता करी सावर।

0: जेन हर बताथे कि जेकर हथेली में लकीर नहीं छाला रही से ओखरे नाव पालेश्वर रही से। छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक क्रांति के जनक दाऊ रामचंद जी देशमुख के संगे संग मोर पिताजी नारायण स्वामी मिश्रा हर खेती किसानी के नवा नवा बात ल बतावाए। ओखरे मुँह ले सुने रहे हो खेती अपन से थी, गाय न गरु सूज जा हरु। ऐसन गोट बात के बेरा मा पालेश्वर जी के शोध प्रबंध छत्तीसगढ़ के कृषक जीवन के चर्चा जम के चलाए। छत्तीसगढ़ के 52,000 वर्ग मिल मा बसोइया किसान के नांगर और जांगर के ऊपर जी परान ले लिखे के जैन बुता पालेश्वर जी करीन हैं, तेला सुने गुने और पढ़े के पाछू मन में यही बात हर आथे कि जैन हर बरखा के बरसे पानी में भींजते तेन हर खाली अंगरखा ला बदलते, फिर जैन हर पछीना में भींजते तेन हर पालेश्वर बन के नवा इतिहास गढ़ते। छत्तीसगढ़िया गुनी जन मन हा पालेश्वर जी के ज्ञान ल देखत देखत ओला जियत जागत आखर कोठी पोथी पुराण इंसाइक्लोपीडिया कही थे। एक घाव कवि सम्मेलन में शामिल होए बर रामेश्वर वैष्णव जी और मीर अली मीर जी के संग जात रहे, तभे रद्दा मा खेत में बड़ अकन कोंकड़ा कस चिरई मन दिखिन। ओ चिरई मन के ऊपर चर्चा करत ओमन हा पालेश्वर जी के किताब सुसक झन कुर्री सुरताले के चर्चा छेड़िन। तब मेहर जाने दूसर राज दूसर देश ले अवैया चिरई मनला छत्तीसगढ़ी मा कुर्री कहे जाते। जिहां जन्मे जिहां के खाए पिए उहें के गुन गाबे बजाबे इही मा जिंदगी के सार है, और नहीं तो 84 लाख जोनी मा सबले बढ़िया जन्म लेहे के हवय तेन्हा बेकार है। ऐसन संदेशा देवैया सियान छत्तीसगढ़ भुइया के लाल हर 2 जनवरी 2016 के दिन सदा दिन भर विदा ले लेह रही से। डॉक्टर पालेश्वर हर छत्तीसगढ़ महतारी के ऐसन मयारुक दुलरवा बेटा आए जिन हर छत्तीसगढ़ ही साहित्य जगत खातिर नवा रद्दा गढ़े के गुर अवैया पीढ़ी ल सिखा के सरक सिधारिन हैं। आखिर मा कलम के ऐसन पुजेरी ल विजय जोहार करत अपन कलम ल विराम देवत लिखत हों, नंगा लेहू कलम ल कलमकार ले तो ओहर लिख दी ही कविता तलवार ले।
1: अभी आप मन श्री विजय मिश्रा अमित ले वार्ता सुने, विषय रही छत्तीसगढ़ी भाखा साहित्य मा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के योगदान। कार्यक्रम मा आगू बढ़त हन और आप मन ला श्री मानसीय मौलिक ले कहानी सुनवात हन। शीर्षक हावे संगवारी के शर्त।
2: कलयुग मा पापी मन के संख्या अड़बड़ हावे कथे, ये गोट 16 आना सच नो है। अगर ऐसन होतीस ता विमल के गांधी फोकट भोजन भंडार कैसे चलतीस। बता देवन की धर्मी मन के संख्या घलो कम नहीं है। ये दुनिया मा कहाँ ले चाउर दार सब्जी नून तेल आथे कोई नहीं जाने। एकर से समझ आथे धर्मी के दान गोहार पार के थोरे आथे। कले चुप ढंग ले मनखे दान करके पुण्य कमा लेते। मोबाइल मा पैसा देवैया मनखे कमी घलो नहीं है। त सैकड़ों झन मुफत मा रोज खावत पियत विमल आओ ओकर संस्था ला गाड़ा गाड़ा आशीष देवैया मन के कमी नहीं है। ये काम ला विमल 5 झन ले शुरू करे रहिस, ओकर संख्या दिनों दिन बढ़त जात है। ओकर दूसर काम गरीब के सहायता करना है। वाह रे फूटहा किस्मत, ओकर सुवारी हा ये सब काम ले नफरत करते। मोर बर ओकर कना समय नहीं हावय, दूसर बर जीवत हावस कही के मैके मा रहत हावय। घर के दाई बाबू अपन खुद कतरो बेर ओकर खुशामद करके मान मनोवल घर लहुटे खातिर करिस। फेर उमा हा अपन मैके छोड़ ससुरार लहुटबे कहाँ करिस। उमा के कहना रहा है कि फालतू काम छोड़ आओ मजा मा जिंदगी मोर संग बिता। हमर घर में कोनो बात के कमी है ता मोला बता। मैं अपन दाई बाबू घर ले मंगवा दूं। मगर विमल ओकर बात माने तब ना, मन मोटाव के कारण अतकी। फिर दोनों के बीच मया मान सम्मान के कभू डाँड़ खिंचाए नहीं दिखाए। जब विमल ससुरार आते उमा ओकर बड़ सम्मान करते। अपन मई के छोड़े के बात मा अड़ के लंद फन काम झन कर कहते। विमल के भरे पूरे परिवार मा 10-12 मन के हावय। ऊंचे रानू हा रसोई बनाए के काम करे। ओकर चाल ढाल पहने ओढ़े के ढंग देख विमल के दाई सुरजा पढ़े लिखे ठाड़ मोटियारी। कोनो बड़े घर के बेटी के लक्षण चिन्ह टोंक थे। बड़ सुघर रांदगढ़ के मड़ा देथस, मोला तो तैं काम वाले बाई कस लागस नहीं वो। माता विमल अव मैं एक के संग पढ़े हन। उमा भौजी मई के माँ बैठे है मैं जानत हूँ। एक दिन गोठ बात माँ शर्त लगाए हन, मोला अगर अधिकारी बने बर मदद करबे तब भौजी ला मना के तोर घर लान दू। विमल कथे अव नहीं लान बे त का करबे, ऐसन माँ तोला मोर संग बिहाव करे बर परही। मैं शर्त मान के काम करथों। वाह रे चतरी, तोर चित औ पट दोनों में जीत है। कहीं तोर सपना ये घर के बहु बने के तो नहीं। जान सुन के मोर बहुला मना के लान बेच नहीं तबो तोर जीत है। आखिर तोर कना ऐसन का जादू है ते माँ बहु उमा तोर बात मानी। माता एक फोन करूँ भौजी दौड़त आही, कब्भू ये घर ले नहीं टरों कही। अच्छा का बोलबे महूला तो बता। माता ऐसन माँ मोर घाटा हो जही, जब समय आही खुदे तोला मालूम हो जही। रानू हमर घर भर के मन बहूला मना डरेन, नहीं मानिस तोर दरी कैसे मानही। माता मैं हार हूँ ता बहु बन हूँ, जीत हूँ ता ऑफिसर। मोला अपन गरीबी से निकलना है, बाबूला सुख और खुद के घर सरकारी बंगला देना है। ऑफिसर बन के महिला मन के मान बढ़ाना, देश सेवा करत करत अपन जिंदगी सुधारना हावय। मोला तुम्हार घर के बहु बने के एको कनिक शौक नहीं है। रानू के साफ मन से शुद्ध विचार, देश सेवा के भावना, अधिकारी बने के चाह मा गरीबीन बर सुरजल दया आगे। एकर मृतालीन स्वभाव, मीठ भाखा, ईमानदारी, बिना कपट खुददारी बने लागिस। सुरजा सोचते ये टूरी हा ऐसन का बात कही, तेला सुन के वो हा अपन पति का ना आ जही। यही बात समझ से परे लागत रहा है। माता बर्तन मांज के लईका मल्ला ट्यूशन पढ़ा के ये दुनिया के बैरी मन के गलत आचरण ले अपन जान बचाए बर तुम्हार शरण आए हूँ। मोला पढ़े बर नानू कुरिया दे दूँ, तुम्हार उपकार जिंदगी भर नहीं भूलाऊँ। रानू के आँखी बोटबोट आ गए, अब तब आंसू चुहैया रहा है। रात माँ मैं अपन घर माँ पढ़ूँ, अपन बाबू के सेवा करूँ। कतरो झन मोर बर खोटा नियत करते, एक दिन ओ मल्ला जवाब देना है। तोर बाबू बर जेवन कैसे कब करबे। बाबू बर रोज गांधी मुफत भोजन भंडार के भात साग ले जात हूँ। आधा घंटा काम करके मोला अड़बड़ शांति और पुण्य मिलते। ठीक है रानू, तोर सपना पूरे करे बर मोरो सहयोग रही। भंडार के आखिरी कुरिया साफ सफाई कर उन्हें पढ़बे। विमल और उमा आपस में गोड बात होवत रही थे, जे माँ किसानी घर परिवार के हालचाल, लईका मन के पढ़ाई खान पान समय में करे के मया भरे सलाह शामिल रही थे। एक दिन उमा फोन में गरियात रहा, ए जी तोला शर्म नहीं लागे, एक झन टूरी संग तुम्हार लफड़ा दफड़ा के बात सुने बर मिलत है। ओ मोर कॉलेज के संगवारी आए, मोर गांधी मुफत भोजन भंडार मा काम करन लागथे, आना जाना लगे रथे, कोई जरूरत नहीं है ओकर संग गोठी आए के, नहीं ता एक दिन अंगरी धरत धरत सैघो हाथ ल धर ली, संभल के रहिबे। अब का करौं, तय मोला छोड़ दे हस, टाइम पास करे बर गोठिया लेथों, तेहा टाइम पास कथस, मोर सास हा सबो जीवन बनाए बर सौंप दे है, घर भर के मन मोहागे हो, मोर मइंता जे दिन भड़क जही वो दिन घर जाके ओकर चुंदी हपाट के नंगत को चर दूँ। विमल चिढ़ाए बर कथे, ऐसन गलती झन कर बे, बड़े जान अधिकारी बनैया है, तोला जेल में डार दी, जान डरे ओला अधिकारी बनाए के काम तोरे तो ही, दानी आदमी आस, तय हाँ फिर मैं ओकर चटनी बना दूँ, अगर मोर घर द्वार में आगे लगाही, मोर जोड़ी ल टोराही ता, उमा के भाखा आगी और रिस उगलत रहा है। विमल एति फोन ल काट दिस, ओती उमा अलकरहा बगिया गे, चार बच्छर के कठोर मेहनत, लिखाई पढ़ाई पेपर दे के रानू जिला पंचायत सीईओ बनीस। उमा अपन मोबाइल व्हाट्सएप मा राजेश और अपन प्री वेडिंग रंगीन फोटो उमा ला भेजिस, फोटो देख के उमा पसीना माँ नहा डरीस, ओकर जी माँ हाहाकार मच गे। पहली फोटो माँ विमल के गोद माँ मुड़ी रखे निहारत रहा, नीचे माँ लिखाय रहा, तोर जोड़ी संग मोर बिहाव होइया है, तोर माँ ताकत हे ता अपन घर टूटे से बचा के दिखा। दूसर फोटो माँ रानू के गोद माँ मुड़ी रखे राजेश निहारत रहा, नीचे माँ लिखे अपन पति के अच्छा काम ले आँखी मुंदे तेकर सजा भोग। तीसर फोटो माँ एक दूसर के पीठ माँ पीठ चटकाए बैठे रहा, नीचे लिखे मैं तोर सौद बन हूँ, तय मोर विमल ला तरसाए हस। चौथा फोटो माँ रानू ला पाछू डहा ले विमल पोटारे रहा, नीचे लिखे काली हमार भावर पर ही देखे बर आ जाबे। अतका सब उमा पढ़ के तुरंत सूट के धरीस अपन ससुराल पहुँच, सास ऊपर बरस थे, कहाँ है वो चुड़ैल हा, ओला मार पीट के भगाना है। सुरजा अपन घर संभाल बेटी, तोर संग हमन हावन, ओला घर मा निंगन नहीं देन। सास सुरजा बड़ खुश होते, रानू हा बात सांची करके दिखा दिस, एति उमा घर मा बिहाव मड़वा सजावट कुछु नहीं देख पूछते, मुला राजेश कना जाना है, माता बिहाव कहाँ मड़ा है तेला बता। ओकर पाँव पकड़ माफी मांग के अपन घर बचाहूँ। उतकी बेरा सरकारी गाड़ी ले अपन दू जन सहयोगी कर्मचारी संग रानू दंग दंग ले उमा के आगू ठाड़ होते। उमा रानू ला चीन के ओहा अपन जोड़ी के सही काम ला गलत ठहराए के सेती पछता थे। रानू के आगू हाथ जोड़ विनती करते, बहिनी तेहा अधिकारी बन के दिखा डरे, मोला मोर जोड़ी लहुटा दे, मैं तोर विनती करत हाँ। रानू उमा ला छाती में पोटार लीस, भौजी ना मैं तोर दुश्मन हो, ना विमल संग मोर कोनो संबंध है, वो मोर मितान आए, मैं शर्त जीत गयो। रानू थोकिन रुक के कथे, जा तोर जोड़ी हा गांधी मुफत भोजन भंडार मा तोर अगोरा करत है, आज दोनों जन मिल के लोगन ला जीवन कराए बर परन घलो करे है। ड्राइवर हा रानू के इशारा पाके उमा ला गाड़ी मा बैठे के प्रार्थना करते, ता वोहा गाड़ी में बैठते। जा भौजी मोला माता संग कुछ बात करना है।
1: संगवारी के शर्त, ये कहानी आप मन सुनत रहो श्री मानसिंह मौलिक ले, और पत्रिका के आखिर में कविता सुनात हैं श्री तोषण कुमार चुरेंद्र।

हारी तोरी गुनी लगाऊ। कुकरा की बाँक सुने सूरज पाँव पसारे, सूरज पाँव पसारे। बड़े भी नाच रही चिरगुन कोयली कुह की मारे, कोयली कुह की मारे। कुकरा की बाँक सुने सूरज पाँव पसारे, सूरज पाँव पसारे। बड़े भी नाच रही चिरगुन कोयली कुह की मारे, कोयली कुह की मारे। पाँव पखारो पाँव पखारो पाँव पखारो, छत्तीसगढ़ महतारी तोरे महिमा आवे भारी, तोरी गुण लगाओ। छत्तीसगढ़ महतारी तोरे महिमा आवे भारी, तोरी गुण लगाओ। तोरी को राम लहरावे अर पपैरी धारे, अर पपैरी धारे। महानंदी सोंढुरी के झुमरथे कसारे, झुमरथे कछारे। तोरी को राम

के झुमरथे कसारे झुमरथे कसारे लहलहावे लहलहावे लहलहावे वो छत्तीसगढ़ महतारी तोरे महिमा हावे भारी तोरे गुण लगावो छत्तीसगढ़ महतारी तोरे महिमा हावे भारी तोरे गुण लगावो रुख राई जंगल झाड़ी तोरे च सिंगारे हे तोरे च सिंगारे हे देवधामी तीर्थ बरत हीरा के भंडार हे हीरा के भंडार हे रुख राई जंगल झाड़ी तोरे च सिंगार हे तोरे च सिंगार हे देवधामी तीर्थ बरत हीरा के भंडार हे हीरा के भंडार हे जगमगावे जगमगावे जगमगावे वो छत्तीसगढ़ महतारी तोरे महिमा हावे भारी तोरे गुण लगावा वो छत्तीसगढ़ महतारी तो

0: अब मैं हर दूसरा कविता सुनाए बर जात हूँ जेकर शीर्षक है पेड़ और आला छंदमा रचना हवे।
1: पेड़ लगावा जुर्मिल संगी अमृत छैया हे बगराय पानी बादर झुर झुर लावे धरती को राहे हरियाय पानी बादर झुर झुर लावे पेड़ बिना है सुनना जगिए संत सुजानिक करो विचार कैसे पानी हवा बचाबू होवत हवे हाहाकार कैसे पानी हवा बचाबू पेड़ लगाथन कहके भैया दे मारे फोटो खिंचवाए बिन पानी सब सुनना दीदी लगे पेड़ ला कोन बचाए बिन पानी सब सुनना दीदी पेड़ बचावे जिंदगी सबके चेत गरौ गामित मितान हरियर धरती के को रामा आही तभी नवा बिहान हरियर धरती के को रामा धरती हरियर दुनिया हरियर मानो संगी मोरो बात शुद्ध हवा पानी मिल ही तब हो ही जब झुर झुर।

0: बादर झुरझुर लावे, धरती के कोरा हरियाए, पानी बादर झुरझुर लावे, धरती के कोरा हरियाए, पानी बादर झुरझुर लावे।
1: अभी आप मन श्री तोषण कुमार चुरेंद्र ले कविता पाठ सुनत रहो। एकरे संग आज के छत्तीसगढ़ी समन्वित कार्यक्रम मोर भुइया के आज के ए अंक ले मोला इहे विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

0: मोर भुइयां। अभी आप छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्य कार्यक्रम सुन रहे थे। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: अभी लौटते हैं।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से। अन्विता दत्त ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है विशाल शेखर ने। शेखर रविजयानी और सलीम मर्चेंट साथ ही नीति मोहन की आवाजें हैं।

0: ये बोल थे तर्ज बनाई थी हिमेश रेशमिया ने।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
0: तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में एक था टाइगर फिल्म से ये गीत। कौशल मुनि ने इसको लिखा है और संगीत दिया है सोहेल सेन ने।

एक था टाइगर, इस फिल्म से आपने अभी ये गीत सुना, तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में। और अब वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी इस फिल्म से, ये गीत जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत है, धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जब तक है जान फिल्म से श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का गाया गीत। गुलजार ने इस गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी प्रस्तुति राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया गीत समीर के बोल साजिद वाजिद का संगीत।

राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया गीत आपने सुना, समीर के बोल थे साजिद वाजिद का संगीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, आपको बता दें कि 9:30 पर सुबह यानी अब से कुछ ही देर में और पुनः रात को 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। कार्यक्रम सुनना नहीं भूलिएगा आज के फनकार। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाज

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

दिल्ली में एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुंचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था, वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

वेनसडे के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जानें। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर।

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किट में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

0: नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का
1: श्वानी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप खुमान लाल साव और उनके साथियों को सुन रहे थे। इन्हें आप इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर पुनः सुन सकते हैं। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। जगदलपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। और दुर्ग पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में पहली बार हो रही ये बैठक क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि ये बैठक अंतर्राज्यीय समन्वय को मजबूत करेगी और क्षेत्र में सुरक्षा तथा विकास को नई दिशा देगी। श्री साय ने कहा कि कभी नक्सली हिंसा की चुनौतियों से जूझने वाला बस्तर आज शांति, सुरक्षा और विकास की नई पहचान बना रहा है। ऐसे समय में देश के वरिष्ठ नेतृत्व और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति बस्तर के बदलते स्वरूप और बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने कल बस्तर जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों में बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर प्रवास के दौरान कल जगदलपुर में अमर वाटिका पहुंचकर के विरुद्ध संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कल जगदलपुर में शहीदों के परिजनों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों और नक्सल पीड़ितों के साथ मुलाकात और चर्चा की। श्री शाह ने खुशी जताते हुए कहा कि 3 पीढ़ियों तक जिस नक्सलवाद को समाप्त नहीं किया जा सका उसे हमारे वीर जवानों ने मात्र 3 वर्षों में समाप्त कर दिखाया। उन्होंने कहा कि माओवाद इसलिए नहीं फैला था कि यहां विकास नहीं था, बल्कि यहां विकास नहीं होने का कारण ही हथियारबंद नक्सलवाद था। अब हथियारबंद नक्सलवाद समाप्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि देश के सभी आदिवासी संभागों में बस्तर सबसे विकसित आदिवासी संवाद बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अपने बस्तर दौरे के दौरान कल शाम जगदलपुर स्थित बादल अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने बस्तर के संघ कार्यक्रम में बस्तर की आदिवासी लोक कला और संस्कृति का आनंद लिया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 3,28,00,000 लीटर से अधिक पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर से ज्यादा डीजल उपलब्ध है। खाद्य विभाग ने सभी ऑयल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक कम है वहां प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा कारोबार का मुख्य संचालक सेट स्पोर्ट बुक और लोटस ऐप के जरिए म्यूल अकाउंट का उपयोग कर करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहा था। पुलिस को आरोपियों के पास मिले म्यूल खातों से करीब 5 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली है। बिलासपुर जिले में पुलिस और एसीसीयू की टीम ने सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं इलेक्ट्रिक ऑटो से गांजे की तस्करी कर रही थीं। सभी महिलाएं मटियारी गांव की रहने वाली हैं और ओडिशा से गांजा लाकर आसपास के इलाकों में खपाने की तैयारी में थीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जगदलपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और दुर्ग पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
3: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

समय चक्र के घेरे में सारा ब्रह्मांड है, क्योंकि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। अतीत, भविष्य और वर्तमान सभी समय से बंधे हैं। समय का सम्मान अनुशासन सिखाता है और अनुशासन से ही होती है देश और समाज की प्रगति।

इसीलिए वक्त की कद्र करना हर नागरिक का कर्तव्य है। ये तब और भी जरूरी हो जाता है जब नागरिक शासकीय सेवक हो। छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही के लिए ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की है। डिजिटल तकनीक पर आधारित ई ऑफिस प्रणाली सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। सरकार की ये पहल छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया

0: सवेरा लेकर आई है, यानी अब सब कुछ हो गया है ऑनलाइन।
1: मैं उत्तम प्रसाद रजक डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर ऑफिस रायपुर से बोल रहा हूँ सर। ये ई ऑफिस शासन की डिजिटल कार्य प्रणाली है, जिसके माध्यम से सरकारी कार्यालयों में फाइलों एवं पत्राचार का कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। रायपुर जिले सहित लगभग समस्त छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ाने के लिए यह प्रणाली लागू की गई है। इसके संचालन हो जाने से जो उच्च अधिकारी हैं फाइलों को ट्रैकिंग करने में उनको मदद मिलती है, और ई ऑफिस में जो फाइल आगे बढ़ती है उसका अनुमोदन जो है तत्काल द्रुत गति से होता है, और इससे ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी सुविधा मिल जाती है। इससे शुरू हो जाने के पश्चात जो है लगभग जो सुविधाएं मिल रही हैं वह है फाइलों का ऑनलाइन संचालन एवं ट्रैकिंग, समय की बचत और कार्यों का शीघ्र निपटान, नागरिक सेवाओं का डिजिटल माध्यम से लाभ, जैसे कि अभी सेवा सेतु पोर्टल लागू किया गया है जिसमें नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं जो है जो पूर्व मिल रही थी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उससे ज्यादा सुविधाएं मिल रहा है। मैंने एक प्रकार से एक मंच एक पोर्टल के माध्यम से लोगों को नागरिकों को जो है काफी डिजिटल माध्यम से लाभ मिल रहा है। ई ऑफिस से विभागों में जो फाइलों का आदान प्रदान है वो तेज गति से होता है, ऑनलाइन के द्वारा अनुमोदन होता है, और डिजिटल सुविधा डिजिटल हस्ताक्षर की भी सुविधाएं हैं। इससे अधिकारी जो है अपने आधार कार्ड या अपने मोबाइल नंबर के सहायता से ओटीपी प्राप्त करते हैं और अनुमोदन करते हैं। ई प्रणाली से जो रिकॉर्ड है वो भी सुरक्षित रहती है, आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। इसका एक ई ऑफिस में एक और महत्वपूर्ण है वो है पेपरलेस, जो जिसको हम इको फ्रेंडली कह सकते हैं। कागज का बचत तो होता ही है, साथ ही साथ ये एक प्रकार से पर्यावरण के दृष्टि से भी ज्यादा सुरक्षित पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है जो है। इससे फाइलों की खोने की जो संभावना है कम हो जाती है, क्योंकि कोई व्यक्तिगत रूप से एक टेबल से दूसरे टेबल पर पहुंचाया नहीं जाता है, बल्कि केवल जो है यह एक कंप्यूटर के माध्यम से जो हमारा फाइल्स हैं वो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से डिजिटल पत्राचार को इससे बढ़ावा मिल रहा है, और जैसे कि हम नए युग में रह रहे हैं तो तकनीकों का समावेश से ही या फिर जो है निश्चित रूप से ही सभी विभागों को अपने जवाबदेही तय करने में ज्यादा सुविधा मिल रहा है, और ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ के लगभग सभी विभागों में ई ऑफिस जो है लागू कर दिया गया है, जिसमें मुख्यतः जो है सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग। इस प्रकार से ई ऑफिस जो है हमारी जो ऑफिस कार्य में एक महत्वपूर्ण रोल जो है अदा कर रहा है, और लगभग सभी कर्मचारी जो है इससे जागरूक होकर के अपने कार्य जो है जवाबदेही ज्यादा अच्छा से कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई अधिकारी पहुंचता है तो सर्वप्रथम वो अपने कंप्यूटर मॉनिटर को ओपन करता है, और ओपन करने के पश्चात देखता है कि क्या क्या पेंडिंग है, किसको निपटाना है, किसको आगे फाइल को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से यह ज्यादा पारदर्शी है, ज्यादा जवाबदेही है, और ये ऑफिस जो है एक शासन की महत्वपूर्ण योजना है, और ये शासन के योजनाओं को और क्रियान्वयन को पारदर्शी रूप से और ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के प्रति जवाबदेही तय करती है।

ई ऑफिस अनुशासन और सुशासन का आदर्श रूप है। इस ऑनलाइन सुविधा ने पेपरलेस वर्क को गति प्रदान की है, साथ ही एक कार्यालय को दूसरे कार्यालय से सरलता और शीघ्रता से जोड़ा है। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच की दूरी ई ऑफिस

सरकारी कार्यों में गति और पारदर्शिता दोनों बढ़ी है। पहले ऑफलाइन फाइलों के संचालन में काफी समय लगता था, लेकिन अब ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग, डिजिटल सिग्नेचर और उसके त्वरित अनुमोदन से सुविधा से कार्य शीघ्रता से हो रहे हैं। इससे आम नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल पा रही है और साथ ही साथ कार्यालयों में जवाबदेही भी बढ़ी है। अगर हम ई ऑफिस की सुविधाओं की बात करें तो ई ऑफिस जब से शुरू हुआ है उसके शुरू होने से कर्मचारियों और अधिकारियों को कई सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कि अब फाइलों को ऑनलाइन भेजा और देखा जा सकता है, जिससे किसी भी स्तर पर हम ऑनलाइन ई ऑफिस के तहत कार्य की स्थिति को तुरंत पता लगा सकते हैं। दस्तावेजों के सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ कार्यालयों के बीच समन्वय भी आसानी से हो रहा है। इससे समय और जो शासन के संसाधन है इन दोनों की बचत हो रही है। ई ऑफिस का पेपरलेस कार्य प्रणाली में क्या महत्व है, अगर हम बात करें तो पेपरलेस कार्य प्रणाली में ई ऑफिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे कागज की खपत कम हो रही है और रिकॉर्ड भी सुरक्षित रह रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण को भी इसमें बढ़ावा मिल रहा है। डिजिटल माध्यम से कार्य होने से फाइलों के गुम हो जाने या फिर उनके विलंब की जो समस्या थी उसमें कमी आई है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बन रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस का उपयोग राज्य शासन के विभिन्न विभागों में किया जा रहा है, जैसे कलेक्ट्रेट, राजस्व विभाग और शासन के अन्य महत्वपूर्ण सभी विभागों में ये कार्यालय शामिल है। राज्य सरकार इसे धीरे धीरे चरणबद्ध रूप में सभी विभागों में लागू करने के लिए पूर्णतः डिजिटल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

0: ई ऑफिस प्रणाली तकनीक की दुनिया का एक नायाब शाहकार है। इससे सूचनाओं का आदान प्रदान तो हो ही रहा है, शासन की कार्य प्रणाली को भी स्पष्ट आधार मिल रहा है। इस प्रणाली का उद्देश्य ही ये है कि समाज प्रशासन के करीब आए और सारे कामों का निराकरण जल्दी से जल्दी जमीनी स्तर पर ही हो जाए। ई ऑफिस जनता और प्रशासन दोनों के लिए ही वरदान है। पारदर्शिता का ये एक अनुपम उदाहरण है।
1: मैं नितेश चक्रधारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ में संलग्न हूँ। अभी वर्तमान में सरकार ने छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस लागू किया है,

ई ऑफिस क्या है इस चीज को हम समझते हैं। ई ऑफिस एक डिजिटल कार्य प्रणाली है जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। यह जो पारंपरिक फाइल की व्यवस्था होती है उसको ऑनलाइन प्रणाली में बदलता है। इससे क्या होता है कि ऑनलाइन प्रणाली में आने से जवाबदेही सुनिश्चित होता है और सुशासन और पारदर्शिता की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसका महत्व यह है कि सरकारी फाइलों का डिजिटल प्रबंधन प्रारंभ हुआ है, अधिकारियों के बीच में कार्यों का तेजी से आदान प्रदान हुआ है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आई है, पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत अधिक बढ़ा है, रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है, भ्रष्टाचार और देरी में कमी लाती है, मतलब हम जीरो टॉलरेंस की तरफ बढ़ते हैं। यह एक डिजिटल गवर्नेंस का एक मजबूत स्तंभ माना जा सकता है। इससे बहुत सी सुविधाएं हमको मिल रही है। अब इनकी हम सुविधाएं की बात करें तो हम इसको तीन स्तर पे बांट सकते हैं कि भैया कर्मचारियों को क्या सुविधा मिल रही है, आम नागरिक को क्या हो रही है और प्रशासन को इससे क्या फायदा हो रहा है। तो पहले तो अगर हम कर्मचारी और अधिकारियों की बात करें तो फाइल ऑनलाइन भेजने और देखने की सुविधा उपलब्ध होती है। इससे ये होता है कि कोई अधिकारी अगर दूर है तो वह ऑनलाइन माध्यम से अपने फाइल को ट्रैक कर सकता है, किसी भी समय और स्थान से कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। अभी हाल में ही एक हमारे सर हैं एक विभाग के, वो विदेश में थे, तो विदेश में रहने से वो करीब 10 दिन विदेश में थे, तो 10 दिन रहने से तो फाइल तो रुक जाती, लेकिन वह जब विदेश में थे तो वह विदेश से ही आसानी से वह अपने फाइलों को ट्रैकिंग कर पाए। तो फाइल को ट्रैकिंग करना बहुत आसान होता है और कार्य में समय बहुत की बचत होती है। दूसरी, अगर हम आम नागरिकों की बात करें तो सरकारी कार्यों में इससे तेजी आई है, आवेदन और शिकायतों का बहुत शीघ्र निपटान होता है, पारदर्शी प्रशासन होता है और कार्यालयों का चक्कर कम लगाना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से दृष्टि से देखें तो यह कागज और खर्च में कमी लाती है, पर्यावरण संरक्षण को बहुत बढ़ावा दे रहा है, रिकॉर्ड सुरक्षित और व्यवस्थित रहता है और दूसरा कार्यों की निगरानी भी बहुत आसान होती है। इसके महत्व, ई ऑफिस का आज महत्व देखें तो यह सबसे पहले है कि हम एक पेपरलेस कार्यालय की तरफ हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। पेपरलेस प्रणाली एक सरकारी और आधुनिक और सुरक्षित प्रभावी बनाता है। दूसरा, यह कागज की खपत को तो कम करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। फाइलों के खोने की समस्या से निजात मिलती है, फाइलों के खोने की जैसे कई बार दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, अगर उनका डिजिटल संधारण रहता या डिजिटल फाइल रहती तो उनके जलने से और उसके प्रभाव नहीं होता, मतलब वह चीज आसानी से हमको मिल पाता। तो ऐसे घटनाओं से बचने के लिए भी एक डिजिटल संधारण बहुत अनिवार्य है शासकीय कार्यों में। डिजिटल रिकॉर्ड को बहुत लंबे समय तक भी हम सुरक्षित कर सकते हैं हमारे डाटाबेस में और दस्तावेज खोजने में कम समय लगता है। जब बड़ी बड़ी नस्तियां फाइलें रहती है तो 4 साल 5 साल बाद जब उनकी दोबारा आवश्यकता होती है तो वह बहुत जीर्ण शीर्ण भी हो जाती है और उसको ढूंढने में बहुत समय लगता है, उसकी ट्रैकिंग प्रणाली थोड़ी सी कठिन होती है। वह ई ऑफिस प्रक्रिया में यह बहुत आसान है और इसे कार्यालय में तेज और बहुत व्यवस्थित व्यवस्था होती है। ई ऑफिस प्रणाली आज छत्तीसगढ़ में लगभग 87,222 अधिक से अधिकारी और कर्मचारी इससे जुड़े हुए हैं। अगर हम इसके फाइलों के मूवमेंट के बारे में बात करें तो जब से लागू हुआ है तब से 5,46,903 फाइलों का मूवमेंट हुआ है, इसे हम मान सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी बचत है, पेपरों की बचत हुई है, डिसीजन लेने में कितनी जल्दी इसका डिसीजन हुआ है। दूसरा, ये को लगभग आज छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में, छत्तीसगढ़ के जितने भी सभी विभाग है सभी विभागों में ई ऑफिस को लागू कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग हो चाहे राजस्व विभाग हो सभी, और न केवल जिला स्तर के भी नीचे जितने ऑफिस हैं उन सभी में ई ऑफिस प्रणाली को दुरुस्त किए लागू किया गया है। और इसको लागू किया गया है यह केवल नहीं है बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इससे लगत सतत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की व्यवस्था NIC जो डिजिटल नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी के हिसाब से, NIC और हमारी शासकीय टीम चिप्स, ये दोनों मिलके पूरी
सारे अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और ये विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण हो रहा है। और इस प्रशिक्षण का फायदा ये हो रहा है कि आज सभी अधिकारी कर्मचारी अपना ई ऑफिस से कार्यों का संचालन लगभग प्रारंभ कर चुके हैं और निश्चित तौर पर यह एक सुशासन की एक नई और आधुनिक परिभाषा हम लिखने के लिए तैयार है अपनी हमारी छत्तीसगढ़ सरकार।

0: छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस यानी सुशासन प्रशासन की आधारशिला है ई ऑफिस। रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य हो या फिर डेटा कलेक्शन, सब कुछ आसान हो गया है ई ऑफिस की बदौलत। आज के डिजिटल युग में लंबी कागजी प्रक्रिया की जगह तकरीबन सब कुछ हो गया है ऑनलाइन। बात आवश्यक प्रमाण पत्रों को बनवाने की हो या बच्चों के शैक्षणिक कार्यों की, ई ऑफिस सब जगह एक जिम्मेदार मददगार के रूप में उपलब्ध रहता है। ई ऑफिस को ज्ञान का भंडार कहा जा सकता है। जनगणना जैसा बड़ा काम भी आज डिजिटल माध्यम से हो रहा है। ई ऑफिस सिर्फ एक सुविधा ही नहीं बल्कि समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत का भी एक अच्छा जरिया है।
1: मैं दीप्ति बघेल, सहायक शिक्षिका, शिक्षा विभाग से हूँ। आज का समय डिजिटल युग का समय है। पहले जिन कार्यों को पूरा करने में कई दिन, कई चक्कर और बहुत अधिक कागजी प्रक्रिया लगती थी, वही काम आज इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल की सहायता से कुछ ही मिनटों में हो रहे हैं। यही आधुनिक व्यवस्था ई ऑफिस कहलाती है। ई ऑफिस का अर्थ केवल कंप्यूटर पर काम करना नहीं है, बल्कि इसमें लोगों का समय और मेहनत दोनों बच रहे हैं। यदि शिक्षा विभाग की बात करें तो आज स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति, परीक्षा परिणाम, छात्रवृत्ति पोर्टल, डिजिटल क्लास, स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएं शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। प्रशासनिक कार्यों में भी ई ऑफिस ने बड़ा परिवर्तन लाया है। आज फाइलें ऑनलाइन भेजी जा रही हैं, रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा रहे हैं और कार्यों की निगरानी पहले से अधिक सरल हो गई है, जिससे जानकारी जल्दी और व्यवस्थित रूप से एकत्र हो रही है। डिजिटल इंडिया जैसी पहल के माध्यम से ऑनलाइन कार्य प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका लाभ यह है कि कई सरकारी कार्य घर बैठे ऑनलाइन

ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इस प्रकार ई ऑफिस केवल सुविधा ही नहीं बल्कि समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत का भी एक प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। ई ऑफिस और डिजिटल तकनीक आज के समय की आवश्यकता है। यदि हमें समय के साथ आगे बढ़ना है तो हमें नई तकनीकों को सीखना और अपनाना होगा। विशेष रूप से शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को उसका सही और सुरक्षित उपयोग भी सिखाएं। इंटरनेट, ई ऑफिस और एआई ने हमारे जीवन को सरल, तेज और आधुनिक बनाया है। यह हमारे विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। आवश्यकता केवल इस बात की है, हमें इसका उपयोग मानव कल्याण और समाज की प्रगति के लिए करना चाहिए।

ऑफिस प्रणाली ने पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शिता को एक साथ प्रवाहित किया है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ एक मजबूत पहचान के साथ उभरा है। ई ऑफिस ने प्रशासनिक व्यवस्था की कई अलग अलग कड़ियों को एक सूत्र में पिरो दिया है। इससे जन सुविधाएं आसानी से सब तक पहुंच रही है, शहर, कस्बे या फिर हो गांव। ई ऑफिस की छत्र छाया में सब फल फूल रहे हैं। अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है सारी योजनाएं। यही तो है सर्वांगीण विकास की परिभाषा। भारत के मानचित्र पर छत्तीसगढ़ विश्वास और प्रगति की एक नई गाथा लिख रहा है। ई ऑफिस की संवेद किरणों के साथ सबको लेकर अपने साथ बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: आकाशवाणी के नागढ़ केंद्र से 10:30 हुए हैं। हेलो संगी, प्रस्तुत करता है रवि आनंद, संचालन करता है हर्ष प्रकाश नामदेव।

0: संगी हो राम राम, मैं हूँ आप मन के संगी हर्ष और स्वागत है आप सबो जिन के हेलो संगी कार्यक्रम में। हेलो संगी कार्यक्रम हमर श्रोता मन के लिए कार्यक्रम है जेमे हमन श्रोता मन हमन ला फोन लगाते और अपन पसंद के लोकगीत ला सुनते। तो चला कार्यक्रम ला शुरू करी और जबकि हमारे श्रोता मन अगोरा थे फोन लगाते उमन के फोन ला उठाई और मन के पसंद के लोकगीत ला सुनी। हेलो
1: हेलो
0: जोहार।
1: हेलो संगी, मोर मैं भरे राम राम।
0: राम राम संगी, जोहार है आपला। और कहाँ ले फोन लगाए है का?
1: मैं नारायण प्रसाद वर्मा बोला था संगी।
0: नारायण प्रसाद वर्मा जी, स्वागत है आपके। मैं हर हर्ष बात करत हो आपके संगी माँ, आपके साथी, आपके गुटकार।
1: आप तो ने तो आपकी आवाज ले पहचान जैसा, आपके माया लगी जान जैसा कि हमारे हर्ष भैया हमारे बरकत का माया करते करके।
0: हाँ, अब आपके भी चिट्ठी मिलत रहते और आपके गोट बादला सुन के बड़ सुघर लगते संगी। अभी कैसे चलत है, का हाल चाल है, गर्मी में कैसे बचा था गर्मी ले?
1: हाँ संगी, अभी देखना तो गर्मी कसके पड़ा था है।
0: हाँ।
1: और खेती काम मेरे काटा खुटी बिजली घलो चलत है संगी, तो सुबह ले अपन बोरे बासी खा के अमन खेत चल रहे।
0: हाँ।
1: और जैसे ही एक दो घंटा खेत में काम करते संगी, फिर अपन घर लौटा था।
0: अच्छा।
1: हाँ संगी। हाँ
0: वो का बोलते हैं, जैसे अभी बदली करा थे तो बदली में बढ़िया है हाल चाल सेहत हर?
1: हाँ संगी। हाँ हाँ अभी तो बढ़िया संगी, बदली के मौसम में। हाँ हाँ भैया, देखना अरे रोज के ज्यादा पानी आ जाते।
0: हाँ, हाँ।
1: दिन पानी गिर जाते, फिर कोनो दिन कसते हम कर देते संगी, सब चलत है अभी।
0: तो संगी अबकी बढ़िया हमन ला बता था हाल चाल, तो हमन ला यू बतावा कि कौन सा लोकगीत ला आप सुनना चाहा था?
1: सुनना आवे के हल है पर सुनता मैं सुनता तो माजे हेरे में आवे दो ला बहुत सुना है संगी आपके राजा से।
0: हाँ, तुहर सुरता में सुरता समागे है जेकर जिमेश्वर है साधना यादव के, आप ला सुनाथन तदलेवा चला सुना।
1: हाँ संगी। हाँ हाँ जरूर। हाँ संगी।

0: हेलो संगी, स्वागत है आप मन के। हाँ
1: हेलो।
0: जी बतावा, कहाँ ले फोन लगाए हा, कौन कहा था बतावा था हमनला।
1: हाँ जी, मेरा नाम है तुलसीदास महन, ग्राम पंचायत नंदेली विकासखंड रायगढ़।
0: अच्छा, नंदेली ले फोन आए हैं कहा। नंदेली में खेती बाड़ी में का चलत है संगी।
1: खेती बाड़ी
0: हाँ जी, का काम करता आप मन, खेती बाड़ी करता कि का काम करता।
1: हाँ, खेती बाड़ी घर परिवार के मन करते संगी, और मैं तो विकलांग हूँ।
0: हाँ, तो रेडियो ला बने सुनता।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, हेलो संगी माँ, कौन सा लोकगीत सुनना चाहता। आपकी पसंद के एक ठी भजन हमन सुना थन, हमार संग जुड़े रही है, और हेलो संगी माँ फोन करत रही है।
1: हाँ,
0: मैं पहुंचा दहा आपके शुभकामना। हेलो संगी माँ, आप ला जुड़े के धन्यवाद।

0: हेलो संगी।
1: से जिला कबीर धाम।
0: अच्छा, कबीर धाम ले फोन आए है कहा? तो संगी, का नाम बताया आप जी? का काम करता आप? हाँ, तो अभी कैसे है आपकी किसानी के काम कैसे चलत है?
1: खेती
0: हाँ, और अभी जैसे खरीफ मौसम में का लगाई है, ओकर तैयारी कर दा रहा कि नहीं कर दा रहे हैं? अब तो ज्यादा बेरा नहीं है, अब तो जून आते थे। हाँ, तो पूरा छत्तीसगढ़ में, हमार रायगढ़ में भी बरसात है, कवर्धा में भी बरसात है, कहा तो पूरा छत्तीसगढ़ में बरसात है।
1: कवर्धा 10-12 किलोमीटर पर से हमारे गांव से।
0: अच्छा, तो संगी अतकी बढ़िया, अतकी दूरिया ले हमन ला फोन करे है, तो बतावा कि कौन सा लोकगीत सुनान हमन आपला?
1: ममता के नाटक के गाना सुना दो भैया, बढ़िया तरह पसंद के।
0: कोई सा भी गाना, ममता चंद्राकर के। तो लेवा संगी, हमन की तरफ से ममता चंद्राकर के स्वर में आप बर एक ठी बढ़िया सुघर अकन के लोकगीत प्रस्तुत है। हेलो संगी ले जुड़े बर आपके धन्यवाद है।
1: थैंक यू भैया।

0: हेलो संगी।
1: राम राम भैया।
0: राम राम भैया, कहाँ ले बात करा था? कौन बात करा था? अपन परिचय देवा।
1: मैं अशोक कुमार साहू बोला हूँ, यह घर में बिहार जिला छत्तीसगढ़
0: हाँ तो अशोक जी, अभी आप का काम कर रहा था जी?
1: है। मैं तो भैया अभी तो फिलहाल कहीं काम उतना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो नियमित रूप से खेती किसानी काम करता हूँ, खाली समय में राजनीति काम करता हूँ भैया।
0: हाँ तो अशोक जी, कौन सा लोकगीत सुनावन हमन आपला?
1: और तो गीत भैया देना सुना भी थे, राम ले लो मोरे भैया जाके बेरा जय जोहार ले लो, ये वाले गीत सुना भी थे आप?
0: तो लेवा अशोक जी, सुनी आपके पसंद के लोकगीत ला।

0: हेलो संगी,
1: जयराम मित्र
0: जयराम जी बतावा कहाँ ले फोन करा था। उकार परिचय है आपके,
1: रोशन लाल बहुत बिलाई कर ले रोशन
0: बिलाई गढ़ ले रोशन
1: लाल देवांगन।
0: लाल जी। तो रोशन लाल जी बने बने हा,
1: हाँ सब बढ़िया मितान।
0: और का काम करता।
1: मैं कपड़ा को नहीं करता हाथ पैर
0: हाँ, तो हमारे पारंपरिक व्यवसाय ले जुड़े हा, और
1: का।
0: अत की बढ़िया काम करा था। बतावा फोन करे हा, मतलब कौन सा लोकगीत सुनना है आपला। मोर भाखा संग दया मैया के सुग्घर है मितान रे, तो लेवा केदार यादव जी के गाए अतकी सुघर लोकगीत ला हमन आपला सुनावत हन। हेलो संगी,
1: धन्यवाद
0: मत
1: मित्र।
0: जुड़े बर आपके धन्यवाद है संगी।
1: हाँ धन्यवाद धन्यवाद।

तब की सुघर सुघर लोकगीत ला सुनेन संगे हो। अब जाए के बेरा हो गए हे, जाए के बेरा मा आप मन के संग रहे में आप मन के संगी हर्ष और तकनीकी सहयोग रहिस बीएस ध्रुवे के, प्रस्तुति सहयोग है रामविलास पटेल के और प्रस्तुत करता है रवि आनंद। एकरे संग मा हमर जाए के बेरा हो गए है। जात जात सबो निल्ला राम।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी। प्रस्तुत करता थे रवि आनंद, संचालन करता थे हर्ष प्रकाश नामदेव। ये कार्यक्रम संपन्न होता है पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। इस समय सुबह के 11 बजे हैं। सुनिए विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

हम सुन रहे थे ये गीत दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज़ में फैज़ अनवर के बोलों के साथ साजिद वाजिद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम रंग तरंग में, जो कि है पल के की आवाज़ में। महबूब के बोल हैं और के का ही संगीत है और लिया गया है पल एल्बम से।

0: हम सुन रहे थे सुनो एल्बम से लकी अली की आवाज़ में असलम के बोल और लकी अली के संगीत के साथ ये सुमधुर सा गीत कार्यक्रम रंग तरंग में। चलिए चलते हैं, सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे ब्रीदलेस शंकर महादेवन की आवाज़ में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को जावेद अख्तर ने इसे अपने बोल दिए हैं। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा जो नुमाइश एल्बम से है, पंकज उदास ने गाया और संगीतबद्ध किया है, ज़फ़र गोरखपुरी ने इसे बोल दिए हैं।

जान मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके

हम सुन रहे थे जान एल्बम से सोनू निगम की आवाज़ में फयाज़ अनवर के बोलों से सजे हुए इस गीत को, जिसे संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

हम सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाज़ों में संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है आंखों में तेरा ही चेहरा। आर्यन इस एल्बम से लिया गया है, जय वालिया ने इसे गाया है, जय वालिया ने ही इसे लिखा है और ललित ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं यूफोरिया एल्बम से यह गीत जिसे गाया है पलाश सेन ने।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी की। पेट्रोल की कीमत 90 पैसे और डीजल की कीमत 96 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। और बिलासपुर पुलिस ने 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में अब से कुछ देर पहले मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और 4 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ ही पुलिस तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में पहली बार हो रही ये बैठक क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि ये बैठक अंतर्राज्यीय समन्वय को मजबूत करेगी और क्षेत्र में सुरक्षा तथा विकास को नई दिशा देगी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों के छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल की कीमत में 96 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह से रायपुर में अब पेट्रोल 104.46 रुपये प्रति लीटर और डीजल 97.51 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। इस बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 3,28,00,000 लीटर से अधिक पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर से ज्यादा डीजल उपलब्ध है। खाद्य विभाग ने सभी ऑयल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक कम है वहां प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर जिले में पुलिस और ACCU की टीम ने सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं इलेक्ट्रिक ऑटो से गांजे की तस्करी कर रही थीं। सभी महिलाएं मटियारी गांव की रहने वाली हैं और ओडिशा से गांजा लाकर आसपास के इलाकों में खपाने की तैयारी में थीं। पुलिस ने गांजे के साथ 2 इलेक्ट्रिक ऑटो भी जब्त किए हैं जिनकी कुल कीमत 46,75,000 रुपये आंकी गई है। जांजगीर जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में आज एक कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा अकलतरा के खटोला गांव में हुआ। बताया गया है कि बाइक में 4 युवक सवार थे जो कोटगढ़ गांव के निवासी हैं। हादसे के बाद घायलों को अकलतरा अस्पताल लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों गंभीर घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया है। कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र में बीती शाम हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 7 से अधिक लोग घायल हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब सतरेंगा के कारीघाट से पिकनिक मनाकर लौट रहे युवकों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में आज सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक सेवानिवृत्त शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये हादसा रेलवे पटरी पार करते समय हुआ है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम ने उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष 11वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। ये परीक्षा 1 जून से 9 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी की। पेट्रोल की कीमत 90 पैसे और डीजल की कीमत 96 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। और बिलासपुर पुलिस ने 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
4: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गयी, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल होगा आपके बीच बस थोड़ी ही देर के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल में हम लेकर आते हैं किसी एक की याद, और आज हम लेकर आए हैं कवि प्रदीप के गीतों को। कुछ उन्होंने गाए हैं, कुछ उन्होंने किसी और गायन गायक की या गायिका की आवाज़ में हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कवि प्रदीप की आवाज़ में ये पहला नगमा।

वामन अवतार फिल्म से हम सुन रहे थे ये गीत प्रदीप की आवाज़ में, प्रदीप के ही बोल और अविनाश व्यास के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में। ये गीत लिया गया है फिल्म मशाल से, मन्ना डे की आवाज़ में, प्रदीप के बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

विराम के पश्चात पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का अगला गीत, शंकर सीता अनुसुईया। इस फिल्म से प्रदीप के बोल हैं, प्रदीप की ही आवाज़ है और शिवराम का है

0: हम सुन रहे थे गीत पैगाम फिल्म से मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम यादों की महफिल में सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल में प्रदीप के द्वारा लिखा गया और प्रदीप के द्वारा ही गाया गया नागमणि फिल्म से यह गीत, जिसे संगीतबद्ध किया अविनाश व्यास ने।

कभी धूप कभी छांव फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम प्रदीप के बोल और प्रदीप की ही आवाज में चित्रगुप्त के संगीत के साथ।

0: हरिश्चंद्र तारामती इस फिल्म से सुन रहे थे हम इस गीत को हेमंत कुमार की आवाज में प्रदीप के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन विचार स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं एक और रचना जो कवि प्रदीप की कलम से निकली है और ये खूबसूरत सी रचना को आवाज़ दी है कवि प्रदीप ने ही, वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है और फिल्म है दो बहाने।

हम सुन रहे थे अमर रहे ये प्यार आशा भोसले की आवाज़ में। हमने लिया ये गीत अमर रहे ये प्यार फिल्म से। प्रदीप के बोल हैं और सी रामचंद्र का है संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत नास्तिक फिल्म से। प्रदीप की आवाज़, प्रदीप के ही बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत।

स्कूल मास्टर फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज़ में, प्रदीप के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जो कि है फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, प्रदीप के बोल हैं, हेमंत कुमार का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर में हम प्रति रोज आपको देते हैं एक बहुत प्यारी सी इबारत, और उस इबारत के साथ हम चुनते हैं कुछ नगमे। कभी कभी आपके और हमारे नगमे मिल जाते हैं और बन जाता है बड़ा प्यारा सा सुखद संजोग भी। तो चलिए हम चलते हैं आज की इबारत की ओर। इबारत कुछ ऐसी है कि चलो ना एक याद जीते हैं, अपनों की अपनों के साथ जीते हैं। कल ही तो उसका जन्म हुआ और सुनी हमने फूलों सी हंसी, फिर वही बालपन का सच्चापन और बढ़ती उम्र की नटखट नादानियाँ, फिर वही उम्र जब किताबें साथी बन गई और उम्र का वो साल जिसे बाली उम्र कहते हैं आ ही गया, और कब किसी के नैनों से भेंट हो गई, फिर प्रेम की जीत हार संघर्ष, साथ में बड़ा नाम करने की ख्वाहिश भी और जीवन साथी संग विवाह भी, धीरे धीरे एक परिवार जहां बहुत प्रेम है और फिर सुकून भरी दुनिया। शायद यही जीवन है आपका हमारा हम सबका। और इस प्यारी सी इबारत के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं और उन संदेशों को पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से लिखा है कि भारतीय संस्कृति दर्शन और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्य का जीवन चक्र एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित यात्रा है। चाहे हम विज्ञान की नज़र से देखें या दर्शन की, मनुष्य का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर अवस्था का अपना एक अनूठा महत्व, सौंदर्य और कर्तव्य होता है। यादें बचपन से बड़े होने तक का सफ़र, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि यादें बचपन से बड़े होने तक का सफ़र, बच्चों की मासूम हंसी, सच्चाई नादानियाँ, उम्र के साथ किताबें, बाली उम्र में नैन से नैन मिलना, प्रेम की जीत हार संघर्ष, नाम करने की ख्वाहिश, जीवन साथी, परिवार, सुकून भरी जिंदगी, सुकून भरी दुनिया, यही है जिंदगी। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जीवन का कालचक्र मुख्य रूप से

शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों का दौर, वयस्कता, आत्मनिर्भरता, करियर और पारिवारिक जीवन की शुरुआत, इसके लिए उन्होंने 20 से 40 वर्ष का उम्र दिया है। प्रौढ़ावस्था स्थिरता और अनुभवों का चरम, वृद्धावस्था 60 के बाद की उम्र, शारीरिक शिथिलता और मानसिक परिपक्वता का काल। ये सारी बातें हमारे श्रोता हमारे लिए लिख रहे हैं और लिखते लिखते बहुत अच्छे से हमारी इबारत को भी उन्होंने सजाया है। प्रेम किसी परिभाषा की परिधि में बंधने वाला तत्व नहीं है, यह तो एक चिरंतर प्रवाह है। और प्रेम क्या है? किसी को पालने के लिए व्याकुलता और फिर स्वयं को मिटा देने की पराकाष्ठा, क्या यह कर्तव्यों की वेदी पर किया गया त्याग है या साधारण मानवीय चेतना में किसी को पालना ही प्रेम मात्र माना जाएगा? ये उन्होंने कई सारे प्रश्न प्रेम को लेकर किए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम सभी को देने ही

हैं, बनते हैं और फिर उसी मिट्टी में एक नए जीवन की खाद बन जाते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र उठते रोते मुस्कुराते नई नई जिज्ञासाओं के साथ किशोरावस्था में आकर हार्मोन के बदलाव के साथ अपनी गलतियों से सीखते हुए और स्वयं की पहचान को निश्चित करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद के साथ

जीवन के सफर में राही, लता मंगेशकर की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल, एस डी वर्मन के संगीत के साथ सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत हम। और हमने आपसे पूछा कि ये गीत कौन सी फिल्म का है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, आपने बाकी उत्तर भी दे दिए। कहा फिल्म मुनीम जी से है, आवाज़ लता मंगेशकर की है, देवानंद नालिनी जयवंत पर इसे फिल्माया गया है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं, जीवन एक शाश्वत सत्य है जो एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। बिल्कुल सही बात है। और इस सत्य का सबसे पहला सत्य जो होता है वो होता है हमारा जन्म। और जन्म के बाद हमारी सुंदर सुंदर अटखेलियाँ, मस्तियाँ और बहुत सारी शैतानियाँ। और उन शैतानियों के बीच में हमें याद नहीं होता कि हम किसके साथ वो मस्ती कर रहे हैं या वो खेल खेल रहे हैं। हम बड़ा छोटा कद में, रंग में, रूप में, यौवन में, किसी भी चीज़ को हम नहीं देखते हैं। हम बस इतना देखते हैं कि ये जो है वो बस हमारा अपना है और हर कोई अपना लगता है। तो चलिए हम चलते हैं उस बाली उम्र की तरफ, उस बचपन की तरफ, जो छोटा सा बचपन है उसके। पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन, जवानी और वानप्रस्थ, यही जिंदगी के तीन पड़ाव हैं जब हम अपने और अपनों के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। बचपन खेलकूद, नादानियाँ, शैतानियाँ और फिर उसके साथ किताबों की दुनिया, दुनियादारी और जिम्मेवारी की तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम के बीच यह रिश्ता ऐसा होता है कि शुरुआत में ज्ञान और पढ़ाई उनकी एकमात्र दुनिया होती है, और लेकिन उम्र के साथ, दोस्तों के साथ, करियर, जीवन साथी का आना जीवन का एक स्वाभाविक खूबसूरत पड़ाव। अक्सर जीवन में ये बदलाव बच्चे किताबों की दुनिया से निकलकर व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। नए रिश्ते और उनके जीवन में ताजगी और एक नया नज़रिया लेकर आते हैं। यही एक ठहराव है, परिवार के रूप में होती है, जहाँ हंसी खुशी, सुकून, शांति दूरियों का संजोग बन जाता है। और इसी के बीच में चलती बढ़ती जाती है जिंदगी, और इसी का नाम है जीना। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। तो जन्म से लेकर, हमारे कौश होता लिखते हैं कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो अपने इंसान अपनों का साथ रहता है, अब वो सब बचपन फूलों सी, हंसी, संगी, साथी, सब कुछ एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है। बाली उम्र में किसी से नए ना लड़ जाए तो जीवन साथी को पाकर एक प्रेम से भरी दुनिया बन जाती है। जीवन का संघर्षों का नाम है और जो इसका

यह फिर युवाकाल विवाह से ग्रस्त आश्रम की ओर कदम पड़ते हैं। आज की एकल परिवार व्यवस्था में समुचित मानसिक बाधक है। मानव संकीर्णता तनाव और अपने आप में सिमट कर रह गया, तब महसूस होता है कि जीवन की भीड़ में इकाई मात्र बनकर उम्र गुजार दी है। ऐसी कुछ व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आपने चंद शब्दों में ही इंसान के पूरे जीवन चक्र और भावनाओं को बहुत गहराई से और खूबसूरती से पिरो दिया है। वाकई जीवन की यात्रा खूबसूरत बहती हुई नदी के समान है, जहां शैशव की निष्कलंक हंसी से लेकर किशोरावस्था के सपनों की से भरी उड़ान तक हर पड़ाव तक एक अनमोल है। संघर्ष, प्रेम, समर्पण के रेशों से बुना परिवार और परिवार के साथ वो सुकून भरी दुनिया हमारी असली दौलत वाकई जीवन में इन्हीं अनमोल यादों और रिश्तों की एक खूबसूरत सफर है। जिंदगी के इस बेहतरीन सफर को शब्दों में पिरोने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, स्मृतियों के झरोकों से अतीत की ठंडी हवाएं चलती हैं, मन का कोना कोना किसी भीनी खुशबू से महक उठता है। यादें जीवन की वह अनमोल पूंजी है जिन्हें ना तो समय चुरा सकता है, ना ही वक्त की धूल धुंधला सकती है। यह इंसान के भीतर बसा एक खूबसूरत सा संसार है, जहां बीता हुआ कल हमेशा आज बनकर सांस लेता है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। हमारा प्रश्न ये है कि एक बात बता दीजिए कि आप जो छोटे वाले थे ना, बहुत छोटे वाले यानी मैं भी छोटी सी थी, उस समय आपने ऐसी कौन सी बदमाशी या ऐसी कौन सी शैतानी की थी जिस शैतानी के लिए या तो बहुत सारी डांट पड़ी थी या बहुत सारी पिटाई। जल्दी से बताइएगा, उस बचपन को याद कीजिए जिस बचपन में आपने बहुत शरारतें की हैं, बहुत मस्तियां की हैं, लेकिन अपने जीवन को खुल के जिया है। आइए सुनते हैं ये गीत।

करती है। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा, मिली, ढूंढने वाला पूछता है सवाल और जवाब भी वही है, मिली। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और चलिए अब हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन को लेकर कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब मन में कोई स्वार्थ, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता नहीं होती। बच्चा हर पल में जीना चाहता है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, नई चीज़ों को छूना, तोड़ना, फोड़ना और हर बात में सवाल पूछता है। उसका स्वभाव होता है बचपन में रोने और हंसने में कोई मिलावट नहीं होती। अगर बच्चा किसी बात पर रुठता है

इस नदी के साथ साथ हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अरे बाबा, अरे ऐसी बड़ी गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ी गलती कर दी थी तो पिटाई तो शायद बनती है, क्योंकि आपके जीवन का भी तो सवाल बनता है ना। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बड़ा भाई, जो मुझसे 2 साल बड़ा है, को कसाई बोलने पर जो गुस्सा आता था, तब मैंने विज्ञान में वायु के उपादानों को याद करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कसाइड याद करते हुए कसाई शब्द को जोर से उसकी तरफ देखकर पढ़ने लगा। वो उस पहले समझा मैं याद कर रहा हूँ, बाद में जब वो समझा तो खूब लड़ाई हुई। ये भोलापन, ये मासूमियत और ये लड़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं। वैसे ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने तो शरारत बहुत कम की है, पर एक बार मेरी माँ सब्जी लेने गई हुई थी, मैंने लाइट के जो पुराने काले बटनों के ऑन ऑफ करने वाले जो खटके होते हैं ना, हाँ, उसमें एक तार डाल दिया था और मुझे इतनी ज़ोर से करंट लगा कि आज भी याद आती है। सच में बहुत ज़ोर से करंट लगा होगा और बड़ी तकलीफ़ भी आपको हो गई होगी। ऐसे काम करने नहीं चाहिए, भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हों। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी। अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था। सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहाँ पे पतंग लेने ना गया हूँ। सच में वो क्या दिन थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, खोखो, धूम खेले हैं। क्या बात है, बचपन की यादें ताज़ा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे। क्या बात है, हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये, मैंने कहा जो वो रोज़ सुन सकती हैं, और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा गया है। सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन आज भी भगवान से मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था। वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे। उसके सिर पर झूले की कील लग गई और बहुत सारा खून बहने लगा। मैं उसे लेकर मंदिर में गई और शिव जी के सामने गाने लगी, क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है। चोट तो ठीक नहीं हुई, ज़्यादा बिगड़ गई घर आने पर। बहुत पिटाई हुई, बहन के सिर पर 7 टांके आए। बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियाँ की। मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के 1.5 पहिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियाँ हैं, और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की हैं, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा कीजिए। और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा।

आपकी पीठ थपथपाई गई हो तो ज़रूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई। बदमाशियाँ तो हमने कर ली, तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं, तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे। पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय ने मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडियाँ मार पड़ेगी, इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नज़दीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब एक घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो मुझे देख लिया, पास आकर बोली तू स्कूल ही गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थीं जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था, और माँ हमें खोजते हुए आती थी, उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे। दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के हाथ आ जाता और जो कुटाई पड़ती थी आहा क्या मज़ा आता था। तो ये बात तो बड़े मज़ेदार होते हैं, और कहते हैं कि माँ का माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है, यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन रोमांच समझ पाते हैं, बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है। स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है, बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है, खेलना खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए, क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है। पहले ज़माने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक़ था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था, तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीज़ें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपये निकाले थे और पतंग की डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी। कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था, बहुत रोए थे, और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी, और ये दिन ये भूलते नहीं हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन अक्सर क्या होता है, मासूमियत भरी शरारत के लिए बहुत मार पड़ती थी, कभी शरारत की हो तब ना की हो तो भी पड़ जाती थी। हाँ, वो तो है कि जब जिसका दिल करे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है बचपन में मैंने टीचर को सर पर स्लेट मारी थी। अरे भाई, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये गलत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में आम के बाग थे, गर्मी के दिनों में बच्चे दमा चौकड़ी करते और पेड़ों पर चढ़ जाते। इकलौता बेटा होने के कारण

माँ हमेशा पेड़ पर चढ़ने से मना करती थी क्योंकि एक लड़के का पैर एक साल पहले गिरने से टूट गया था। मना करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ता था, पता नहीं होता था माँ को। लेकिन एक दिन माँ खोजते हुए बाग में पहुँच गई। बच्चों ने बताया कि देखो पेड़ पर चढ़ा है, मैं नीचे उतरा। माँ ने डंडे से खूब मारा, बाद में फिर पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। हमारी कौशोता लिखती है कि बचपन में शरारतों का अंबार था। पड़ोस की गुलाटी अंकल के आते में सब्जियां लगी थी, इसमें टमाटर बहुत लगे थे, सारे टमाटर अधपके होकर दिखाई दे रहे थे। खाने से मतलब नहीं था, अंकल उनके तरफ पिट्टू खेलने या रबड़ की बॉल ले जाने पर बहुत गुस्सा करते थे। अब उनके डांट का गुस्सा या टमाटर का लालच, हम भाई बहन बगल के टमाटर से सारे टमाटर तोड़ लाए और कुछ टमाटर हमने खाए और कुछ जो बच गए उनको हाथे में डाल दिया। कच्चे टमाटर पेट में जाकर हड़ताल कर दिए, उन्हें उल्टियाँ हुई, जब उल्टी हुई तो टमाटर तोड़ने का राज खुला। भैया को ज़्यादा लगा उल्टी होने से मैं बच गई, पर उनके अहाते में के बीच में हमारा आना जाना बंद हो गया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चीनी के डब्बे में हाथ मारना, आम के बगीचों से आम खाना, टीचर के बोर्ड की तरफ मुड़ते ही क्लास में कागज के हवाई जहाज उड़ाना, इन शैतानियों के बाद मिलने वाली डांट या सजा भी बहुत प्यारी होती थी। चाहे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना हो, प्यारी सी मुस्कान और सॉरी सुनकर सब साफ हो जाता था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोसाइटी की टोली के लीडर थे और ऐसी कोई छत पर नहीं गए थे जहाँ पर पतंग नहीं गई थी। बहुत बढ़िया बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है। तो चलिए अपनी शरारतें और शाबाशियाँ बचपन की ज़रूर लिखते जाइए। ये एक गीत और उन सभी नटखटों के नाम जो बड़े होकर बहुत बड़े बहुत विशाल बन जाते हैं।

अमर प्रेम फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल आर डी वर्मन के संगीत के साथ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक की एक सासू माँ है, एक नए मेहमान के आने की तैयारी चल रही है। जीवन का हर रंग रोज देखने के लिए मिलता है, जन्म की मासूमियत, बचपन की शरारतें, जवानी के सपने, संघर्ष की तपिश, रिश्तों की गर्माहट और अंत में सुकून ठहराव। सबसे सुंदर बात यह लगती है, जीवन किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशियाँ खोजने में, किसी की फूलों जैसी हंसी, किताबों से दोस्ती, परिवार का साथ, यही तो असली दौलत है। कल जो बच्चा था आज जिम्मेदारियों के साथ खड़ा है, इसलिए हर पड़ाव को जीना संजोना जरूरी है। जिंदगी तभी सुरमई बनती है जब उसमें अपने लोग, यादें और संघर्ष और प्यार सब साथ में चलते हैं। कितनी अच्छी बात लिखी है, बचपन कली जवानी, फूल और बुढ़ापा उसके साथ फल है, इसे बचपन की हंसी, जीवन का आगोश, बुढ़ापा समझदारी, इस रूप में देखा जाता है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। वह अंत में लिखते हैं कि जीवन का निचोड़ का फल है बुढ़ापा, और यही अनुभवों का कड़वा फल भूखता है, दूसरों को ज्ञान देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। चलिए अब हम चल रहे हैं, हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि स्कूल में लंच टाइम पर मैं और

दो तीन साथी स्कूल के लिए पास ही खेत पर चले जाते थे, जहाँ पर इमली और आम के पेड़ थे, उन पर पत्थर मारते थे और फल गिरने पर उन्हें खा लेते थे। बहुत सी बार पत्थर वहाँ रहने वाले लोगों को लग जाते थे, तो इस सब में मार पड़ने के डर से हम चले जाते थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शरारत बचपन में किसने नहीं की, बागों से आम अमरूद इमली ये सब तोड़कर खाना आम बात थी। हमने फिल्में बचपन से छुप छुप कर बहुत देखी हैं, क्रिकेट बहुत खेले हैं। अहो क्या बात है। और हमारे एक और श्रोता बड़े प्यार से बताते हैं ये जो फिल्म के गीत के बारे में, वो लिखते हैं कि फिल्म अमर प्रेम का गीत है, लता जी की आवाज़ है, आनंद बख्शी का गीत, आर डी वर्मन का संगीत, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया गीत है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे भैया देहरादून गए थे, मैं कुछ बड़ी थी तो मैं उनके पीछे पीछे टी वी एस चलाई, लेकिन मेरे दो छोटे भाई बहन उन्हें भी ट्राई किया, गाड़ी रेस होती थी, ज़्यादा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा गाड़ी को नुकसान हो गया, बाद में डांट पड़ी है। बिल्कुल सही बात है, सब ने बाद में भाई ने आने के बाद सबको गाड़ी सिखाने का प्रॉमिस कर दिया। बचपन की शाबाशी याद नहीं है ऐसा हमारे श्रोता लिखते, पर शरारत ज़रूर याद है और इतनी है कि गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बाड़े में रहते थे, वहाँ 20 किराएदार थे, उसमें बारूद की सिगड़ी, मतलब सिगड़ी पर भोजन बनाया जाता था, सिगड़ी छत पर रख दी जाती थी ताकि धुआं ना हो। हम बच्चे उस सिगड़ी में लाल मिर्च डाल दिया करते थे, जिससे पूरे बारे में मिर्ची की गंध बढ़ दुर्गंध बढ़ जाती थी, वो पूरा बारा छींक छींक के परेशान हो जाता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, बाग में जाना तो कच्चे आम तोड़कर नहीं खाना, पर हम कहाँ मानते थे, डंडे गुलेल से आम मार के खा भी लेते थे, जो बचता था घर ले आते थे। तब मम्मी मारती नहीं थी, कोई बात नहीं। हमारी श्रोता जो हैं कह रही हैं, रोटी बना रही हैं और कमेंट कर रही हैं, बस यही तो जीवन है, हम प्यार से हर रंग को जी लेते हैं। हमारे श्रोता बहुत खुश हैं कि उनके गीत को लिया गया। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र में सुंदरकांड गाया था हारमोनियम बजाकर, हमें वो दिन याद आ रहा है, और रुपये 50 मिले थे पुरस्कार के रूप में, 11 दिन थे और 50 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी तब, ऐसा हम मानते हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि बचपन में हमारी सहेली के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो लिख नहीं पाती थी, हम अपना भी लिख लिया करते थे, उसका भी लिख देते थे, और दोपहर में भोजन के समय में उसे खाना भी खिलाती थी। इस टीचर ने बड़ी तारीफ करी थी, हमारी सहेली के माता पिता को भी बताया था। ऐसे ही हमारे श्रोता एक और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया इबारत है, जिसमें निस्वार्थ लिए हुए बचपन, दूसरी ओर अट्ठास लिए हुए यौवन, और सबका निचोड़ अनुभवी जीवन की प्रौणावस्था, इस उम्र तक आते आते यादों का गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे हम उम्र मामा जी ने मुझे चक्की में से सत्तू चोरी करवाई थी बचपन में, सुबह जब सबको पता चला तो मामा जी को तो डांट पड़ी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मेहमान बनकर गई थी। सही बात है। स्कूल के दिनों में गर्मियों के स्कूल में लड़कियों की अक्सर नक्सीर फूट जाती थी, एक ही लड़की को हुआ, सारी लड़कियां डरकर भाग गई, पर मैं अपनी चचेरी बहन को देखा, ऐसे होते हम दो सहेलियों ने मिलकर उसे ज़मीन पर लिटाया, उसकी नाक पोछी, ठंडा पानी पिलाया और प्राथमिक उपचार किया, और स्कूल की टीचर को भी बता दिया, और बड़ी दीदी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपकी। हमारी श्रोता लिखते हैं, गाय माता के बछड़े को खोल देते थे सुबह सुबह, दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे, और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे। हमारी कौशोता लिखती हैं कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुनी रख के आँखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुन्नी रख के बैठ जाते थे, और सबसे सब किसे कहते थे, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे, हाँ, और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों दोस्त रस्सी को ऊपर कर देते थे, राह गिर गिर जाते थे, इस चक्कर में कई बार मार भी पड़े, ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता 7वीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में, हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती थी, बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जीन्स टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करते थे फिल्मों को देखकर, फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया, बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस ओर जो एक अलग दौर है, वो दौर में आपने जो विषय पढ़े हैं उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था, जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए, ये गीत में आवाज़ किसकी है।

श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं, स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीज़न से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है, और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स, मैथ्स, रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं, हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि

का याग्निक की आवाज़ है। और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं, स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीज़न से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है, और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स मैथ्स रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं, हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि

हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर अनूप जलोटा ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है, निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है ऐसा लगता है, इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुँचते पहुँचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं, और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सबके साथ ये सफर बहुत अच्छा बीता, आपके जीवन में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ सुरीला सफर में। सुरीले सफर के साथ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद, और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सबका जीवन मंगलमय हो।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी परदेश पर आधारित है। हम सभी परिवार के लोग सदियों से बेहतर जीवन, शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय की तलाश में अपने घर, परिवार और देश को छोड़कर परदेश जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है परदेश में अच्छा अवसर मिलेगा और मिलता भी है। आकर्षक अवसरों के द्वार खुल जाते हैं, हम अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुन सकते हैं। इसके साथ ही परदेश में जीवन की राहें आसान नहीं होती, कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बाहर से सब कुछ वैभवशाली चमक दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में परदेश का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है, जहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद झेलनी पड़ती है।

क्योंकि परदेश में रहकर हम कितना भी घर बना ले, तरक्की कर ले, ऐशो आराम का जीवन बिता ले, कहलाते तो हम परदेसी ही हैं। वहीं अपने परिवार से दूरी, अपनों से दूरी, मित्र परिचितों से दूर रहना सबसे कष्टकारी होता है। कई मांगलिक कार्यक्रमों, उत्सवों, त्योहारों, खुशी और गमों के मौके पर ना पहुंच पाने का दुख हृदय को पीड़ा दे जाता है। परदेश का अकेलापन और घर की याद व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करती रहती है। लोग तो यही उलाहना देते हैं कि परदेश जाकर भूल गया, लेकिन सच मानिए हकीकत कुछ और होती है। दौड़ भाग की जिंदगी में वापस लौटना संभव नहीं हो पाता। अगर वापस गए भी तो वहाँ सब कुछ बदला सा मिलता है।

परदेश में रोजगार और आर्थिक दबाव के तले जिंदगी पिस कर रह जाती है। किराए का घर, खर्च की अधिकता, नौकरी की अस्थिरता, वीजा संबंधी नियम और कानूनी प्रक्रियाएं तनाव बढ़ाती हैं। कई बार परदेश में योग्यता के अनुसार कार्य क्षेत्र में समझौता भी करना पड़ता है। इससे आत्मसम्मान को ठेस भी पहुँचती है। समय लगता है, मित्र भी बनते हैं, मगर कहीं ना कहीं परदेश में अकेलापन लगता ही है। वैसे तो परदेश का जीवन व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सहनशील और मजबूत बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परदेश में दिक्कतें अवश्य आती है, पर वहीं जीवन का अनुभव भी बढ़ाती हैं और इंसान को निखारती हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार। और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्यूल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
3: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
2: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक

0: लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
1: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुँचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये

0: हमारे देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
1: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
2: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @SIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43 गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
4: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
2: वो जब याद आए बहुत

0: हम सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार

0: जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
3: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
4: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
5: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
6: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो, इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ होगी, शैलेंद्र के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

0: हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए चलते हैं सदाबहार नगमे के अंतिम गीत की ओर जो कि है हमराही फिल्म से। मुबारक बेगम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आज्ञा दीजिए इस गीत के साथ, आप सबका कल्याण हो, नमस्कार।
1: मुझको

0: की सहेली
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
2: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
1: अरे धन्यवाद। और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं
2: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल
2: है ना।
1: और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है हमें जान रहा है
2: ख्याल रखने वाला है ना। विषय बता दे।
1: चलिए
2: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
1: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। हाँ। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना वो हमें नहीं डांटते थे वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये। बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
2: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे
1: आंखों से डर जाते थे।
2: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी के आंखों के तारे होते हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
1: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं है
2: सचमुच
1: जगमगाते हुए
2: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
1: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
2: और
1: हम
2: उसको कचोटते रहता है
1: और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके कहीं हम वो अटक के न रह जाए। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो
2: अगर कि बताना चाहते हैं
1: कि कुछ ऐसी बात कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम। एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम।

0: विश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी सोनाली, उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में गांव है रोपरखेड़ा वहाँ हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डट कर मुकाबला कर रही थी।
0: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई, उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरम्भ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल इस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग

0: और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती हैं।
1: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिल ही जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
0: बिल्कुल, और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो योग्यता है उसकी भी ज़रूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून, जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है, मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
1: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
1: जी।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हाँ हाँ हाँ क्या कहने, बहुत सुंदर गीत
0: बिल्कुल। और देखो ना
1: ये गाने भी हमारे आँख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और
1: दोनों
0: के मुंह से। बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा, देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना,
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही। और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहां तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बहुत
0: धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है,
0: हाँ,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आग का तारा कहते हैं, और हर माँ की आग का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्त क्रांतिकारियों की आग का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात,
0: क्या बात है,
1: हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए
1: जी।
0: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारे आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है, उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकती हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं, फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ के आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद
1: मिलती
0: कितनी
1: है,
0: मिलती है ना
1: जी।

0: सोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आँख का तारा था, है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आँख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं,
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं, माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं,
1: वैसे ही बने होते हैं। और फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: माँ तो हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त, और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम जैसे कि पछतावा होने लगता है।
1: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में, हाँ, तब तो और भी बुरा लगता है ना?
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा। जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछतावा हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुँचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा। अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है, आज है, उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानि या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपना कर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियाँ हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखें आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्म क्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते हैं ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
1: और ऐसे में क्या होता है, हम निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारी गलतियाँ हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े? और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताए, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
0: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
1: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और देशे कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है, तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
1: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वह शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
0: भाई देखो दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सुना ली। मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप ज़रा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज़ स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। ज़िंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहाँ पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया।
0: अच्छा,
1: बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है
0: बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई, इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल जाता है।
1: पर ऐसा होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की, और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो।
0: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई, अगली बार आप मेहनत करके, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम। उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है, लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो, मम्मी तो यहाँ भी काम आई
1: का तारा होते ना बच्चे,
0: इसीलिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार। हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था। पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूं। क्या बात है।
0: और एक हमारे साथी ने भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी, हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था, उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में, यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए, ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर 2 नाती अपनी परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है। यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया
0: है। बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी मार डांट तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताज़ा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती हैं, परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं, परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है, टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद, और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं, और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फ़ोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बिल्कुल आँखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
1: और तो गाना सुन ले,
0: चलिए।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सुन लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए। जामे कुटुंब समाये नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़ कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा, तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती है, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूँ तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी आपको ये गिफ्ट देना होगा।

0: तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का ज़माना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार ज़रूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज़ ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम, उपहार या डांट, मुझे तो याद नहीं हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया, हम तो इतना कोशिश करते थे कि अगले साल नए क्लास में ही जाए।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है, परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के।
0: चलो,

0: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
1: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
0: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थामकर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉयड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
0: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है कि वो
1: आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
0: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो

0: कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई?
1: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में।

को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो जबरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे गाती थी। और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट

0: थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आई में किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक कहते हैं ना गाड़ियों की और लोगों की उस ज़माने में क्यों थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
1: अच्छा,
0: और लता जी भी वहाँ थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भाई आ गए डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहाँ से मैं कल्याण जी भाई के म्यूज़िक हॉल पे गई और वहाँ आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहाँ।
1: वाह वाह वाह भाई, ऐसा
0: कहाँ से कहाँ ये बात देखिए।
1: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहाँ, लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये गाना।
0: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
1: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
0: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खैर

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है
0: जी।
1: मैं आप बताऊँ, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब मैं रिकॉर्डिंग के दिन में गई वहाँ, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूज़िक भी मुझसे म्यूज़िक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बंधाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी, जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं।
1: जी अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं,
1: जी,
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है, समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था।
0: जी हाँ, इतना पेशेंस थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सकें।
1: और जो इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन, वो लेवल पे रिहर्सल। हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर

0: मुझे भी आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं, और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था।
1: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आप?
0: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादियों माँ मान जाओ।

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ भाई। कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: तो
0: गाना
1: कैसे मनाया जाए, उनको है कि नहीं।
0: इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाक्या हो तो बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गई थी, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाक्या सुनाती हूँ। मैंने कहा देख, मुझे मंडी जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है, तो कहती तेरे साथ कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूँ। मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगी नहीं चलते, मज़ा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊँगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मज़ेदार, और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो मत तुम। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देख के बोले आशा तुम यहाँ। फॉरन प्रिंसिपल कॉलेज स्टूडेंट सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है, बड़ा मज़ा आया। लेकिन ये आजकल

0: मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
1: और आपकी ये दोस्ती उतनी
0: अभी भी
1: पुरानी?
0: कायम है।
1: अच्छा,
0: जी हाँ,
1: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आपके
0: बिल्कुल
1: फील्ड के
0: बिल्कुल,
1: लोग?
0: वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी। बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुश्किल से जिंदगी में अच्छी, कहते हैं ना, मित्रता मिलती है।
1: कमल जी, मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती है,
0: जी
1: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो
0: जी
1: हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए?
0: जी मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
1: अच्छा,
0: जी हाँ, फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था। और उसका एक गाना था, मारू नाम पाड़ियों छे संतूर रंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना
1: अच्छा,
0: मशहूर हुआ था ये गाना।
1: लेकिन एक चीज है,
0: जी
1: आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा,
0: हाँ,
1: वैसे बहुत अच्छा लगा,
0: अच्छा
1: और
0: लगा।
1: बहुत देखिए ऐसा है कि
0: चलो,
1: मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे, वो
0: बहुत
1: गानों में
0: बहुत
1: रस
0: शुक्रिया।
1: हमेशा घुलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है, एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप इस बारे में क्या कहेंगी?
0: नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीज़ों को उभार के ला सके। और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका
1: जी
0: मकसद पूरा होता है।
1: जी
0: और ये आना चाहिए,
1: जी
0: तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती
0: अच्छा,
1: थी?
0: शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रॉ आवाज़ थी, और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज़ है, एकदम सीधी सादी आवाज़ है, उसमें कोई वो बात नहीं थी।
1: जी
0: तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो। तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मूरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गज़लों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था, वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में। तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक ख़ास रियाज चाहिए। तो
1: जी
0: कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा
1: जी
0: एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और एन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी, वो
1: अच्छा
0: भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्ज़ाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूज़िक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद
1: जी
0: गाने बजाता
1: जी
0: है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे,
0: पूछिए।
1: लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए, वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे, उस जमाने में जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था और मैंने ड्यूट्स ज़्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि ये कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस ज़माने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी बनिस्बत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में इस किस्म की चीज़ हुआ करती थी। तो

0: बनिस्बत की गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में आप ही क्या सभी के मन में इस किस्म की चीज हुआ करती थी। तो करें मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में आप ही क्या सभी के मन में इस किस्म की चीज हुआ करती थी। तो

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफ़ी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूज़िक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद
0: करते
1: में रेडियो
0: थे,
1: पे सुनते थे।
0: बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के ज़रिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में ज़िक्र किया कि मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम कहते हैं ना रेडियो के ज़रिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी ज़िंदगी में शायद गायिका बनना था और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं होता?
1: बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे आप?
1: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?

0: कुर्सी में बैठ तो नहीं सकती। जरूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद्दपार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं, और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है। और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
1: तो कैसा काम चल रहा है यार?
0: अच्छा चल रहा है, अब भी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
1: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा आ रहा है?
0: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारू, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है। कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मज़ेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना अभी लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए।

0: कमल बारोट जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी।
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी।
0: हैं और फिल्मों में की संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो, आप नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूज़िक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई। और उस ज़माने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ था, जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गज़ल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गज़लों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो
1: अच्छी बात है ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के ये मायने मेरे चार गाने किए और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज़ अहमद फैज़, नदीम कासमी, अली रज़ा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूँगी कि ये मेरे पतिदेव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप ज़रूर सुनवाइए, फैज़ अहमद फैज़ की ये रचना। और बोल हैं, आज यूं मौज दर मौज, गम थम गया।

0: अमन बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीज़ें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसे ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गज़लों को ज़्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गज़लें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गज़ल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किलात थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नज़र करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूँगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी, मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफ़ी साहब थे, मुकेश जी थे, और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूज़िक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहते। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी ग्रामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते हैं ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए। और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं, विजिट करते हैं, उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है। और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था, लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया। बाकायदा अच्छे से मैंने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फ़र्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूध का काम बरसों से कर रही हैं।
1: तो बड़ी अच्छी बात कही आपने।
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को,
1: फिल्म को,
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी, मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है। और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुँच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहाँ आए हुए थे, और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे, आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है स्टेज का, एक नशा है अच्छी चीज़ पेश करने का। और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज़्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी ये कहते ना हमारी एक्टिविटीज़ रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
0: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
1: जी,
0: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
1: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं तो, समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं, अगर आवाज़ साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
0: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का,
1: जी,
0: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
1: जी, मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी, बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ का जो हमारा समुंदर है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
0: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
1: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला LP म्यूज़िक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था और वो LP का नाम था झनकार। उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूज़िक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल हैं निगाहें नीची किए,

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का और प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं
1: जी।
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में।
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दार इस्लाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था। फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली और वो भी एक किस्म का प्राइज था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलोड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है
1: जी,
0: आप क्या कहना चाहेंगी? कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हैं?
1: जी, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए। जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे, वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तह दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिकराव गायकवाड का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर।
1: विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी हम कर रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, मोहनपुर, हरिपुर, सुंदरगंज, बोझा, मायापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनक पुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये पड़ौली, किशुनपुर, जमीरा, चकेरी, बासेन, परसा, सानीबर्रा, बरवाली, बरडांड, दातीढाप, घटगांव, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, हस्तिनापुर, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 122 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत, कोठारी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमरघाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 5:05 हुए हैं। सुनिए कार्यक्रम विवरण झलकी प्रहसन। आप सुनेंगे 5:10 पर। 5:30 पर लेकर आएंगे युवा वाणी, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा जैव विविधता बचाए रखने में ही हमारा भविष्य। और सुनेंगे करियर एडवाइज। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 6:20, 7:00, 8:30 पर। हमारे केंद्र से 7:20 पर आप सुनेंगे किसानवाड़ी कार्यक्रम में। आज की बात का विषय रहेगा हरी खाद मृदा स्वास्थ्य के लिए वरदान। नसीहत के अंतर्गत कचरे को कीमती बनाए कचरा अपघटक से। गैर फिल्मी गीत का वक्त रहेगा 8:20 का। विविध संगीत रात 10:00 सुनेंगे। 10:30 पर लेकर आएंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे रात 9:00।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: AIR at 90.
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: कार्यक्रमों की रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रहसन। विष्णुदत्त गौड़ ने इसे लिखा है। कलाकार हैं प्रदीप सक्सेना, किशोरीलाल अवस्थी, मनहर पुरी।

0: श्रीमान जी, आपने मुझे श्रीमान जी कहा? वाह वाह वाह वाह, आइए आइए, तशरीफ रखिए। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई।
1: मुझे भी
0: बड़ी प्रसन्नता हुई। आज पहली बार मुझे किसी सज्जन महापुरुष ने श्रीमान जी कहा है। बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सत्कार कर सकता हूँ?
1: सुनिए,
0: अरे सुनने सुनाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम आपको देखते हैं तो कभी अपने
1: पागल खाने को।
0: वाह वाह, मुकर्रर इरशाद, वाह क्या बात है, क्या नुक्ता खींच के मारा है, सारा भेजा मारा गया। लगता है आप शायर हैं?
1: जी नहीं।
0: तो फिर कवि हैं?
1: जी नहीं।
0: तो फिर आप?
1: जी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी शहर का अदना सा समाज सेवक हूँ।
0: समाज सेवक यानी?
1: कहिएगा नहीं, मेरे दांत खाने के और टिकाने के और, अर्थात दुनिया के लिए समाज सेवक, अपने लिए पापी पेट का सेवक।
0: आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं जनाब। यहाँ जो भी आता है वो अपने आप को सेवक ही बताता है जनता का। आप तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब कहाँ हैं?
0: अजी, डॉक्टर को मारिए गोली। पहले आप ये फरमाइए कि आप क्या लेना पसंद करेंगे।
1: जी?
0: मेरा मतलब है, आप क्या पिएंगे? चाय, कॉफी, लस्सी, शिकंजी या दूध? निपिल से
1: मुझे कुछ नहीं पीना है।
0: अच्छा, तो आप क्या नोश फरमाएंगे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरा मतलब है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, चपाती या चपाती, बिस्कुट या दालमोट?
1: मुझे ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना, मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ।
0: ठीक है, मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप अपने ससुर जी से मिलने आए हैं
1: जी?
0: या अपने रिश्तेदार जी से
1: जी?
0: यहाँ तो जो भी आता है किसी ना किसी जी से ही मिलने आता है। मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मैंने भी यही कहा था कि मैं डॉक्टर जी से मिलने आया हूँ।
1: लगता है आप?
0: जी, मैं यहाँ का परमानेंट हूँ। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है
1: जी।
0: आप आगरा में तो नहीं थे?
1: जी नहीं।
0: बरेली, रांची?
1: जी नहीं।
0: तो फिर मैंने आपको ख्वाब में देखा
1: जी,
0: होगा।
1: मैं वहां कभी गया ही नहीं।
0: अच्छा,
1: क्या वहां भी कोटा परमिट मिलता है?
0: अच्छा,
1: रिश्वत कितनी देनी पड़ती?
0: अच्छा, मैं तो यहाँ की बात कर रहा
1: यहां
0: था
1: की। मैं तो पहली बार आया हूँ, बड़ी तारीफ सुनी है आपके पागल खाने की, है देखने चला आया।
0: अच्छा ठीक, चले आए हैं, ऐसे ही आना चाहिए था। मैं भी यहाँ आया था तो मैंने भी यही कहा था। अब आप इसे अपना ही समझिए। क्या
1: क्या
0: घर? मैं आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ का सबसे बड़ा वफादार हूँ, बहुत ही गैर जिम्मेदार
1: जी।
0: मेरा मतलब है बहुत ही जिम्मेदार हूँ। मैं अभी आपको सारा घुमाता हूँ पागलखाना। देखिए, यहाँ अकेले घूमना मना है।
1: क्यों साहब, अकेले घूमना क्यों मना है?
0: अजी साहब, जानवरों और पागलों का क्या भरोसा, पता नहीं कब अटैक कर बैठे।
1: अच्छा, अब तो यहाँ ये भी होता है?
0: यहाँ क्या कुछ नहीं होता, यहाँ क्या कुछ न...

0: मैं तो आपको अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ठीक है, अब आप बैठ जाइए।
1: बैठ जाइए।
0: यस।
1: बैठने का क्या मिलेगा, तुम कहते हो तो लो मैं बैठा जाता हूँ। आप निकालो थैली।
0: गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप पूछिए कि मैंने ऐसा क्यों किया।
1: क्यों किया?
0: पूरा वाक्य बोलिए। आपने ऐसा क्यों किया?
1: आपने ऐसा क्यों किया?
0: ठीक, मैंने ऐसा एक राज की बात बताने के लिए किया है।
1: राज की बात?
0: एक बार मैंने और मेरे एक साथी ने इस चार दीवारी के बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। छुट्टी का दिन था। एक पागल यहां से फाटक की तरफ भागा।
1: भागा?
0: मैंने देखा कि पागल खाने का फाटक खुला है और चौकीदार
2: जगदेव
0: सो रहा है। पागल ने चौकीदार से नमस्ते की।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। फिर क्या देखता हूं कि वो पागल पागलखाने के बाहर 100 की स्पीड से भागते चला जा रहा है।
1: फिर क्या हुआ?
0: इतने में डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, ये पागल पागलखाने से 100 की स्पीड से भागा है। डॉक्टर साहब, 100 की स्पीड से भागा।
3: तुमने उसे भागते हुए देखा?
0: जी हाँ साहब, वो मेरी आंखों के सामने से भागा।
3: तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं?
0: अरे साहब, मैं उसे कैसे पकड़ता, वो अपने सिर पर पैर रखे हुए था।
1: गुड, वेरी गुड, आपका तो प्रमोशन किया जाना चाहिए। वाकई में आप काफी होशियार।
0: थैंक यू।
1: हाँ, तो आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपने और आपके साथी ने क्या प्रोग्राम बनाया था।
0: अरे हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गया। और खूब याद दिलाया आपने। मेरे दोस्त ने कहा, चलो आज हजरतगंज घूमने चलते हैं, वहां से एक कार खरीद कर लाएंगे।
1: अच्छा।
0: उसने 10 रुपए का नोट मेरे हाथ पर रख दिया और हम दोनों हजरतगंज कार लेने चल दिए।
1: अम्मा, क्या कह रहे हैं आप?
0: अजी, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ जनाब। अजी साहब, पूरी बात तो सुनिए।
1: सुनाइए।
0: हाँ, तो मैं कह क्या रहा था,
1: यही कि आप 10 रुपए लेकर हजरतगंज कार लेने चल दिए।
0: अरे वाह, आपकी मेमोरी तो काफी तेज है। यहाँ आकर सबकी मेमोरी तेज हो जाती है। हाँ तो साहब, हम लोग घूमते घूमते गोमती पहुंच गए।
1: अच्छा।
0: मेरे दोस्त ने कहा कि यार आज मैं नदी पार करूंगा। झड़े का मौसम, सर्दी अपनी पूरी जवानी पर थी। मैंने कहा तुम्हें तैरना आता है? तो उसने कहा हाँ, और साहब वो कूद पड़ा नदी में।
1: अरे बाप रे।
0: अब मैं क्या देखता हूँ कि वो पानी में डुबकियां लगा रहा है। तब मैं भी साहब कूद पड़ा और उसे पानी के बाहर निकाल लाया। फिर मैंने उसका पैर दबाया।
1: वाह।
0: फिर उसका पेट दबाया।
1: वाह।
0: फिर उल्टा किया।
1: अरे।
0: फिर पीठ दबाई।
1: वाह।
0: फिर उल्टा किया। फिर आखिर में उसका गला दबा दिया।
1: क्या बात।
0: और जब सारा पानी उसके पेट से निचुड़ गया तो मैं उसे लाद कर वापस यहां आ गया। सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और कहने लगे,
4: राम भरोसे
0: जी,
4: तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथी ने आत्महत्या कर ली है?
0: जी डॉक्टर साहब, वो आदमी इतना तो समझदार नहीं था। ये क्या हुआ?
4: समझदार नहीं था? फिर वो अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर कैसे लटक गया?
0: आप गलत समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, वो अपने गले में फंदा डाल ही नहीं सकता था, उसे तो मैंने लटकाया था।
4: तुमने लटकाया था? लेकिन क्यों?
0: साहब भीग गया था, मैंने उसे सूखने के लिए टांग दिया था।
1: गुड, वेरी गुड।
0: उधर वाली बैरक देख रहे हैं आप, उधर मत जाइएगा, उधर के मरीज तुम्मा फेंक कर मारते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उधर देखिए दूसरी बैरक, उधर भी मत जाइएगा।
1: क्यों?
0: उधर मरीज काट खाते
1: हैं। अरे बाप रे।
0: और वो देखिए तीसरी बैरक, उधर तो भूल कर भी मत जाइएगा।
1: क्यों क्यों?
0: उधर जो भी गया आज तक लौट कर नहीं आया।
1: अच्छा।
0: और वो रही चौथी बैरक, उधर की पागल तुम्हें मार देंगे। उधर के पागलों की पीठ पर नंबर पड़े,
2: एक से

0: लेकर 420 तक। अगर कोई हादसा हो जाए तो आप मुझे याद कर लीजिएगा। मेरा नंबर ये देखिए 37 है।
1: नंबर 37। मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि तुम मेरे कमरे में मत आया करो।
0: अजी,
1: तुम फिर आ गए।
0: डॉक्टर साहब, मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा था, आप कहाँ गए थे?
1: क्यों क्यों ढूंढ रहे थे आप मुझे?
0: मुझे आपकी नाक बहुत अच्छी लगती है डॉक्टर साहब, मैं इसे काट कर अपने पास रखना चाहता हूँ।
1: क्यों भाई, मेरी ही नाक क्यों अच्छी लगती है? इन समाज सेवक जी की क्यों नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं। इनकी नाक मोम की है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा भाई, तब तो एक प्रॉब्लम है। आप मेरी नाक काटेंगे कैसे?
0: चक्कू से।
1: अच्छा, तो आप सब इंतजाम करके आए हैं? आप चुप रहिए
0: जी।
1: हाँ, तो राम भरोसे
0: जी सर,
1: तुम मेरी नाक काटोगे
0: जी?
1: पर भाई, इस वक्त तो तुम देख रहे हो मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ। फिर ये साहब भी बैठे हैं
0: जी,
1: इनसे बात भी तो करनी है ना।
0: आप चिंता ना करें डॉक्टर साहब, मैं एक घंटे बाद फिर आ जाऊंगा।
1: गुड, वेरी गुड। अच्छा जाओ, अब अपनी बैरक में जाओ।
0: अच्छा
1: जाओ।
0: थैंक यू सर। साहब को सलाम करेगा परेड? सलाम, एक दो एक,
2: जान बची जान,
0: एक दो एक,
2: जान बची जान,
0: एक दो एक,
2: जान बची जान।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: Akashvani at 90. संदेश से पहले आप सुन रहे थे प्रहसन, जिसे लिखा था विष्णुदत्त गौर ने। कलाकार थे प्रदीप सक्सेना, किशोरीलाल अवस्थी और मनहर पुरी। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, एफएम बैंड पर 5:25 हुए हैं। सुनिए कार्यक्रम विवरण। युवाणी आप सुनेंगे 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा जैव विविधता बचाए रखने में ही हमारा भविष्य, और सुनेंगे करियर एडवाइज। फिल्म संगीत आपको सुनवाएंगे 6:20, 7:00 और 8:30 पर। किसानवाड़ी लेकर आएंगे 7:20 पर। कार्यक्रम किसानवाड़ी में चर्चा का विषय रहेगा हरी खाद मृदा स्वास्थ्य के लिए वरदान। नसीहत में सुनेंगे कचरे को कीमती बनाए कचरा अपघटक से। गैर फिल्मी गीत का समय रहेगा 8:20 का। रात 10:00 विविध संगीत सुनेंगे 10:30 पर। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें आपको सुनवाएंगे। अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर कार्यक्रम चिंतन आप सुनेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना प्रस्तुत करेंगे 6:10 पर। कृषि चर्चा का समय रहेगा 6:30 का। हमारे केंद्र से सुबह 6:40 पर सुनेगा रामचरितमानस। देशगान सुन सकेंगे 6:50 पर। चित्रपट संगीत लेकर आएंगे 7:05 पर। 7:35 का समय रहेगा प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा का। लोक संगीत के कार्यक्रम बाजी मांदर का आनंद आप ले सकेंगे 7:45 पर। सुबह 8:30 पर हमारे केंद्र से सुनेगा लोक रंजनी, छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। सुगम संगीत 10:10 पर होगा। 10:30 पर आपकी फरमाइश हम लेकर आएंगे। विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। सुबह 9:00, 11:00, 12:00, रात 9:00। कल शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट आप सुनेंगे। पॉप टाइम का वक्त रहेगा 5:10 का। 5:30 पर सुनेगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा कैसे टिका है मधुमक्खियों पर हमारा जीवन, विश्व मधुमक्खी दिवस, और सुनेंगे घटना चक्र तरुणों की पसंद। फिल्म संगीत होगा 6:20, 7:00, 8:30 और रात 10:00। चौपाल 7:20 पर सुनिएगा, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा गृह वाटिका है स्वास्थ्य एवं पोषण का आधार। नसीहत में सुन सकेंगे कृषि यंत्रों की खरीद में सावधानियां अपनाएं। गैर फिल्मी गीत होगा रात 8:20 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 MHz पर। 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो की तरंगों के साथ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट वर्षा हाजिर है लेके आज का युववाणी प्रोग्राम। आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है आपके पसंदीदा युववाणी कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो केवल पेड़ पौधों या जानवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले कल, हमारी सांसें, हमारी रोजी रोटी, हमारे मौसम और हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सुबह की चहचहाती चिड़ियाँ, खेतों में लहलहाती फसलें, जंगलों की हरियाली, नदियों का साफ पानी और मौसम का संतुलन, ये सब आखिर बनते कैसे हैं या ये सब आखिर कैसे बने रहते हैं? तो वे बने रहते हैं जैव विविधता के कारण, यानी धरती पे मौजूद अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंग, पक्षी और सूक्ष्म जीवों की विविधता जो पृथ्वी और प्रकृति को संतुलित बनाए रखती है। लेकिन आज यही जैव विविधता खतरे में है। जंगल कट रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, कई पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। हम इंसान अपनी सुविधाओं के लिए प्रकृति का इतना दोहन कर रहे हैं कि धरती का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास ध्यान दें तो पाएंगे कि पहले गांवों और शहरों में गौरैया पक्षी आसानी से दिखाई देती थी, लेकिन आज वे धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। कई तरह की तितलियां, मधुमक्खी और छोटे जीव अब हमें कम ही दिखाई देते हैं। और ये केवल एक पक्षी या कीट के कम होने की बात नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के बिगड़ते संतुलन का संकेत है। दोस्तों, जैव विविधता केवल सुंदरता नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारे जीवन को सुरक्षित भी करती है। ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें छांव देते हैं, ये नदियाँ हमें पानियाँ देती हैं, मधुमक्खियाँ परागण करके फसलों की उपज बढ़ाती हैं, जंगल और पहाड़ बारिश को संतुलित रखते हैं और मिट्टी को कटने से बचाते हैं। और अगर ये सब खत्म होने लगे तो हमारे साथ वन्य प्राणियों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं बेमौसम बरसात तो कहीं सूखा। इन सब का एक बड़ा कारण प्रकृति के साथ किया गया असंतुलित व्यवहार भी है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी समस्या में हम अकेले क्या कर सकते हैं, लेकिन बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो वो सिर्फ पेड़ नहीं होता, वो आने वाले समय की सांसें होती हैं। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो अपने लिए पानी बचाते हैं और फ्यूचर के लिए पानी को स्टोर भी करते हैं। और अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करते हैं तो हम धरती को थोड़ा और सुरक्षित बनाते हैं। बस आज ज़रूरत है कि हम अपनी प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ ना समझें, बल्कि उसका सम्मान करें, क्योंकि धरती सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि हर जीव की है जो यहाँ रहते हैं। हमें यह समझना होगा कि आधुनिकता का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बनाना नहीं होता, बल्कि असली विकास वही है जिसमें इंसान और प्रकृति के जीव जंतु दोनों सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर जंगल खत्म हो गए, पानी खत्म हो गया और हवा जहरीली हो गई, तो फिर पैसा, तकनीक और विकास किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आज हम प्रकृति को, जैव विविधता को बचाएंगे, तभी हमारा आने वाला भविष्य अच्छा होगा, तभी हम इस खूबसूरत धरती का आनंद ले पाएंगे।
इसी उम्मीद और संदेश के साथ कि आप अपना और अपनी प्रकृति का ख्याल रखेंगे, हमारी आज की बात यही होती है समाप्त। आज है दिन मंगलवार का, वो भी तीसरे मंगलवार का, जिसमें क्रम रहता है करियर एडवाइस का, जिनमें हम जानेंगे करियर विकल्पों के बारे में। क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए आपको सुनवाते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा फिल्म यारा दिलदारा का ये गाना। इस गीत को गाया है उदित और अनुराधा पौडवाल ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के क्रम करियर एडवाइस में। दोस्तों, जैसा कि इस गीत से पहले हम आज की बात में जैव विविधता के संरक्षण की बात कर रहे थे, तो क्यों ना आज ऐसे करियर ऑप्शंस की बात की जाए जिसमें आप पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण भी कर सकें और जिसमें एक अच्छा जॉब ऑप्शन भी हो, साथ ही बेहतर करियर बनाने की संभावना भी, ताकि आपका काम सिर्फ कमाई तक सीमित ना रहे बल्कि धरती को बेहतर बनाने में भी आप अपना योगदान दे सकें। दोस्तों, इसमें सबसे पहला करियर विकल्प है फॉरेस्ट ऑफिसर यानी वन अधिकारी बनने का। वन अधिकारी जिसका काम जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा का होता है, इसके लिए 12वीं के बाद बीएससी फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ईवीएस साइंस जैसे कोर्स आप कर सकते हैं, उसमें ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आगे चल के यूपीएससी की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम देके इस क्षेत्र में नौकरी पाई जा सकती है, यानी आप एक आईएफएस अधिकारी बन सकते हैं। इनका काम नेशनल पार्क और अभयारण्यों की देखभाल करना, अवैध शिकार रोकना, वन नीतियों को लागू करना है। ये एक सरकारी ग्रुप ए सेवा है जिसमें जॉब सिक्योरिटी और सम्मान दोनों मिलते हैं। दोस्तों, आगे और करियर विकल्पों को जानेंगे इस गाने के बाद। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, फिल्म है कर्ज। इस गीत को गाया है किशोर और साथियों ने। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दोस्तों, एग्रीकल्चर और बायोडायवर्सिटी में अगला करियर ऑप्शन है एनवायरमेंटल इंजीनियर्स का, जो तकनीक के माध्यम से प्रदूषण की समस्या को हल करना चाहते हैं। इनका काम कचरा प्रबंधन सिस्टम डिज़ाइन करना, जल शोधन और अक्षय ऊर्जा पे काम करना है। आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या एमटेक करके जॉब हासिल कर सकते हैं। सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। साथ ही स्मार्ट सिटी और प्रदूषण नियंत्रण प्रोजेक्ट्स के कारण इनका भविष्य उज्जवल है। आप एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, जो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पे काम करते हैं। इसके लिए आप बीएससी एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक ऑप्शन है आपके पास वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बनने का, जो जंगलों में रहने वाले जानवरों, पक्षियों पे रिसर्च करते हैं, साथ ही उनकी प्रजातियों को बचाने का काम भी करते हैं। इसके लिए जूलॉजी और वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके WWF और WCS जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में नौकरी भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे और बातें करेंगे करियर विकल्पों के बारे में। उससे पहले लीजिए सुनिए अलका और कुमार सानू के युगल स्वरों में फिल्म कसूर का ये गाना। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

दोस्तों, जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में अगला करियर ऑप्शन है GIS स्पेशलिस्ट, यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनने का। ये पूरी तरह से सैटेलाइट और मैपिंग तकनीक पे आधारित करियर है। आप रिमोट सेंसिंग या जियो इन्फॉर्मेट्रिक्स में डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। इसमें इनका काम होता है सैटेलाइट डेटा के जरिए जंगली जानवरों के रास्तों को ट्रैक करके नक्शा बनाने का। इसके साथ ही अगर आपको फोटोग्राफी में दिलचस्पी है तो आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी बन सकते हैं। फोटोग्राफी कोर्स या मास कम्युनिकेशन कोर्स के जरिए आज सोशल मीडिया और डॉक्यूमेंट्री प्लेटफॉर्म्स पे वाइल्ड लाइफ कंटेंट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इसके साथ टूरिज्म, फॉरेस्ट्री, इको टूरिज्म से जुड़े कोर्स भी आप करके एक टूर गाइड बन सकते हैं, जिनकी डिमांड हमेशा नेशनल पार्क और अभयारण्यों में बनी ही रहती है। दोस्तों, एक ऐसी नौकरी जिसमें अच्छी सैलरी के साथ सम्मान और प्रकृति के लिए काम करने को मिले, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। आप भी इन सभी क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के साथ जैव विविधता का संरक्षण करने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। दोस्तों, नेचर गाइड या इको टूरिज्म एक्सपर्ट, इनका काम लोगों को जंगलों, राष्ट्रीय उद्यानों और जैव विविधता के बारे में जानकारी देना होता है। इसके लिए टूरिज्म, फॉरेस्ट्री या ईवीएस स्टडी से जुड़े कोर्स किए जा सकते हैं, क्योंकि आज इको टूरिज्म तेजी से बढ़ता हुआ एक व्यापक क्षेत्र बन चुका है। इसलिए अगर आपको हमारे बताए हुए जानकारियों में जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में आगे बढ़ के एक अच्छा करियर बना सकते हैं, साथ ही पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है हमारे आज के युववाणी कार्यक्रम के समापन का। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा कर सकते हैं। हमें ईमेल कीजिए shrotarayagarh@gmail.com पे। क्रम का नाम है पत्र मिला। इसी के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए इजाज़त। रखें अपना ख्याल और सुनते रहें FM रायगढ़। नमस्कार, शुभ संध्या।

युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम के कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए, सुने कार्यक्रम विवरण। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 6:20, 7:08, 8:30 पर। किसान वाड़ी लेकर आएंगे 7:20 पर, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा हरी खाद मृदा स्वास्थ्य के लिए वरदान। नसीहत में आप सुनेंगे कचरे को कीमती बनाए कचरा अपघटक से। गैर फिल्मी गीत 8:20 पर पेश करेंगे। विविध संगीत होगा रात 10:10:30 पर, सुनेंगे यादें पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com।

0: 90.
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
3: कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे FM बैंड पर, आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
4: का ये रायपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में शाम के 6:10 होने को है। कुछ ही पलों में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
5: आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग ललित साहू के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहने की अवैया 5 साल में राज्य के बस्तर संभाग है देश के सबले विकसित आदिवासी संभाग बन जाए। तेल कंपनी डाल ले पेट्रोल और डीजल के कीमत में आज फिर एक घाव बढ़ोतरी करेगी है। और अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में हवा गरेर के संग थोर बहुत वर्षा होने की संभावना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहने की अवैया 5 साल में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग है देश के सबले विकसित आदिवासी संभाग बन जाए। आज बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में मीडिया ले गोट बात कर श्री शाह कहन कि सरकार के लक्ष्य है कि बछर 2031 तक बस्तर के लोगन मन के आमदनी है 6 गुना तक बढ़ जाही। ओमन कहन कि बस्तर ला नक्सल मुक्त बनाए के बाद केंद्र और राज्य सरकार है मिलके अवैया 5 साल भर एखर विकास ले जुड़े 1 वैज्ञानिक रोड मैप तैयार करे है, जेखर ले बस्तर संभाग में बनाए गए सुरक्षा बल के करीबन 200 शिविर मल्ले 70 कैंप मल्ला शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा में बदले जाही। ये सेवा डेरा के माध्यम ले स्थानीय लोगन मल्ला शासन के जम्मो योजना मन के फायदा पहुँचाए जाही, जेमा बैंकिंग, कौशल प्रशिक्षण, स्कूल, आंगनबाड़ी, वन उपज प्रसंस्करण शामिल है। एकर अलावा बस्तर के हर आदिवासी परिवार ला 1-1 गाय और भैंस दे जाही। और अवैया 6 महीना के भीतर यह सहकारी डेयरी के 1 बहुत बड़े नेटवर्क तैयार करे जाही। ये काम पर छत्तीसगढ़ सरकार हा राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के संग अनुबंध कर ले है। केंद्रीय गृह मंत्री है यूगिन की सरकार है बस्तर के लोगन मन के सुरक्षा के संगे संग ओखर विकास पर घलो प्रयास करी। श्री शाह कहन की हिंसा है कोनो भी समस्या के समाधान नहीं है और हिंसा ले आज तक काखरो विकास नहीं हो है। उमन कहन की अवैया 5 साल के दौरान केंद्र और राज्य सरकार है मिल के बस्तर के लोगन मन तक सरकार के जम्मो सुविधा पहुँचाही और यह दुनिया में विकास के 1 लोकतांत्रिक मॉडल बनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जगदलपुर में रखे गए मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठक की अगुवाई करें। ये बैठक में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के संगे संग केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और ये चारों राज्य के पुलिस महानिदेशक के अलावा पुलिस और प्रशासन के बड़का अधिकारी मन शामिल हुए। तेल कंपनी डहर ले पेट्रोल और डीजल के कीमत में आज फिर एक घाव बढ़ोतरी करे गए है। तेल कंपनी के छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान आकाशवाणी समाचार बताइन कि पेट्रोल के कीमत में 90 पैसा और डीजल के कीमत में 96 पैसा प्रति लीटर के बढ़ोतरी करे गए है। राज्य सरकार है कहने की प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के कोनो कमी नहीं है, एकर ले लोगन मन ला घबराए के कोनो बात नहीं है। सरकार के मुताबिक राज्य में अभी 3,88,00,000 लीटर ले ज्यादा पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर ले ज्यादा डीजल हवे। खाद्य विभाग डहर ले जम्मो तेल कंपनी मन के संग समीक्षा बैठक रखे गईस। ए दौरान कहन की जौन जौन पेट्रोल पंप में स्टॉक कमती है वहां प्राथमिकता के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के आपूर्ति करे जाए। प्रदेश में कुल 2,516 पेट्रोल पंप हवे। पाछू कुछ दिन में मांग बढ़े के सेती पेट्रोल के खरीदी में 47% और डीजल के खरीदी में 22% के बढ़ोतरी दर्ज करे गए है। सरकार है लोगन मन ले अपील करे है कि कोनो भी प्रकार के अफवाह में मत आवे और ज्यादा पेट्रोल ला स्टॉक में झर रखे। राजधानी रायपुर के लोक भवन में हिमाचल प्रदेश गुजरात सिक्किम और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के कार्यक्रम पारंपरिक उत्साह और उमंग के संग मनाए गये। राज्यपाल रमेन डेकाला एक कार्यक्रम के माई पहुना बनाए गये रहीस। लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के रखे गये कार्यक्रम में राज्य के प्रतिनिधि मन घलो शामिल होइन। राज्यपाल है जम्मू के राज्य के लोगन मल्ला बधाई और शुभकामना दिन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन ला आप मन हा आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
0: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल मा घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावे। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
5: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। प्रदेश में जनजाति समुदाय मन तक सरकारी योजना मल्ला बताए खातिर काली ले जन भागीदारी

स्वच्छ अभियान के तहत चुने गए करीबन 8,000 गांव 7,000 ले ज्यादा सेवा केंद्र मन के माध्यम ले ये अभियान ला चलाया जाही। सर्वोच्च न्यायालय है सार्वजनिक स्थान मन ले पकड़े गए लावारिस कुकुर मन ला टीकाकरण या नसबंदी करे के बाद वापिस नहीं छोड़े के अपन पूर्व निर्देश ला वापस ले में इनकार कर दिन। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के अध्यक्षता वाले पीठ नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन करे के मांग वाला याचिका ला खारिज कर दिन और अधिकारी मल्ला ऐसन कुकुर मल्ला आश्रय जगह में रखे के निर्देश दिन। पीठ चेतावनी दे कि निर्देश मन के पालन नहीं करैया अधिकारी मल्ला अवमानना और अनुशासनात्मक के सामना करे बर पड़ सकत है। दुर्ग पुलिस के टीम डाहर ले आईपीएल मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप चलिया गिरोह के 13 जिन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करेगी। पुलिस अब बतैन की ऑनलाइन सट्टा कारोबार के प्रमुख संचालक सेट स्पोर्ट बुक और लोटस ऐप के माध्यम ले म्यूल अकाउंट के उपयोग करके करोड़ों रुपया के लेन देन करत रहीस। पुलिस आरोपी मंत्री ले मिले म्यूल खाता के करीबन 5 करोड़ रुपया के लेन देन के जानकारी मिले है। दुर्ग भिलाई के नेहरू नगर इलाका में हो एक ठन चोरी के मामला के जांच करत पुलिस अंतरराज्यीय गिरोह को खुलासा करे है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल है बतैन कि यह मामला में मेरठ ले दू झीन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे गए है। ओखर तिल्ले 60 लाख रुपया के कीमत के करीबन 400 ग्राम सोना और 3.5 लाख रुपया नकदी बरामद करे गए है। ये गिरोह दुर्ग भिलाई नवा रायपुर बिलासपुर और जबलपुर में चोरी करत रहीन। श्री अग्रवाल है बतैन कि आरोपी मन दिन में फेरी वाले बन के कपड़ा और कंबल बेचे के बहाना रेकी करे। बिलासपुर जिला में पुलिस और ACCU के टीम हा सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजा के संग 8 जीन माइलोगिन मल्ला गिरफ्तार करीन। ये माइलोगिन मन हा इलेक्ट्रॉनिक ऑटो गाड़ी ले गांजा के तस्करी करत रहीन। ये जम्मो झन माइलोगिन मन हा मटियारी गाँव के रवैया रहे और ओमन उड़ीसा ले गांजा ला के तीर्थ खार के इलाका में बेचत रहीस। पुलिस के टीम हा गांजा के संग 2 ठन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ला घलो जब्ती कर ले है। एकर कीमत ला 46,75,000 रुपया बताए जाते है। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग डहल ले आज प्रदेश के रायपुर दुर्ग बालोद राजनांदगांव बलौदा बाजार जांजगीर चांपा रायगढ़ और बिलासपुर के संगे संग कोनो कोनो जिला मन में हवा गरेर और हल्का बारिश होए के संभावना जता है। ओती बस्तर संभाग के जिला मन में गरज चमक के संग छीटपुट वर्षा होए के और गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। और अब थोड़कुन समाचार सार में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम हा उत्तर मध्यमा पहली बछर और 11वीं के दूसरिया मुख्य परीक्षा के समय सारणी ला जारी कर दे है। ये परीक्षा 1 जून ले 9 जून तक रखे जाही। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं में दाखिला खातिर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थी मन 20 जून तक अपन अर्जी दे सकत है। चयन परीक्षा ला 26 जुलाई के मंझनिया 12 बजे ले 2 बजे तक रखे जाही। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव डहरले काली 20 मई के बिहनिया 10 बजे ले अंबागढ़ चौकी तहसील कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेला के कार्यक्रम रखे जाही। कांकेर जिला के भानुप्रतापपुर और आज बिहनिया रेलवे पटरी पार करत रेलगाड़ी के चपेट में आये एक जन रिटायर शिक्षक के मौत हो गए और जांजगीर चांपा जिला के खटोला गांव में कार और फटफटी के आपस में टकराए ले एक जिन जवान लड़का के मौत हो गए उन्हें 3 जन जवान घायल हो गए। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहने की अवैया 5 साल में राज्य के बस्तर संभाग है देश के सबले विकसित आदिवासी संभाग बन जही। तेल कंपनी डाले पेट्रोल और डीजल के कीमत में आज फिर एक गांव बढ़ोतरी करेगी है और अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में हवा गरेर के संग थोड़ बहुत वर्षा होने की संभावना है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है।

शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आनंद बख्शी के लिखे गीत को आइए सुनते हैं। अलका याग्निक मोहम्मद अजीज की युगल आवाजों में फिल्म अपराधी से। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: हिमालय पुत्र फिल्म के गाने को आप सुन रहे थे उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत था अनु मलिक का, निदा फाजली के बोल थे। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आदमी फिल्म के नगमे को। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। संगीतकार हैं जतिन ललित, गीत के बोल अनवर सागर के हैं।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग।

नेतो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

कुल नंबर वन फिल्म के गानों को आप सुन रहे थे साधना सरगम कुमार सानू की आवाजों में। आनंद मिलन ने धुन बनाई थी, शब्द थे समीर के। इसके साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही पल में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा।

0: पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में बस्तर संभाग के लोगों तक सभी शासकीय सुविधाएं पहुंचाकर उनकी औसत आमदनी में 6 गुना की वृद्धि की जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल के मूल्य में 96 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। और रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित प्रदेश के मैदानी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बन जाएगा। आज बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी 6 गुना तक बढ़ जाए।
1: इतना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि बस्तर का हर नागरिक की अभी जो एवरेज आय है उसको कम से कम हम 5 साल में 6 गुना करने का काम करेंगे, इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं।
2: नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक तय लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है।
0: श्री शाह ने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 वर्षों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत बस्तर संभाग में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 शिविरों में से 70 कैंपों को शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा में बदला जाएगा। इस सेवा डेरा के माध्यम से स्थानीय लोगों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा, जिसमें बैंकिंग, कौशल प्रशिक्षण, स्कूल, आंगनबाड़ी और वनोपज प्रसंस्करण शामिल हैं। इसके साथ ही बस्तर के हर आदिवासी परिवार को एक एक गाय भैंस दी जाएगी और अगले 6 माह के दौरान यहां सहकारी डेयरी का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB के साथ अनुबंध कर लिया है।
1: मैं इतना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि बस्तर का हर नागरिक की अभी जो एवरेज आय है उसको कम से कम हम 5 साल में 6 गुना करने का काम करेंगे, इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं।
2: नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक तय लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है।
0: इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने आज जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ ही केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और इन चारों राज्यों के पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज फिर से बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों के छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल की कीमत में 96 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह से रायपुर में अब पेट्रोल 104 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर और डीजल 97 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। इस बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 3,28,00,000 लीटर से अधिक पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर से ज्यादा डीजल उपलब्ध है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक भंडारण न करें। कोंडागांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर इसके 7 सदस्यों को दिल्ली और गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। फरसगांव के SDO पुलिस अभिनव उपाध्याय ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए जिला पुलिस की अलग अलग टीमें पिछले करीब 3 महीने से तलाश कर रही थीं। उन्होंने बताया कि आरोपी खुद को बीमा एजेंट बताकर लोगों से पैसा वसूल किया करते थे और अलग अलग मोबाइल फोन से फर्जी मैसेज भेजकर उनके साथ ठगी किया करते थे। दुर्ग पुलिस ने IPL मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा कारोबार का मुख्य संचालक सेट स्पोर्ट बुक और लोटस ऐप के जरिए म्यूल अकाउंट का उपयोग कर करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहा था। पुलिस को आरोपियों के पास मिले म्यूल खातों से करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमेश डेका ने कल लोकभवन में विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस समारोह के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित किया। इनमें शुभांगी आप्टे, संजय आप्टे, सुजॉय मंडल, रुचि साहू, तुमन साहू, कुसुमलता बिपरे और पुलिस अधिकारी सूरज सिंह परिहार शामिल हैं। दुर्ग भिलाई के नेहरू नगर इलाके में हुई एक चोरी के मामले की जांच करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में मेरठ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
3: नेहरू नगर में विगत दिनों चोरी हुई, चोरी के उपरांत पुलिस टीम लगातार उस पर लगी हुई थी। एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया था। अंततः 2 आरोपी मेरठ से पकड़े गए हैं और वहां से लगभग 400 ग्राम सोना रिकवर हुआ है जो गली हुई अवस्था में था और साथ ही लगभग 3.5 लाख कैश मिला है। ट्रांजिट रिमांड टीम को लाया गया है और इनसे इंटरोगेशन करने हेतु PR लिया जाएगा।
0: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गिरोह ने दुर्ग भिलाई, नवा रायपुर, बिलासपुर और जबलपुर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। ये आरोपी दिन के समय फेरी वाले बनकर कपड़ा और कंबल बेचने के बहाने रेकी किया करते थे। बिलासपुर जिले में पुलिस और ACCO की टीम ने सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजा के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं इलेक्ट्रिक ऑटो से गांजे की तस्करी कर रही थीं। ये सभी महिलाएं भटियारी गांव की रहने वाली हैं और ओडिशा से गांजा लाकर आसपास के इलाकों में खपाने की तैयारी में थीं। पुलिस ने गांजे के साथ 2 इलेक्ट्रिक ऑटो भी जब्त किए हैं जिनकी कुल कीमत 46,75,000 रुपए आंकी गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के रायपुर, बालोद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और बिलासपुर सहित कुछ जिलों में तेज हवा चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं बस्तर संभाग के जिलों में हल्की वर्षा और मेघ गर्जन के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इस बीच आज शाम दुर्ग जिले में मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कई इलाकों से आकाशीय बिजली गिरने की भी खबर मिली है। आंधी के कारण अनेक स्थानों पर पेड़ गिर गए हैं जिससे बिजली और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस नहीं छोड़ने के अपने पूर्व के निर्देशों को वापस लेने से इनकार किया है। राजधानी रायपुर स्थित लोकभवन में कल हिमाचल प्रदेश, गुजरात, सिक्किम और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस का कार्यक्रम पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल रमेश डेका इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम ने उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष 11वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। ये परीक्षा 1 जून से 9 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थी 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा 26 जुलाई को दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव द्वारा कल 20 मई को सुबह 10 बजे से अंबागढ़ चौकी तहसील कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में आज सुबह रेलवे पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक सेवानिवृत्त शिक्षक की मौत हो गई। जांजगीर जिले के खटोला गांव में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। और कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र में बीती शाम हुए सड़क हादसे में 1 युवक की मौत हो गई जबकि 7 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में बस्तर संभाग के लोगों तक सभी शासकीय सुविधाएं पहुंचाकर उनकी औसत आमदनी में 6 गुना की वृद्धि की जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल के मूल्य में 96 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। और रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित प्रदेश के मैदानी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

FM 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 7 बजे हैं, अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। बंजारन फिल्म के गाने को सुनिए अलका याग्निक सुरेश वाडकर की युगल आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: नमस्कार, मेरा नाम गोपाल कृष्ण देवांगन है और मैं गणित का व्याख्याता हूँ। सबसे पहले 90 वर्ष पूर्ण होने के इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। एक गणित शिक्षक के रूप में मैं ये भली भांति समझता हूँ कि ज्ञान का प्रसार किसी समाज की प्रगति की आधारशिला होता है और इस दिशा में आकाशवाणी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बीते 9 दशकों में आकाशवाणी ने न केवल समाचार और मनोरंजन प्रदान किया बल्कि शिक्षा, संस्कृति, जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सटीक जानकारी और ज्ञान पहुंचाकर इसने लोगों के जीवन को सही दिशा प्रदान की है। गणित की तरह ही जहाँ हर सूत्र और सिद्धांत जीवन को सरल और व्यवस्थित बनाता है, इसी प्रकार आकाशवाणी ने भी समाज को जोड़ने और सही दिशा देने का कार्य किया है। आकाशवाणी ने आज की नई पीढ़ियों को भी प्रेरित किया है। मैं कामना करता हूँ कि आकाशवाणी इन वर्षों में भी इसी समर्पण के साथ ज्ञान और सूचना का प्रकाश फैलाती रहे। धन्यवाद।

90. श्रोताओं, संदेश पहले आप सुन रहे थे आई मिलन की रात फिल्म के गाने को अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। गीत के बोल समीर के थे, धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं बनारसी बाबू फिल्म के इस गाने को। समीर के शब्द हैं, संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने, आवाजें हैं अलका याग्निक कुमार सानू की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बनारसी बाबू फिल्म के गाने को कुमार सानू अलका याग्निक की मधुर आवाजों में। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

कार्यक्रम किसानवाणी सुनैया जम्मो संगे संगवारी मन ल मुकेश चतुर्वेदी के राम राम जय जोहार संगवारी हो संझा के बेरा किसानवाणी के बैठकी में आप जम्मो सुनैया संगे संगवारी मन के स्वागत हवे। भैया देखा तो घाम महीना के दिन चलत हे और संगे संग में हमार खातू पलाई के बूता घलो चलत हे और घाम हर ऐसे कर दे थे किसान पूछा संझा के बेरा में रुकुर धुकुर आ थे कभू कभू आंधी तूफान का सोकर बाद में चल दे थे लेकिन इसने उहा पोह की स्थिति बने हुए है। लेकिन देखा तो महीना समय प्रकृति अपन हिसाब से अपन समय ल व्यवस्थित बनाए रहते जिनमें कि अविया दिन हर वर्षा के दिन हुई तो हमन ल वर्षा के दिन के पहली जो आवश्यक तैयारी करना है तेला हमला करना चाहिए काबर की खेतिहार के खेती किसानी वाला मनसे। तो भैया हो आज के हमार ये बैठकी में है काका मुख्य बात है जुन हमला चर्चा करना है तो जुन हिसाब ले अभी भुया नठा थे और ज़्यादातर अंधाधुंध

0: रासायनिक खाद के इस्तेमाल करके हमन जोन भुइयां ल नठा दरे हन और अनुपजाऊ हो जाते हैं ओला उपजाऊ बनाए बर हरी खाद जोन है कि मृदा के स्वास्थ्य बर एक वरदान है। इला हमन चर्चा करबो आज के बात में हरी खाद मृदा स्वास्थ्य के लिए एक वरदान। इकर अलावा संगवारी हो आज के नशियत में हमन गोट करबो कचरे को कीमती बनाए कचरा अपघटक से। संगवारी हो आप देखता कि अभी ये दे गर्रा धोखा के दिन आते तो पेड़ पौधा ले पान पताई गिरते हमार फसल अवशेष बचे रहते कोठा भाटा के कचरा रहते घर के साग सब्जी के छिलका रहते तो ये जम्मो कचरा कूटा सब ला सकेल करके उला सड़ा करके बढ़िया मजा के खातू तैयार किया जा सका थे जोन खातू ला हमन अपन खेत में भी पाल सका थन बाग बगीचा में डाल सका थन ऐसी स्थिति है। इकर अलावा संगवारी हो आज के टिप में हम चर्चा करबू बाजार की मांग के अनुसार औषधि पौधों की खेती। खेती किसानी के साथ साथ में हमर क्षेत्र के बहुत ज़्यादा किसान संगी संगवारी मन औषधि पौधा के खेती से भी जुड़े हुए हैं। काबर की हर अतिरिक्त आमदनी के बहुत अच्छा माध्यम होते बहुत अच्छा साधन होते। तो भैया हो ये खेती किसानी के साथ साथ में अगर औषधि पौधा के भी खेती करा थन तो ओकर विषय में ये जानना आवश्यक होते कि और कतक ज़्यादा लाभकारी है और अभी वर्तमान में बाजार में कौन कौन सा औषधि पौधा मन के ज़्यादा मांग है और या बारह महीना मांग बने रहते ऐसे फसल के खेती करे ले ज़्यादा लाभ और मुनाफा मिलते। इकर अलावा हमार ये सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र हर वन ले आच्छादित है हमारे पूरा छत्तीसगढ़ हर इकर वजह से भी हमारे बहुत सारा लाभ मिलते और संगे संग आज के किसान के क्रम में संगवारी हो हम आप ला भेंट कराबू ग्राम पत्रापाली पूर्व विकास खंड रायगढ़ के कृषक हैं गोपाल पटेल जो प्याज भाजी की व्यवसायिक खेती करत हैं और नियमित रूप ले वो आनी बानी के भाजी पाला लगाते हैं। हालांकि प्याज तो लगाबेज करते हैं इकर अलावा पालक भाजी है लाल भाजी है करमत्ता भाजी है गर्मी वाला जितकी भी आनी बानी के भाजी पाला है ते सबके व्यवसायिक ढंग ले खेती करते हैं। तो उकर से हम जो भेंट करें हैं नोला हम आप मतलब सुनाबो आज के किसान के रूप में। इकर अलावा भैया हो चर्चा करबो ग्रामीण और कुटीर उद्योगों में निर्मित खिलौनों का उपयोग बढ़ा करके आत्मनिर्भरता बनाए। भैया देखा तो आज हमारे गांव देहात मन में भी आनी बानी के जो परंपरागत कुटीर उद्योग हैं परंपरागत कला मन हैं जिनमें की लकड़ी के और माटी के आनी बानी के बांस के जो खिलौना बनाते हैं टुकनी सुपा बनाते हैं और ऐसे बहुत सारा घरेलू जिनिस बनाते हैं जो न उनके उपयोग करके या उपयोग ला बढ़ा करके हम उमन पर एक आर्थिक रूप से उमन ला सक्षम बना सकत हन आत्मनिर्भर बना सकत हन। तो चर्चा में करबो इला ग्रामीण कुटीर उद्योग में निर्मित खिलौनों का उपयोग बढ़ाकर आत्मनिर्भरता बने। इकर अलावा भैया हो पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी की आज जयंती है उनका संबंध में भी चर्चा करबो और संगे संग में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पुण्यतिथि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ओकर विषय में भी हम चर्चा करबो और विश्व निष्पक्ष खेल दिवस हो आज ओकर विषय में गोट करबो अल्पसंख्यक मन के कल्याण पर मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण। ये तो आज के हावे संगवारी हो हमार आप मन से गोट बात के विषय और चर्चा के बात। तो शुरुआत करें आज के बात ले और आज के बात में ही हरी खाद मृदा स्वास्थ्य के लिए वरदान। भैया हो हमार कृषि में हरी खाद वो सहायक फसल लगत हैं जोन खेती में मुख्यतः भूमि में पोषक तत्व ल बढ़ाए मा उमा जैविक पदार्थ के पूर्ति करे के उद्देश्य लिए किया जाते और ज़्यादातर ये तरह के फसल ला हरा की स्थिति में ही हल चला के या नांगर जोत के माटी में ही मिला दिए जाते वही ही हरी खाद देना कथे। हरी खाद ले भुइयां की उपजाऊ शक्ति बढ़ते भुइयां की रक्षा होते और मृदा के लगातार दोहन जोन हिसाब में होते तो में उपस्थित पौधा के बढ़वार पर आवश्यक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इकरी क्षतिपूर्ति हेतु माटी के उपजाऊ शक्ति ला बनाए रखे पर हरी खाद हर एक उत्तम विकल्प हो जिनमें बिना सड़े गले हरा पौधा दलहनी और अन्य फसल जैसे उकर भाग मनला मृदा के में उला जोत के मिला दिए जाते जिनमें मृदा के नत्रजन या जीवांश के मात्रा बढ़ाए मा खेत में दबाए जाते तो ये क्रियाला हरी खाद देना कथें। संगवारी हरा खाद के उपयोग ले न सिर्फ नत्रजन भूमि में उपलब्ध होते बल्कि मृदा की भौतिक रासायनिक और जैविक दशा में भी सुधार होते। संगे संग में जो वातावरण है वो वातावरण में भूमि प्रदूषण के समस्या ल भी समाप्त किया जा सकत है और लागत घटी ले किसान के आर्थिक स्थिति बेहतर होते और फिर भूया में सूक्ष्म तत्व के आपूर्ति होते, संगे संग मां मृदा की उर्वरा शक्ति भी बेहतर हो जाते। अब अगर फायदा के बात करें हमन तो फायदा में ऐसे है कि हरा खाद केवल नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ लही साधन नहीं करे बल्कि माटी में कई आवश्यक पोषक तत्व के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराते। उकर अलावा हरा खाद के उपयोग ले मृदा भुरभुरी होते, वायु संचार में अच्छा होते, इकर अलावा जल धारण क्षमता में वृद्धि होते, अम्लीयता क्षारीयता में सुधार और मृदा क्षरण में भी कमी होते। संगे हुए इकर अलावा फायदा की बात करें तो हरा खाद के प्रयोग ले मृदा में सूक्ष्म जीव की संख्या और क्रियाशीलता बढ़ते, मृदा की उर्वरा शक्ति और उत्पादन क्षमता भी बढ़ते, हरा खाद में मृदा जनित रोग में भी कमी आते। इकर प्रयोग ले रासायनिक उर्वरक मन की कमी करके भी टिकाऊ खेती हमन कर सकत हन। भैया हो हरा खाद के अर्थ होते तेजी ले बढ़ने वाला दलहनी फसल, जिनमें ढेंचा है, सनाई है, मूंग है, लोबिया है, एमन फूल आए ले पहले खेत में ही जोत करके ओला माटी में मिला दिए जाते। अब ये माटी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ बढ़ा करके उपजाऊ क्षमता जो होते भूया की उला 45 से 50 दिन में बढ़ाते हैं। और लाभ में ये कि यह तो पोषक तत्व की वृद्धि होती, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ल माटी में स्थिर करके यूरिया की आवश्यकता ला कम करते, माटी में सुधार होते यानी माटी में कार्बनिक पदार्थ जीवांश बढ़ा करके संरचना भुरभुरापन जल धारण क्षमता में सुधार करते। खरपतवार नियंत्रण, घना फसल हुए के कारण यह खरपतवार ल उगेल भी रुकते, एक वजह से खरपतवार के भी नियंत्रण हो जाते। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होते भैया हो कि लागत में कमी यानी रासायनिक उर्वरक की निर्भरता कम करके खेती की लागत ला कम करते और हमारे उत्पादन ला बढ़ाते। तो ये दृष्टिकोण ले देखा जाए तो हरा खाद के उपयोग जो है यह बहुत ही ज़्यादा माने लाभकारी है। और हरा खाद पर दलहनी फसल में सनाई है, सनहम चुन लगाते हैं, ढेंचा है, लोबिया है, उड़द है, मूंग है, गवार है, ये फसल में उपयोग कर सका था। और ये फसल की वृद्धि कम यानी शीघ्र कम समय में हो जाते। पत्ती मन बड़े वजनदार वजनदार और माने अपन हिसाब से देखा जाए तो वजनदार बहुत संख्या में रहते और एक उर्वरक और जल की आवश्यकता कम होती, जिनमें कम लागत में अधिक कार्बनिक पदार्थ हमला प्राप्त हो जाते। तो भैया हो दलहनी फसल में जड़ के नाइट्रोजन वातावरण ले मृदा में स्थिर करे के जीवाणु पाए जाते खेत ओकरे स्थिति में ये हरा खाद हर बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है और लाभकारी है। तो भैया हो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अपन खेत में और अभी कर सही समय अभी हर है जिनमें कि हम एक खेती कर सका था नहीं लगा सका था और लगा करके तैयार करके या फसल जो हम लगाना है चाहे धान लगाई या सब्जी भाजी लगाई जो भी फसल लगाना है ओकर खेत में हम ये हरा खाद के फसल लगा करके ओला जुताई करके खेत में ही हम ओला दबा सका था। भूया में दबा दे के बाद में ओकर जो लाभ मिली तेहर हमला ज़्यादा मिली होते का संगवारी हो। ज़्यादातर किसान सिर्फ रासायनिक खाद के भरोसा में रहते हैं लेकिन हमला रासायनिक खाद के भरोसा में नहीं रहना है बल्कि ओकर ऊपर निर्भरता कम करना है। तो ओकर पर हरा खाद हर एक बहुत ही अच्छा विकल्प है और हरा खाद मृदा स्वास्थ्य पर एक वरदान घलो हो इस और रूप में अगर देखा जाए तो ला तो निश्चित मान के चलो कि खेती किसानी में जो हिसाब ले नवाचार होते उत्तरोत्तर प्रगति होते और कृषि वैज्ञानिक मन के सलाह भी मानिए आप तो हरा खाद के जो फसल है हरा खाद के फसल है ओकर खेती है ओकर बरोमन प्रोत्साहित भी करते हैं किसान मन ला समझाइश भी देते हैं ताकि हमारे क्षेत्र के किसान संगे संगे संगवारी मन जागरूक भी हों और ये फसल के उत्पादन करके अपन फसल उत्पादन ला बढ़ोतरी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। भैया हो बेरा हुआ थे आज के कृषक प्रश्न मंच के। तो कृषक प्रश्न मंच में आज के हम पूछबो आप मल्ला यही हमारे जो हरा खाद के विषय में चर्चा चला थे संगवारी हो हरा खाद पर दलहनी फसल के मुख्य फसल कौन कौन मन होते हैं। प्रश्न एक बार फिर दोहरात हो हरा खाद के मुख्य फसल दलहनी में कौन कौन मन शामिल होते हैं। सही उत्तर ला आप ले लिख के भेजना है ताकि हम अपन अवैया कार्यक्रम में आपके ये प्रश्न के सही उत्तर लिख भेजिए या ईमेल के माध्यम से भेजिए तो हम अपन कार्यक्रम में शामिल करबो। तो संगवारी हो बेरिया बखत है आज के किसान के और आज के किसान के क्रम में है हमन करा ग्राम पत्रापाली विकास खंड रायगढ़ के कृषक हैं गोपाल पटेल जो प्याज भाजी की व्यवसायिक खेती करते हैं संगे संग मानी बानी क्या भाजी की खेती करते हैं। तो आवा ले चली हम आपला पत्रापाली और सुनाई वो किसान के जुबानी हमार ये गुड बात।
1: किसान भैया हो हमारा आकाशवाणी के सार्थक प्रयासों थे उन्नतशील किसान और ग्रामीण विकास यही क्रम में आप मतलब बढ़िया उन्नतशील और सुगर सुगर किसान संगे संगवारी मन संग भेंट करात रहन। तो आज के किसान के क्रम में हमन के बीच में बहुत अच्छा किसान संगवारी बैठीन है जिकर से हमन गुड बात करबो जो भाजी पाला की खेती करते हैं और संगे संग में सब्जी वगैरह में प्याज वगैरह की भी खेती बहुत अच्छा ढंग ले करीन है। तो भैया आप हमारा राम राम जय जोहार। आप अपन नाम बताहा और गाँव के नाम बता।
2: गोपाल पटेल मोर नाम।
1: अच्छा और गांव?
2: गांव पत्रापाली
1: और विकास खंड
2: रायगढ़।
1: रायगढ़ तो पटेल जी अभी वर्तमान में का बूता काम चलत है?
2: हमन अभी भी साग भाजी के खेती करथन करता।
1: अच्छा तो साग भाजी में का लगाए?
2: पालक लगाए हन लाल भाजी लगाथन प्याज वगैरह सब लगाते।
1: अच्छा तो कतक कतक बड़े एरिया में लगाए है रकबा मतलब कतक डिसमिल में?
2: उसने 30-35 डिसमिल के ये में लगा रहे।
1: अच्छा ये सब भाजी वाजी?
2: भाजी वाजी।
1: हाँ हाँ और प्याज कतक में लगा रहा?
2: प्याज हर उसने रही और कहता
1: हाँ
2: 4-6 परिया इसने रही।
1: अच्छा मैं 8-10 डिसमिल होगी सो ही?
2: हाँ
1: है नहीं?
2: हाँ
1: तो अभी तैयार होगी इसने प्याज हर?
2: प्याज खत्म होगी इसने।
1: अच्छा बहुत सुंदर।
2: चार पान भाजी बेच देते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ मैंने प्याज पत्ता के रूप में बेचता।
2: पत्ता के रूप में?
1: तो पत्ता के रूप में बेचे में ज्यादा लाभ मिलते बनिस्बत प्याज कांदा के रूप में बेचिया था?
2: हाँ।
1: अच्छा
2: बांस डाल वाला राख दो थम सूखा बार।
1: अच्छा अच्छा माने घरों में भी तो काम आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो गोपाल भाई आप तो बहुत पुराना किसान है आपसे एक चीज जानना चाहबो कि प्याज के पत्ता बेचे में ज्यादा फायदा है कि कांदा बेचे में?
2: पत्ता बेचे पत्ता जल्दी माने ये होते आओ कांदा का रखिया तक लेट ला।
1: अच्छा समय ज्यादा लगता?
2: समय ज्यादा
1: लेकिन फायदा आप भाजी बेचे में होते प्याज के पत्ता अगर विक्रय करा था तो ज्यादा है ना। तो प्याज की खेती हर कितना दिन के मूल रूप ले?
2: 2.5 महीना लग जाती।
1: 2-2.5 महीना लग जाते कहा तो बाजी तुम्हार में सिंचाई के का साधन रखे है?
2: कुआ है।
1: कुआ है कुआ ले सिंचाई हो जाते? अच्छा टुल्लू पंप लगा करके कुआ ले सिंचाई हो जाते कहा तो ऐसो अभी प्याज लगा रहा था बढ़िया उत्पादन हो रही
2: है?
1: अच्छा ऐसो बढ़िया हुई से कहा और विक्रय भी कर चुका?
2: खत्म।
1: बहुत बढ़िया। तो अभी वर्तमान में भाजी वगैरह के खेती चला थे?
2: हाँ, पालक भाजी और ये करमता भाजी खेड़ा इस मल्ला लगाता
1: हूँ। हाँ हाँ तो यार अभी जैसे आप उत्पादन करता भाजी वगैरह लगा था तो एक बार कैसे करता है मंडी में दे देता कि आसपास के निकट के बाजार लगते थे यहाँ पे खुद बेचता?
2: मंडी लग जाता जो अतक नहीं जान मंडी लाया रास्ता में हमारे खत्म हो जाती।
1: अच्छा मारा उसकी बढ़िया और ताजा चीज रहते कि जात तक ले ही खत्म हो जाते कहा हमारे शहर अबरे बनने लगे नहीं। बहुत बढ़िया। और का है किंदर बुल के बेचिया माने जात है लेके जात है उसकी में मुनाफा मिल के सब फायदा हो गए तो तुम लोग का करे बड़े। वैसे भी तो सब्जी भाजी की खेती है नकदी फसल के रूप में होते तत्काल पैसा मिलना है। तो अभी पालक निकला थे कहा और करमत्ता भाजी वगैरह निकला थे है ना? करमत्ता भाजी है जो ऐसे अपन लगा था तो लू करके बेचते बाजार में ले देखते हम तो अगर बीज आते कि डंठल से रोपाई करते हैं?
2: बीज आते हो?
1: अच्छा बीज आते तो आप मन बीज से लगा था और कतका दिन में तैयार होत हुई है?
2: हर एक महीना के भीतर में हो जाते
1: और जबकि लाली भाजी तो बहुत जल्दी तैयार होती
2: है। 15-20 दिन में?
1: 15-20 दिन में लाली भाजी बिक्रय पर तैयार हो जाते कहा?
2: पालक भाजी हर एक महीना लग जाते।
1: अच्छा पालक भाजी भी एक महीना लगते इसमें सिर्फ लाल भाजी है ऐसे जो है की कम समय में तैयार होते कहा तो बहुत सुंदर।
2: अब मुरई वगैरह हर भाजी वाला मुरई?
1: हाँ भाजी वाला मुरई। तो अभी जैसे ये भाजी वाजी निकला थे अभी और ये हर निसर जो खत्म हो जाए उकर बाद में फिर का लगाई तैयारी है?
2: बाद में कोचे वगैरह देबो कहता बारी में अदरक और कोचाई।
1: अच्छा अदरक भी खेती करता आप?
2: हाँ,
1: अच्छा तो अदरक और कोचाई लगाना है कहा?
2: हाँ,
1: बरसा दिन से पहले?
2: पहले।
1: है ना, ताकि और वर्षा दिन में फिर तैयार हो जाए वर्षा के आता अब तक ले। और मुख्य रूप ले तहले वर्षा ज्यादा होते तहले तो फिर धान कमात हुआ
2: नहीं, बाड़ी में धान नहीं हो नहीं।
1: अच्छा बाड़ी में नहीं हो, बाड़ी में सब्जी भाजी चलते, तो वर्षा कालीन सब्जी लगा था फिर तरोई दौड़का ऐसे कुछ
2: लगा था ना, ये कोचाई अदरक बरसाती में होते ना।
1: अच्छा
2: कोचाई मन
1: कोचाई और अदरक जो नर की ज्यादातर बरसात में होते तो ई मन लगा था का, तो एक बीजा अगर आप मन कर घर में ही रखा तो
2: बना देते बीज ला।
1: अच्छा
2: ये कोचाई की
1: हाँ हाँ,
2: बाकी बीज मन ला खरीद थन करता।
1: हाँ नहीं सही बात है, जो चीज संभव हो पाते थे मतलब तो घर में तैयार हो जाते, जो चीज संभव नहीं हो पाए थे कर बार हम बाहर ले खरीदना पड़ते या लेना पड़ते कहा तो ये वाला बात है भाई। खेती किसानी की बूता हर मेहनत के काम है, आप अब का पुराना किसान है। और गोपाल भाई आपसे एक चीज और जानबू कि ये सब्जी भाजी के खेती में ज्यादा फायदा है कि धान के खेती में?
2: नहीं सब्जी भाजी में ज्यादा फायदा है।
1: अच्छा
2: धान जी
1: हाँ
2: धान हर एक फसल कहता
1: है। हाँ हाँ और सब्जी भाजी हर
2: और तीन चार फसल हो जाती है साल,
1: तीन चार फसल हो जाती है और नकदी फसल है
2: हर।
1: और कम समय में कम मेहनत में कम पानी में तैयार होने वाला चीज है।
2: ज्यादा पानी लगता है धान में,
1: धान में पानी ज्यादा लगता है उगर खातिर बार अपन ये सब्जी की खेती प्राथमिकता देता अप्राथमिकता से लगाता भी कहा तो अभी जैसे भाजी वाजी तोड़ाई करके रखे है आप मन तो इला कल सुबह जही है बाजार है ना, कल सुबह बाजार जही है और बाद में तहले बेच बाज के नक्की कहा तो बहुत बढ़िया। तो अतका दिन हो गए खेती किसानी करा था आप मन अतका बढ़िया सुघर ढंग ले खेती किसानी करा था, उम्मीद करबू कि हमारा आकाशवाणी के माध्यम ले आप मन के गोट बात सुन के किसान मन संगी संगवारी मन भी लाभान्वित हो ही। आप अतक सुघर जानकारी दिया गोपाल भाई, एकर सेती आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा राम राम, जय जोहार,
2: जय जोहार।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो संगवारी हो, देखा अभी हमन सुनत रहन गोपाल पटेल जी के गोट बातला कदक सुघर जानकारी देवत रहनी कि भाजी जुन प्याज भाजी हमन प्याज तो लगा था ना, प्याज लगा के लगभग अभी सभी किसान करा उपलब्ध है, और प्याज की भाजी और भाजी आनी बानी के है। और आजकल देखा तो मनसे और खासकर जो हमारे शहरी क्षेत्र मन में है, लोगों मन अपन स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं, और स्वास्थ्य में हरा पत्तेदार सब्जी के बहुत ही ज़्यादा महत्व रहते, बहुत ही ज़्यादा मांग रहते। तो में ये पालक होइस या लाल भाजी होइस या प्याज भाजी होइस, ये सब चीज़ मन के बहुत ही ज़्यादा। और अभी गर्मी के दिन है तो आप देखी हुई है सादा भाजी, चौलाई पत्ता, चेज भाजी, ऐसे आना सुनसुनिया भाजी, ऐसे बहुत सारा भाजी है हमारे जो छत्तीसगढ़ में, जो मन की बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं और शरीर के हिसाब से लाभकारी भी होते हैं। और अगर कोई किसान है व्यवसायिक दृष्टिकोण ले लगाए थे तो निश्चित मान के चलो कि वह सफलता की झंडा गाढ़ी और सफल हो बेच करी। खैर तो संगवारी हो, ये तो रही से आज के किसान, और आज के किसान के बाद में हम उनके फिर आज के चर्चा के विषय है नसीहत। नसीहत में ही कचरा को कीमती बनाए कचरा अपघटक से। तो भैया हो ऐसे है, खेत खलिहान ले हम उनकी बहुत सारा कचरा निकलते जून फसल अवशेष कथन अमन, खास करके फसल कटाई के बाद। तो ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि आगे धरा देते हैं, साफ सफाई करके झमेला ले बांचना है तो या तो इकट्ठा कर दी या कोनो कोंटांग ले आगे धरा दी, तो धीरे धीरे फैल फैल के पूरा डोली भर भर खेत भर भर फैल जाते हैं। जबकि खेत में आगे लगाना ला बहुत ही गलत माने जाते, ऐसे नहीं करना चाहिए, कर ले भुइयां हर भी कठोर हो जाते, आसपास के वातावरण भी खराब हो जाते और मनसे के स्वास्थ्य में भी बहुत फर्क पड़ते। संगे संग हमार खेत डोली के जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वह मन भी नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो वो दृष्टिकोण ले कचरा ला जलाए के बजाय ओला अपघटित करके बेहतर खाद बनाया जा सकते, कीमत बढ़ाया जा सकते। तो खेत के हमार कचरा जो है फसल ओसे से पराली है, पैरा भूसा है, पान पताई है, ये सब मन ला सड़ा करके एक बेहतर खाद बना सका थन। तो इहर खेत मन में कचरा के अपघटन हर एक वरदान के समान है, जो नर की बंजर जमीन ला भी उपजाऊ बना सका थे, और यूरिया डीएपी जैसे रासायनिक खाद के निर्भरता ला भी कम कर सका थे। इकर अलावा संगवारी हो मशरूम उत्पादन करते हैं हमारे ज़्यादातर किसान, तो मशरूम उत्पादन के बाद में बचे हुए ओकर जो अवशेष रहते, फसल के डंठल रहते, पुआल रहते, रसोई के जैविक कचरा रहते, घर के साग सब्जी के छिलका रहते, कोठा भाटा के पैरा भूसा बन रहते हैं और पशु मन के अवशेष रहते, तो ये सब ले गुणवत्ता वाला जैविक खाद कंपोस्ट तैयार किया जा सका थे। आप लसुरता हो ही हमारे पुराना जमाना की किसान संगे संगवारी मैं हमारे दादा पुरखा की, तो मन जम्मो झन के घर के पिछू माँ गोबर खाँचा रहे, जिन लोग गोबर गड्ढा मन कहन, और में ये जम्मो कचरा मन ला सिलात जाए सिलात जाए, उकर बाद में धीरे से वो हर सड़ करके बेहतर खाद होते। जून लग कि अभी ये गर्मी महीना में फसल कटाई के बाद ले कुछ दिन पहले ओला पलटी करते हैं, माने खपट के ओला सुखोते हैं, माने पलटते हैं, अल्टी पलटी करते हैं, तो और पूरा तरीके से सड़ जा रहे थे। जून अभी जो खाद हमन खेत डोली मन में पालथन, खातु पालना जून लगा थन, यही खातु ला ले लेके हम पालथन, और उसके बाद में फिर वो दूसरा गड्ढा मन में फिर हम नया जून कचरा निकल जाते तेल हम डाल जाता। तो ये प्रक्रिया प्राचीन काल ले चले आते थे, पुरातन काल ले चले आते थे। तो जो यह माने एक विशुद्ध देसी तकनीक है, तो संगवारी हो कचरा मन ला सड़ा करके अपघटित करके हम बेहतर खाद बना सका थन, और ओकर अगर हम बना था तो ये मान के चला कि हमन ला बहुत ज़्यादा फायदा ये है कि जो महंगा महंगा रासायनिक खाद खरीदे पर लागत थे ओकर लागत में कमी आ सका थे, और कचरा के उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाला जैविक खाद हम तैयार कर सका था। तो खेत में कचरा अपघटन के प्रमुख लाभ के बात करें तो हमें ये है कि माटी के उर्वरता, संगवारी हो जैविक खाद माटी माँ पोषक तत्व और ऊर्जा प्रदान करते, जेकर लिए बंजर जमीन भी उपजाऊ बन जाते। इकर अलावा लागत में कमी होते, तो यह प्राकृतिक और सस्ता खाद हो जिनमें महंगा रसायन खाद के बेहतर विकल्प है। इकर अलावा अपशिष्ट के सही उपयोग यानी धान के पराली है, रसोई के कचरा कुटा है, बाग बगीचा के पान पताई है, वो सब ल जलाए के बजाय हम अगर खातु बनाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण भी कम होते, खेत डोली भी साफ सुथरा थे और हमन पर बढ़िया खातु भी बन जाते। इकर अलावा संगवारी हो मशरूम अवशेष, तो मशरूम अवशेष में खेती के बाद में बाँचे अवशेष के अपघटन करके उनमें शक्तिशाली खाद बनाया जा सका थे, जोनहर की फसल पर वृद्धि करते, शक्तिशाली खाद होते बहुत ही ज़्यादा। काबर की मशरूम बनाए पर पैरा भूसा के ही इस्तेमाल करता था हमन, पूरे तरीके से ओला सड़ा करके ही जो मशरूम उत्पादन करथन, तो उकर लिए जो वेस्टेज रहते बचे अवशेष रहते ओला ले करके हम बेहतर खाद बना सका थन। और अपघटन के प्रक्रिया के बारे में बात करें संगवारी हो, तो ऐसे ही कि सबसे पहले तो हमन हमारे घर के आसपास की कचरा मन इकट्ठा करना है, जो उनमें साग सब्जी के छिलका है और पान पताई है, पेड़ पौधा के फटे पुराना पत्ता है, डगाली है, डंठल है, खेत के अवशेष है यानी पुआल है, नराई है, डंठल है, पैरा भूसा है, ये सब मन इकट्ठा करना है। ढेरी या गड्ढा बनाना है, एक गड्ढा खोद करके या खेत के कोना में ढेरी लगाना है, नमी बनाए रखना है, तो कचरा में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है ताकि वो खुला छोड़ देना है। और अपघटन की प्रक्रिया ला तेजी करे पर उमा गोबर के घोल या कि फिर वेस्ट डी कंपोजर के भी उपयोग कर सका था नामन, तो ये जो गोबर के घोल है या वेस्ट डी कंपोजर है उसका उपयोग करके कुछ हफ्ता या महीना में एक कचरा हर सड़ के एक बेहतरीन जैविक खाद के रूप में बदल जाते। तो संगवारी हितों का बहुत कम समय में यह तैयार हो जाते और उसके बाद में ये खादला आप खेत में उपयोग कर सका था, बाग बगीचा में उपयोग कर सका था। संगवारी हो महत्वपूर्ण टिप्स की बात करें तो कचरा जलाई की सिफारिश कभी भी नहीं किया जाए और हमेशा एला लैंडफिल या कंपोस्टिंग के द्वारा ही नष्ट करना चाहिए। जलाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, काबर की अगर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते, बल्कि ओला सड़ा गला करके कचरा बनाना चाहिए। भैया वो धान के कटाई के बाद में पुआल ला मशीन ले बंडल बना करके खेत में ही सड़ा करके कंपोस्टिंग यानी अगला फसल पर हम जमीन ला तैयार कर सकत हन। तो ऐसे बहुत सारा जिनिस है जिन मन लग कि हमन इस्तेमाल करके अपन खेती किसानी में बेहतर तरीका के उपयोग कर सकत हन और ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ पा सकत हन, लाभ ले सकत हन। संगवारी हो देखा तो चर्चा हमार चलत रही, लेकिन एक ठन झमाझम ये लोकगीत के बाद में, तो आवाज़ सुना जाए एक ठन ये लोकगीत।

0: तो संगवारी हो भी हमन गीत सुनेन, उम्मीद करबो कि आप मतलब पसंद आई सो ही। पसंद आई सो ही तो जरूर चिट्ठी पत्री के माध्यम ले या ईमेल के माध्यम से हमारा आकाशवाणी कार्यक्रम कैसे लगा थे उल्ले जरूर हमला अपन विचार ले अवगत कराहु। भैया हो देखा तो आज के टिप के बात करबो जो मैं बाजार की मांग के आधार अनुसार औषधि पौधा के खेती के बात आए तो यह ऐसे कि औषधि पौधा के खेती किसान मन पर पारंपरिक फसल जैसे कि गेहूं है, धान है या ने कुछ भी साग सालन के फसल कम आते हैं उगर तुलना में बहुत अधिक मुनाफा वाला विकल्प हो इस सबसे पहली बात तो। और जो किसान करत हैं तेमन पर बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और बहुत ही ज़्यादा उम्र सोच विचार करके एकर औषधि पौधा के खेती ल करत हैं। लेकिन अगर ई में बाजार के हिसाब किताब ल समझ करके आदमी किसानी करी तो निश्चित तौर पे मान के चला कि उकर लाभ दोगुना हो ही। तो हर्बल उत्पाद की बढ़त मांग के कारण और सही चयन और विपणन ले कम लागत में लाखों की कमाई किया जा सकता है। तो जैसे बाजार के मांग के अनुसार में अगर मुख्य औषधि पौधा मन हम देखो तो जिनमें सबसे ज़्यादा मांग जिक्र रहती उनमें एक तो ये अश्वगंधा, और अश्वगंधा हर बहुत ज़्यादा मांग रहे थे जो हर की काम थे कमजोरी तनाव और में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाए में उपयोग होते। इकर अलावा संगवारी हो सफ़ेद मूसली, एकर स्वास्थ्य टानिक और आयुर्वेदिक दवाओं में एकर बहुत ज़्यादा उपयोग होते, एकर पर मांग ज़्यादा रही थी। एकर अलावा गिलोय तो यहू में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला रथे और बहुत सारा बीमारी मन में उपयोग होते, एकर औषधि गुण के कारण एकरो भी बहुत ज़्यादा मांग रहती। एकर अलावा संगवारी हो जोन फसल जेकर खेती लगभग सभी किसान हमारे क्षेत्र में करते हैं हल्दी, उच्च गुणवत्ता वाला हल्दी जैविक के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही ज़्यादा मांग है तो एकर सेती भी हल्दी के खेती किया जा सकत है। और तुलसी संगवारी हो तुलसी चाय और दवाई के संग संग में सौंदर्य प्रसाधन में भी उपयोग होते, एकर बर तुलसी के भी बहुत ज़्यादा मांग है। एकर अलावा जो आउ फसल के मांग है उनमें होते लेमन ग्रास, सुगंधित तेल हो के बर काम आते हर, और संगे संग एकर अलावा काल मेघ होते जो हर के लीवर और मलेरिया की दवाई में उपयोग होते। और सबसे ज़्यादा बहुचर्चित यानी हमारे आसपास में और जितकी भी घर मन में गमला मन में भी देखे पर मिल जाते एलोवेरा, संगवारी हुए कॉस्मेटिक और स्वास्थ्य उत्पाद में काम आते, एकर स्थिति में एकर बहुत ज़्यादा मांग होते। तो ऐसे तीन चार औषधि पौधा हैं जो मन की बहुत आसानी से उत्पादन किया जा सकते हैं और बाज़ार में इमन के खपत भी बहुत ज़्यादा है, मांग भी बहुत ज़्यादा है। तो एक प्रमुख टिप्स की बात करें तो ये है खेती पर मृदा और जलवायु। तो संगवारी हो सबसे पहली बात ही होती कि अच्छा जल निकास वाला माटी दोमट माटी है सबसे बेहतर होते जिनमें अच्छा जल निकास के सुविधा हो। सही समय यानी संगवारी होकर बुआई के सही समय जून जुलाई जिसे अभी के समय है जून जुलाई खरीफ में और कई औषधि फसल की बुआई शुरू किया जा सकता है। अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, संगवारी हो ये औषधि पौधा की खेती में खास बात ये होती कि सीधा फार्मास्यूटिकल कंपनी या के फिर आयुर्वेदिक कंपनी के संग में अनुबंध करके भी मार्केटिंग की चिंता हर कम हो जाते। इकर अलावा मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन, तो भैया हो सीधा सूखा जड़ या पत्ती बेचे के बजाय इला प्राथमिक प्रसंस्करण यानी जो उनमें धोना सुखाना कटाई छटाई और पाउडर वगैरह बना करके बेचत हन तो इमें लाभ हर डेढ़ से दोगुना बढ़ सका थे। तो मूल्य संवर्धन करना भी बहुत जरूरी होते का होते का कि हम सीधा अगर उत्पादन करें ना और बाद में उला बेच दें तो हमें उतका लाभ नहीं मिल पाए, बनिस्बत कि उला कटिंग शटिंग कर दें, साफ सफाई कर दें, ग्रेडिंग कर दें, धो मांज के बढ़िया सुखा दें, कुनहर पाउडर बनाए के लेके पाउडर बना दें, फल बीजा है तो उला अलग अलग कर दें, ऐसे टाइप की अगर उपाय कर दे थे तो कर कीमत हर आउ लाभ ज़्यादा बढ़ते मैंने दोगुना हो जाते। और संगवारी हुई ये औषधि पौधा की खेती की बात करें तो एक बार लाभ और सहायता के जो बात रही थी तो वो हरी है कि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB एकर माध्यम ले क्लस्टर आधारित खेती में भी अनुदान मिलते, यहाँ भी संपर्क कर सकत हैं। एकर अलावा संगवारी हो ऋण सुविधा भी रहते हैं में, तो केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के द्वारा ऋण के भी सुविधा रहते। और एकर पर विशेष जानकारी पर औषधि पादप बोर्ड में या के फिर अपन जिला की वन विभाग है वहाँ भी संपर्क कर सका थे औषधि पौधा के खेती के बारे में, और बहुत सारा जानकारी और मनला माँ उचित मार्गदर्शन मिल सका थे। लाभ के बात करें तो संगवारी हो ये है कि औषधि पौधा के खेती लिए प्रति एकड़ अच्छा आमदनी मिल सका थे, जैसे कि अश्वगंधा या सफ़ेद मूसली की खेती में लागत कम और मुनाफा अधिक होते। कुछ विशेष औषधि पौधा में एक एकड़ में सालाना 2 से 3 लाख रुपए की आय संभव होते। तो भैया हो एकर औषधि पौधा के खेती जोन करत हैं तेमन तो करत हैं, लेकिन जोन किसान संगे संगवारी नया रूप ले करना चाहते हैं तो शुरू करे ले पहली अपन क्षेत्र के अपन खेत डोली के माटी के परीक्षण कराना चाहिए, और स्थानीय मांग के सर्वेक्षण करे के बाद में ही करना चाहिए। काबर की अगर समय रहत में आप ये सब चीज़ मतलब सर्वे कर ले था, एक जानकारी इकट्ठा कर ले था कि भाई मोला एक एकड़ में ये फसल लगाए के तैयारी करना है, तो का आवश्यक तैयारी करना पड़ते, कैसे कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ अगर हम समझ बूझ के करबो तो निश्चित मान के चलाओ कि औषधि पौधा के खेती हर भी बेहतरीन हो सका थे और लाभ के सेती हो सका थे। तो बाजार के मांग के अनुसार में और एक विषय में पूरा जानकारी लेह के बाद में ही ये खेती ला करना चाहिए। भैया हो देखा तो खेती किसानी हमन करथन, लेकिन बनिस्बत धान या के फिर गेहूँ या साग सालन के खेती के अलावा किसान ला चाहिए अतिरिक्त आमदनी, तो अतिरिक्त आमदनी के बहुत अच्छा माध्यम होते औषधि पौधा खेती। और एक बार पूरा सर्वे करना चाहिए, जांच पड़ताल करे के बाद में संबंधित विभाग जो हैं वन विभाग है उद्यान विभाग है जहाँ ले भी संभव हो सके आप मतलब बेहतर मार्गदर्शन ले करके सलाह मशवरा करके खेती लाओ बेहतर ढंग ले आप कर सका था। और ज़्यादा जानकारी पर औषधि पादप बोर्ड है वहाँ ले या कि फिर वन विभाग ले संपर्क आप मन कर सका था। तो संगवारी हो गोट बात देवो विराम और सुनाबो आप लगठन ये संदेश।
1: माटी के सांस लौटा ही हरी खाद, अंधाधुंध रासायनिक खाद ले थक चुके हैं जमीन, इला करना है फिर ले जिंदा। हरी खाद माटी के संरचना ला सुधारते, नमी ला बनाए रखते, पैदावार ला 20% तक बढ़ाते, सस्ता सरल और टिकाऊ खेती के आधार हरी खाद। आज ही शुरुआत करो हरी खाद पर बीज मा ढेंचा सनई मूंग जैसे बीज के उपयोग करो, और धान के फसल लेहे के पहली एकर बुआई जरूर करो। ज्यादा जानकारी पर अपन के लगठा के स्थानीय कृषि कार्यालय ले संपर्क कराओ।
0: तो संगवारी हो देखा आमन संदेश में भी सुने हरा खाद के विषय में, हरा खाद के कतक ज्यादा महत्व है तेला तो आप जाने दरे हो। तो भैया हो देखा तो आज चर्चा के विषय है अमन के कि पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी की जयंती है। संगवारी हो नीलम संजीव रेड्डी भारत की 6वीं राष्ट्रपति रही हैं, और कार्यकाल 25 जुलाई 1977 ले 25 जुलाई 1982 तक रही से। 19 मई 1913 के दिन आंध्र प्रदेश में जन्मे भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति और देश की एकमात्र ऐसे व्यक्ति रही हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए रही हैं। प्रारंभिक जीवन और स्वतंत्रता संग्राम के विषय में चर्चा करें तो संगवारी हो नीलम संजीव रेड्डी जी के जन्म 19 मई 1913 के दिन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की इल्लूर गांव में हो रही से। अब वो अपन शिक्षा मद्रास अनंतपुर के कॉलेज में पूरा करें, और संगे संग महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर के वो स्वतंत्रता संग्राम में आईं, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गई रही और ये आंदोलन के एक हिस्सा भी रही हैं। राष्ट्रपति बने पहले वो कई प्रमुख पद में भी सुशोभित रहनी, जिनमें मुख्यमंत्री रहनी, वो संयुक्त आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहनी, लोकसभा अध्यक्ष रहनी, वो दो बार लोकसभा की अध्यक्ष चुने गिन। तो ऐसे महान व्यक्तित्व ला जिकर आज जयंती है तो ला हम नमन करा थन है ना। और संगे संगमा देखा तो एक ठनाव विषय है हमारे कि ग्रामीण और कुटीर उद्योग में निर्मित खिलौना के उपयोग बढ़ा करके आत्मनिर्भरता बनाए। भैया हो देखा तो हुनर और कला यह ऐसे है जो हर की हमारे जतको मनसे हैं आनी बानी के लोगन हैं और आनी बानी के लोगन मन के हाथ में वो कला है, हुनर है। फिर ग्रामीण और कुटीर उद्योग में निर्मित खिलौना है स्थानीय और पारंपरिक शिल्प कौशल के उत्कृष्ट उदाहरण होते। मुख्य रूप से प्राकृतिक कच्चा माल जैसे कि लकड़ी है, बांस है, माटी है, कपड़ा है, पत्ता के उपयोग है, इकर करके करके कुशल कारीगर मन के द्वारा घर या छोटे समूह में हाथ लिए छोटे छोटे खिलौना या घर में सजावटी सामान आनी बानी के बनाए जाते। भैया हो ग्रामीण और कुटीर उद्योग लिए निर्मित जो खिलौना रहते उकर विशेषता और प्रकार के बात करें तो लकड़ी के खिलौना हो सका थे जिनमें पारंपरिक रूप ले आम, शीशम और हल्दू की लकड़ी के उपयोग करके नक्काशी और आकर्षक रंग के संग में खिलौना बनाए जाते। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के कुंडा गांव वगैरह है जहां प्रसिद्ध काष्ठ शिल्प के खिलौना है, कर्नाटक के चन्नापटना खिलौना है, वाराणसी की लकड़ी के खिलौना है। इकर अलावा मिट्टी और टेराकोटा के खिलौना में स्थानीय चिकनी जो माटी होती है उकरले विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी गुड़िया और बर्तन बनाए जाते जो पका करके प्राकृतिक रंग ले सजा करके आकर्षक रूप दिया जाते। कपड़ा और धागा के खिलौना होते फैब्रिक टॉयज जो कथनामन जिनमें कतरन है, सूती कपड़ा और जूट के उपयोग करके हाथ ले बने गुड़िया गुड्डा बनाए जा रहे थे, भरवा खिलौना जो कथनामन, ऐसे बहुत सारा चीज़ हैं जो उनकी लोगन मन बनाए रहे थे। संगी संगवारी हो देखा तो ये खिलौना बनाने वाला जो हमारे गांव देहात के कारीगर हैं या अपन जीविकोपार्जन पर ये गुता काम लग कर रहे थे तो ओमन के प्राकृतिक रूप ले जो तैयार कर रहे थे तो वही जिनिस के उपयोग ला बढ़ाए खातिर वो कारीगर मन की रोजी रोजगार बढ़े एकर बर ओमन आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो और आर्थिक रूप ले सशक्त बने, सक्षम बने। तो हमन ला चाहिए कि ये जो खिलौना बनाए रहते हैं या वो आने बानी के जिनिस बनाए रहते हैं, उत्पाद बनाए रहते हैं, वो सब ला हम अपन अंगले बढ़ावा दे के कोशिश करी, लेह के प्रयास करी। जैसे कि अक्सर घूमे फिरे पर जात आत रहन तो आनी बानी के खिलौना दिग्गीस या घर के कोई सजावटी सामान दिग्गीस जो कलात्मक रहते जो उन रखिया आप तो घर के शोभा बाढ़ते। फिर छोटे लोग लेकर हैं तो मन के खिलौना के भी काम आते तो कर लिखा होते कि हमारे ग्रामीण और कुटीर उद्योग के जो कारीगर हैं, जो निर्माता हैं, जो बनाने वाला संगवारी मन है वो मन के भी आर्थिक मदद हो जाते। तो वो दृष्टिकोण ले अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर हर बहुत ही ज़्यादा मैंने लाभकारी हो सकते है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए ताकि ओमन के भी रोजी रोजगार चले, ओमन के जीवन यापन बेहतर ढंग ले हो सके। संगवारी होकर अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आज पुण्यतिथि भी है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महान व्यक्तित्व रही हैं जो उपन्यासकार, साहित्यिक, इतिहासकार, निबंधकार और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध रही हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित उकर विपुल शोध, पद्म भूषण ले सम्मानित उकर विपुल शोध भारतीय पाठ परंपरा, मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन और हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक समझ लग गहराई ले प्रभावित कर रही ने। उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे द्विवेदी जी एक ऐसे परिवार ले रही जो पारंपरिक संस्कृत विद्वान मन के परिवार रही से जहाँ लगभग दो दशक शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय में बिताईं जहाँ वो रविंद्रनाथ टैगोर ले बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रही ने। इकर बाद वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में भी काम करी रही ने। उनका प्रमुख योगदान में है कि द्विवेदी जी अपन अनूठी भाषा शैली पर प्रसिद्ध हैं जिनमें स्पष्ट व्यवहारिक हिंदी और शास्त्रीय संस्कृत निष्ठ गद्य के सहज मिश्रण देखे पर मिलते। तो ऐसे महान व्यक्तित्व ला जिकर आज हमन पुण्य स्मरण कर रहे थन अब ऐसे समय में यानी उनकर पुण्यतिथि के अवसर में हम उलप स्मरण करते हुए सत नमन कर रहे थन। तो भैया हो गोड बात ला देवो फिर विराम और सुनाबो आप ला एक ठन छमाझम लोकगीत कती तो आओ सुना जाए एक ठन ये लोकगीत।

0: रामू भैया, ए दारी ते धान के फसल बर यूरिया और डीएपी के जुगाड़ कर डारे हस कागा? दाम हर तो आसमान छुआ थे भैया।
1: अरे अरे नहीं भैया, ये दारी मैं हर यूरिया के खर्चा ला आधा करे बर अपन के भुइया में हरा खाद ला बोए। हाँ
0: हरियर खाद वो कहा होते भैया?
1: बस ढेचा सनई ला उगाना है, 40-50 दिन के भीतर में माटी में मिला देना है और फसल ला प्राकृतिक रूप ले पोषण आहार मिलते।
0: वाह, ये तो संजूनी बूटी जैसे काम करी भैया, महू भी अपनाऊ लगा।
1: हरी खाद ला अपनाव, धरती दाई के स्वास्थ्य ला बचाव।
0: ज्यादा जानकारी बर अपन नजदीकी कृषि कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर में संपर्क कराओ।
2: तो संगवारी अभी हमन गीत सुने, और गीत के बाद में देखा तो हमारे चर्चा चला थे किसान वाणी की बैठकी चला थे, और किसान वाणी की बैठकी में चर्चा के विषय है कि आज विश्व निष्पक्ष खेल दिवस हो। तो संगवारी हो, प्रतिवर्ष 19 मई के दिन ला मनाया जाते जो ला संयुक्त राष्ट्र यानी UN महासभा के द्वारा आधिकारिक तौर में मान्यता प्राप्त है, और ये दिन खेल ला मनाए के मुख्य उद्देश्य थे खेल में निष्पक्षता, ईमानदारी, आपसी सम्मान, भाईचारा और भेदभाव मुक्त खेल भावना ला बढ़ावा देना, ये कर मुख्य उद्देश्य थे। तो हर साल लेहर मनाए जाते कि लोगन मन में खेल के भावना हो। ऐसे तो खेल कूद हर ऐसे ही कि मनसे के स्वास्थ्य पर बहुत ही आवश्यक होते, लेकिन संगे संग में वो दृष्टिकोण ले देखते हुए निष्पक्ष क्या है कि मतलब फेयर प्ले माने ईमानदारी, आपसी सम्मान, भाईचारा और भेदभाव मुक्त खेल भावना ला बढ़ावा देना, यही कर उद्देश्य होते। और जुनहर की प्रतिवर्ष विश्व निष्पक्ष खेल दिवस 19 मई के दिन मनाया जाते। एकर अलावा संगवारी उठनाव विषय के चर्चा है कि अल्पसंख्यक मन के कल्याण पर मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण। तो भैया हो ऐसे है कि अल्पसंख्यक मन के कल्याण और मन के आधुनिकीकरण के तात्पर्य ये है कि आधुनिक शिक्षा तकनीकी कौशल और आर्थिक रूप ले सशक्त बनाए ले है, जिकर पर भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, ऋण योजना के माध्यम ले उमन के समग्र विकास में जोर देते, ताकि अल्पसंख्यक युवा मन पर आधुनिकीकरण और उत्थान पर चलाए जाते प्रमुख योजना मन में कौशल विकास और आधुनिकीकरण है, जिनमें पूर्व की 5 योजना जैसे कि सीखो और कमाओ, नई मंजिल और उस्ताद, एकीकृत योजना जिनमें एक मुख्य उद्देश्य थे अल्पसंख्यक कार्यस्थल में आधुनिकीकरण करना और युवा मल्ला आधुनिक तकनीकी और कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग प्रदान करना, जिकर उद्देश्य थे पारंपरिक कला और शिल्प के संरक्षण करते हुए युवा मल्ला रोजगार के नवा अवसर प्रदान करना और उनके आजीविका में सुधार करना। शिक्षा और तकनीकी सशक्तिकरण में कक्षा 1 ले लेके उच्च शिक्षा तक के मेघावी अल्पसंख्यक छात्र मन ला वित्तीय सहायता प्रदान किए जाते। उकर अलावा उच्च शिक्षा MPhil और PhD करने वाला छात्र मन पर भी आर्थिक माने सहायता दिया जाते। तो इकर अलावा बुनियादी ढांचा के आधुनिकीकरण है, जिनमें मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम, मदरसा में दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिकी शिक्षा जैसे विज्ञान, गणित, कंप्यूटर ला बढ़ावा दिया जाते। तो भैया हो ये कि मदरसा आधुनिकीकरण केंद्र व राज्य सरकार के चलाए जाने वाले योजना के एक समूह थे। इसका उद्देश्य मदरसा में पारंपरिक दीनी तालीम के संग संग में गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषय मल्ला भी जोड़ना है, ताकि सब जनला मुख्य धारा ले जोड़ सके। तो ये तो हो संगवारी हो अल्पसंख्यक मन के कल्याण पर सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, और जिनमें शिक्षा के आधुनिकीकरण, खास करके तकनीकी कौशल, और वो मन भी पढ़ लिख के सक्षम बने और अपन

तो संगवारी हो यही गीत के संगे संग अब जाए के बिरा हुआ थे तो अपन संगवारी मुकेश चतुर्वेदी ले देवा विदा। आप सब सुनिया संगे संगवारी मल्ला हमार राम राम जय जोहार।

किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8:20 हुए हैं। वक्त हो चला है गैर फिल्मी गीत का। सत्येत टंडन और परंपरा टंडन की आवाजों में आइए सुनते हैं इस गाने को। गीत और संगीत है जानी के।

गुरु रंधावा लीलिया वंतूर की आवाजों में आप सुन रहे थे इस गाने को। गीत और संगीत था शब्बीर अहमद के। इसके साथ ही गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। तीन मोती फिल्म के गाने को आइए सुनते हैं कुमार सानू साधना सरगम की युगल आवाजों में। संगीत में प्रिया है दिलीप सेन समीर सेन ने। गीतकार हैं नवाब आरजू।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मैं हीना यादव वर्ड दादर रायगढ़ की निवासी हूँ और रेडियो बचपन से सुनती आ रही हूँ, और सभी संचार के अलग अलग माध्यमों जैसे मोबाइल रेडियो ये कार्यक्रम समय निकालकर सुनती हूँ। रायपुर केंद्र से प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ गीत आज भी सुनने में उतना ही आनंद देते हैं जितना पहले उस समय देते थे। खेती बाड़ी पशुपालन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हमें पहले से आगाह कर देती थी और हम परेशानी से बच जाते थे। इसलिए मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देती हूँ। हर परिस्थिति में खुशी व नई ऊर्जा का संचार करने वाली आकाशवाणी बड़े बूढ़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन करती है और उन्हें सही रास्ता दिखाती है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसे कहीं भी किसी जगह पर ले जाया जा सकता है और सुना जा सकता है। अपने अपने काम करते हुए भी यह मनोरंजन का बड़ा अच्छा साधन है। आकाशवाणी वास्तव में लाभवाणी शुभवाणी है, जिसके माध्यम से कई लोग जानकारी का फायदा उठाकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। मैं पुनः रेडियो व रेडियो परिवार को 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। मेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: कुमार सानू अलका याग्निक को आप सुन रहे थे फिल्म इक्का राजा रानी के गीत में। नदीम सवन ने धुन बनाई थी, समीर ने गीत लिखा था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ पल में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसाद प्रसारित करेंगे समाचार संध्या।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
3: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
3: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। No compromise, no double standard।
2: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends 3rd India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS Summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan.

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन की तर्ज थी। लीजिए आपके लिए मैं अगली पेशकश। फिल्म वक्त से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में। रवि की धुन है और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

दीवाना हुआ बादल। कश्मीर की कली से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, ओपी नैयर का संगीत।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे इशारा फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

जंगली फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। इजाज़त दीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं, उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

दिल्ली में एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुंचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था। वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जानें। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर।

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

FM 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात के 10 बजे हैं, वक्त हो चला है कार्यक्रम विविध संगीत का। केके की आवाज में सुनिए इस गाने को, महबूब की रचना, संगीत है लेस्ले लेविस की।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में

0: स्वीकार कर रहे हैं देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी। ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी। और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में। इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा।
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: संदेश से पहले आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज में गाने को, जिसे लिखा था समीर ने, धुन बनाई थी अभिजीत ने ही। नुसरत बद्र की रचना को लीजिए अब सुनिए अनेक धार की आवाज में, संगीत है शिव नारायण विश्वास, इंद्रजीत अदगिरी अलियास शिम्बू और पिंटू के।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

श्रद्धा शर्मा को आप सुन रहे थे इस गाने में। संगीत था लेस्ले लेविस का, अंकुर तिवारी के शब्द थे। इसके साथ ही विविध संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज में गीत फिल्म के इस गाने को। कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सजाया है, प्रेम धवन की ये रचना है।

जो मुझ में नहीं सवरिया।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा?
0: मैं पगले खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल मंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संदली भारती।
6: नीलकमल फिल्म के गाने में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को, रवि ने धुन बनाई थी, गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने। कार्यक्रम में अब सुनिए आमने सामने फिल्म के इस नगमे को लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में, बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा?
0: मैं पगले खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, मंदी की बात किए रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: उपकार फिल्म के गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की मधुर आवाज में। कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सजाया था। गुलशन बा

औरा के ही बोल थे। कार्यक्रम में आप सुनिए साहिर लुधियानवी के लिखे गाने को महेंद्र कपूर की आवाज में। फिल्म का नाम है हमराज, संगीत है रवि के।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे साथी फिल्म के इस गाने को। संगीतकार थे नौशाद, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। इसके साथ ही पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने वाले हैं, कुछ पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के

0: एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200%

0: की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rule